मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026, प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजते हैं समाचार, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

अभी आपने समूह स्वर में ये देश गान सुना। श्रोता वंदना में आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित राजन और साजन मिश्र के स्वर में ये भक्ति गीत। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, इस अवसर पर हमने गोस्वामी जी की विनय पत्रिका से ये रचना आपके लिए चुनी है।

वंदना में अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह के स्वर में ये भक्ति गीत।

मुकेश के स्वर में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। वंदना में आइए, संत कबीर की रचना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर के स्वर में।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर KBL पांडे का आलेख, वाचक हैं तुलिका शर्मा। आज का चिंतन तुलसी जयंती पर विशेष रूप से हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: सगुण भक्ति की पूरी दार्शनिक सैद्धांतिकी के प्रति प्रपत्ति भाव के साथ समर्पित तुलसी संसार से विरक्त कर्मकांडीय उपासक नहीं थे। उनकी अनुभूति में विचार की जैसी विराट चेतना, सरोकारों में जैसा व्यापक लोकमंगल, दृष्टि में जीवन के जैसे विशद आशय और आदर्श तथा रचनात्मकता में जैसा उदात्त प्रारूप है, उसके लिए सांसों का नहीं वैश्विक आत्मीयता का महाप्राणत्व चाहिए। तुलसी न भक्ति की पारंपरिक पद्धति में एकांतिक हुए, न जीवन के दुख और संतरासों में समाज द्वेषी हुए। जीवन का निषेध करते अभावों और उपेक्षाओं पर उनका क्षोभ व्यक्त तो हुआ और वो स्वाभाविक भी था, पर उससे मुक्ति के लिए उन्हें राम जैसे लोकनायक की भक्ति का आलंबन मिल गया। लेकिन तुलसी अगर यहीं तक स्थगित हो जाते तब वह व्यक्तिगत रह जाते। इसलिए जिन अभावों में और विषमताओं में वो अपने जीवन में आहत हुए, उनके सामाजिक बदलाव की पूरी परियोजना उन्हें रामकथा में मिली। जिसे माता पिता ने अशुभ जानकर छोड़ दिया, जो बचपन से याचक रहा, चार दाने चने जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय लगे, भूख के कारण और आश्रय विहीनता में जो किसी के भी टुकड़े खाता रहा और मसीत में सोता रहा, जिसके लिए न तो रिश्तों के संदर्भ बचे थे न अपनों का अंतरिक्ष, उस तुलसी के भीतर कहाँ वो दुर्लभ सदाशयता वाला महामानव छिपा था जो लोक मंगल के रूप में प्रकट हुआ। लोक मंगल अर्थात सामाजिक मुक्ति, लोक मंगल अर्थात समाज के प्रति व्यक्तिगत से बाहर सबको अपना मानना। तुलसी रामराज्य का लोकहित मूलक आदर्श और सृजन की विराट भूमिका में लग गए। ये तो कहा जाता है जिसका कोई न हो उसका परमात्मा होता है, लेकिन जिसका कोई न हो उसे सब अपने लगे, वो सब में स्वयं को विसर्जित कर दे, उसे तुलसी होना पड़ता है। तुलसी अपनी विनम्रता में भले ही कहें कि उनका काव्य स्वांतः सुखाय है अर्थात भक्ति भाव का निवेदन है, लेकिन उनका काव्य प्रयोजन बहुत स्पष्ट है। कीरति भवति भूति भलि सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। कीर्ति और विभूति की तरह कविता भी वही श्रेष्ठ है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की साधनावस्था कहा है। सामाजिक चिंतन की इसी

0: मनोदशा में तुलसी के लिए परहित सबसे बड़ा धर्म है। समाज की विभिन्न इकाइयों में जब अपने से बाहर का संसार भी होता है तो समन्वय का अपूर्व रूप बनता है। समाज के संदर्भ में व्यक्ति के परिवर्तन का भी महत्व है और उसे संचालित करने वाली व्यवस्था का भी। तुलसी के चिंतन में दोनों का अभिधान है। किसी भी परिवर्तन के लिए वर्तमान से असहमति पहला सोपान है, जो परिवर्तन की कामना को क्रिया रूप देती है। तुलसी के सामाजिक चिंतन में केवल मनुष्य समाज ही नहीं है, उसमें अन्य जीव जगत और धरातल भी जुड़े हुए हैं। वो जुड़ाव किसी यात्रा में आए हुए पड़ावों से गुजर जाने की तरह नहीं है, एक अपरिचित भूगोल के मानवीय और मानवेतर इतिहास के साथ जुड़ना है। तुलसी की लोक धर्मिता में ये विस्तृत पृथ्वी की अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं का अंतः संवाद है। ये जीवन को विविधता में देखने का विराट उपक्रम है। हम विश्व भाव लेकर चलें तो अपरिचय के विंध्याचल सुगम हो जाते हैं। समुद्र, अरण्य, वादियाँ स्वागत करने लगती हैं। निर्वासन अपने घर का विस्तार लगते हैं। तुलसी के सामाजिक चिंतन का एक और आयाम है जीवन और संसार के विविध अनुभवों का संचयन और उनका सूक्ति और नीति के रूप में उल्लेख। तुलसी ने समाज को रचना का जो इतना बड़ा अवदान दिया, समाज ने कागज पर ही नहीं अपनी वाचिक चिरंतनता में अविस्मरणीय बना दिया। रामबोला के तुलसी होने का वृत्तांत एक व्यक्ति का नहीं अखिल संस्कृति का महाआख्यान है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर KBL पांडे के विचार। वाचक थी तुलिका शर्मा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। नींबू वर्गीय पौधों में कीट नियंत्रण विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, नींबू प्रजाति के पौधे सदाबहार होते हैं। इन पर अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में आर्थिक हानि होती है। अगर समय समय पर कीट नियंत्रण के उपाय अपनाए जाएं, तो होने वाली संभावित हानि से बच सकते हैं। नींबू का सिला नींबू प्रजाति के सभी पौधों का प्रमुख कीट है। इस कीट के शिशु गोल, चपटे और नारंगी पीले रंग के और प्रौढ़ भूरे रंग के होते हैं। इस कीट की दोनों ही अवस्थाएं पत्तियों और टहनियों से रस चूसती हैं, जिससे पौधे धीरे धीरे पीले पड़कर अंत में सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिशु एक प्रकार का शहद जैसा स्राव छोड़ते हैं, जिससे पौधों पर काली फफूंद जमने लगती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। यह कीट एक प्रकार के विषाणुओं को भी फैलाता है। यह कीट साल भर सक्रिय रहता है। इस कीट के प्रभाव से फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर मेटासिस्टा 25 ईसी या 500 मिलीलीटर रोगर 30 ईसी का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखें, पौधों में फूल बनने की अवस्था में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव न करें। इसी तरह सफ़ेद और काली मक्खी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। सफ़ेद मक्खी के शिशु चपटे हल्के पीले रंग के होते हैं और इनके शरीर पर रोएं पाए जाते हैं। यह इसकी प्रमुख पहचान होती है। प्रौढ़ मक्खी के शरीर और पंखों पर सफ़ेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है। काली मक्खी के शिशु कांटेदार, चपटे, अंडाकार, गहरे भूरे या काले रंग के और प्रौढ़ हल्के नीले रंग के होते हैं। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही मुलायम पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे ये पत्तियां पीली पड़कर मुड़ने लगती हैं और अंत में सूखकर गिर जाती हैं। मक्खियों के शिशु पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहकर विकसित होते हैं। इस मक्खी के नियंत्रण के लिए 750 मिलीलीटर इंडोसल्फान या 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह छाल खाने वाली सूढ़ी प्राय

0: दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहाँ पर टहनियाँ अलग हो जाती हैं वहाँ पर इसका मल और लकड़ी का बुरादा जाले के रूप में दिखाई देने लगता है। यह सूढ़ी दिन के समय तने के अंदर सुरंग बनाती है और रात को बाहर निकलकर जाल के अंदर रहकर छाल को खाती रहती है और पौधों की खुराक नली को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे पौधों के दूसरे भागों में पोषक तत्वों का पहुंचना रुक जाता है, जिससे ऊपर का भाग सूखने लगता है और तेज हवाएं चलने पर प्रभावित भाग टूटकर गिरने लगते हैं। जहां पर बगीचों की अधिक समय तक देखभाल नहीं की जाती है वहां पर इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस कीट के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए सितंबर अक्टूबर के माह में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर सुराखों के चारों तरफ छाल पर लगाना चाहिए, जिससे कीट नियंत्रित हों। बगीचों की समय समय पर कटाई छटाई करके बिल्ला करते रहना चाहिए, जिससे हवा और धूप का आवागमन होता रहे। जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और पैदावार भी निश्चित रूप से अधिक मिलेगी।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी नींबू वर्गीय पौधों में कीट नियंत्रण, जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: पानी रे पानी,
5: पानी रे पानी,
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए 8700014242।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो, बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
1: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

0: अथ वार्ताः। झारखण्ड प्रशासनेन ह्यः रात्रौ छात्राणां विरोध प्रदर्शनस्य मध्ये अनियमितताभिः कारणैः निरस्तानां चतुश्चत्वारिंशत् नियुक्तिपरीक्षाणां सूची प्रकाशिता। अष्ट अधिसूचनाः प्रकाश्य राज्यप्रशासनेन उक्तं यत् निरस्तासु परीक्षासु 14-2000 झारखण्ड लोकसेवायोगेन तथा TPDL इति TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इत्यनया बाह्यसंस्थया आयोजिताः परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। निरस्तासु परीक्षासु औषधनिरीक्षिकाणां सहायक प्राध्यापकानां उपसमाहर्तॄणां दन्तचिकित्सकानां सहायकाभियन्तॄणां व्यवहारन्यायाधीशानां अतिरिक्तलोकाभियोक्तॄणाम् अथ वनक्षेत्राधिकारिणां च नियुक्त्यर्थम् आयोजिताः परीक्षाः अन्याश्च परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अन्यासु प्रमुखासु निरस्तासु परीक्षासु प्रशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थासु व्याख्यातॄणां वरिष्ठ वैज्ञानिकाधिकारिणां सहायक वन संरक्षकाणां अथ अन्येषां प्रशासनिक प्राविधिक पदानां च नियुक्त्यर्थं परीक्षाः सम्मिलिताः सन्ति। अधिसूचनासु उक्तं यत् JPSC JSSC इत्येतयोः अनियमितता सम्बद्धानां प्रकरणानां शीघ्रविचारणाय उच्चन्यायालयं प्रति द्रुतन्यायालयस्य निर्माणाय अनुरोधः करिष्यते। तदतिरिक्तं JPSC JSSC इत्येतयोः आन्तरिकसतर्कता प्रकोष्ठस्य निर्माणमपि करिष्यते। ब्रिक्स देशैः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासस्य क्षेत्रे सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। नवदिल्ल्यां ह्यः सम्पन्नस्य 12 ब्रिक्स पर्यावरण मन्त्रिणाम् उपवेशनस्य अनन्तरं संयुक्तमन्त्रिस्तरीये वक्तव्ये उक्तं यत् ब्रिक्स देशैः सतत विकासस्य 30-2000 कार्यविधिः जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिनः संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य रूपरेखा प्रबन्धस्य अथ पेरिस सन्धेः च पूर्ण प्रभाविरूपेण कार्यान्वयनं प्रगतिशीलं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनः दृढीकृता। देशैः बलं प्रदत्तं यत् विकसित देशेभ्यः वित्तीय सहायतायाः उपलब्धतया सह अन्ताराष्ट्रिय सहयोगं सुदृढीकर्तुं विकासशील देशानां पर्यावरण सम्बद्धानां जलवायु सम्बन्धानां च आह्वानानां प्रभाविरूपेण समाधानम् आवश्यकमस्ति। भारतम् अस्मिन् वर्षे सहनशीलतायै नवोन्मेषायै सहयोगायै सतत विकासाय च निर्माणम् इति विषय वस्तुना ब्रिक्स संघस्य अध्यक्षतां करोति। ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः सतत विकासस्य साधनरूपां चक्रीयार्थव्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु केरल आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः सङ्गृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जालीय पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं NTA संस्थया 4-स्तरीय प्रश्नपत्रपरीक्षणप्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीयग्रामीणबैङ्कसङ्घैः प्रवर्तमानवित्तवर्षस्य ऋणप्रदानक्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अङ्किता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से दो चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, उप जिलाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी की भर्ती के लिए ली गई परीक्षाएं शामिल हैं। वहीं सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्यात वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड सरकार की अधिसूचनाओं में कहा गया है कि अनियमितता से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा परिषदों के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किए जाने के बाद जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया है जब होर्मुज जल डमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे भोपाल से हम अनुप्रसारित करते हैं। 7:20 पर सुनिए कहानी महान किला बासमती राइस। कहानीकार हैं पुष्पा भदौरिया। 7:30 फिल्म संगीत सुना जा सकता है। समाचार प्रभात 8:00 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वीणा जोशी के गाए कुछ गीत और भजन।

9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रज्ञा श्री शर्मा का शास्त्रीय गायन। 10 बजे जिले की चिट्ठी भोपाल से हम अनुप्रसारित करते हैं और 10:05 पर श्रोता सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होता है व्हाट्सएप फरमाइश। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। श्रोताओं, आज है बुधवार और आज आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है, जिसके अंतर्गत 1 बजे आप सुनेंगे महिला सभा, जिसमें चर्चा के विषय होंगे समाज का आधार मानवीयता, सेल्फी का क्रेज और जोखिम। इसके अलावा मंदाकिनी शर्मा की कहानी होगी मेहनत की कमाई और बहनों को कुछ भुट्टे के व्यंजनों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

0: डेढ़ बजे लोक संगीत के कार्यक्रम में रतनलाल और साथियों के गाए कुछ गीत आप सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर हितांशी पमनानी के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। सायंकालीन सभा में शाम 5 से कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 5 युवाणी कार्यक्रम होगा जो आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति होगा, जिसमें चर्चा होगी एक तस्वीर की ताकत। चर्चा होगी कैमरे से ज्यादा जरूरी नजरिया। इसके अलावा AI और युवा विषय पर भी चर्चा होगी। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 7:20 पर चौपाल कार्यक्रम में डॉक्टर मयंक परिहार से सोहन सिंह की बातचीत सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा गेंदा की व्यावसायिक खेती। इसके अलावा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी और कृषि सामयिक सलाह दिलवाई जाएगी। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना।

0: ना उत्तेजना, ना शोर दिन रात, ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की योजना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री आज मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में 2000 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन। और नीदरलैंड में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाइपलाइन से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये स्कीम अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इस स्कीम का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में कहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि तथा पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा,
1: अपनी उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर हमें गर्व है। मैं अपने वैज्ञानिकों को प्रणाम करता हूं, किसानों को प्रणाम करता हूं। वैज्ञानिकों की मेधा बुद्धि, किसानों का पसीना और सरकार की नीतियों ने निश्चित तौर पर एक चमत्कार किया है। हम लोगों ने प्रयोग किया कि हम कैसे आमों को 35 दिन तक बचा के 35 दिन करने में सफलता प्राप्त हुई और उसके कारण हम सिंगापुर, दुबई, समुद्री मार्गों से भी अपना उत्पाद भेज सके।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई हैं। गत 2 वर्ष में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृषि के साथ पशुपालन और उद्यानिकी को भी बढ़ावा दे रही है। गुना जिले की धनिया और गुलाब उद्यान के गुलाब उत्पादन के क्षेत्र में विशेष पहचान है। किसानों को उद्यानिकी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मुख्यमंत्री निवास से गुना में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुना जिले के कुंभराज धनिया को शीघ्र ही GI टैग प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यानिकी का रकबा 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पशुपालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12% से बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। किसानों को दिन में विद्युत आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। इससे कृषि कार्य को और किसान और आसान बनाने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मैहर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,25,13,000 से अधिक बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से कुल 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त के रूप में 1,500 रुपए प्रति हितग्राही कुल 1,835.46 करोड़ रुपए से अधिक और रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर 250 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहना के खाते में कुल 1,750 रुपए की संयुक्त राशि सीधे DBT के माध्यम से पहुंचेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवा विकसित भारत की आधारशिला है, उन्हें स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाना समय की मांग है। युवाओं को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप सजग और जागरूक बनाएं। राज्यपाल कल लोकभवन में सांदीपनी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन, व्यक्तित्व, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, शिक्षा और जीवन मूल्यों से भावी पीढ़ी को जोड़ने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा श्री कृष्ण पाथेय न्यास द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जित 14 विधाओं, 64 कलाओं, महर्षि सांदीपनी और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित है। नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। भारत ने अब तक वेल्स पर जीत दर्ज की है, जबकि उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के 2 मैचों से सिर्फ 1 अंतर है। उधर इंग्लैंड पूल ए में अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही अगले दौर में जगह बना चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले के निसरपुर स्थित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की अध्यक्षता बबीता चौहान को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आगर मालवा कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीणा ने कल हुई जिला स्तरीय कॉलोनी सेल की बैठक में जिले के विकसित वैध और अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए संबंधितों को निर्देश दिए। नर्मदापुरम में जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कल हुई जनसुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में 162 आवेदकों की समस्याएं सुनी। वहीं सतना में जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने 107 आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रति दीवार पर लिखी इबारत को बार बार देखता, अपने ही निर्माण पर, अपने ही सुलेख पर मोहित होता, दीवारों पर लिखे विज्ञापन को पढ़कर खुश होता। शाम को गिनती होगी और उसे पारिश्रमिक मिलेगा। वो याद कर रहा था, जब वो पढ़ता था तो हर शिक्षक उसके हस्ताक्षर पर खुश हो जाते थे और उसे हमेशा प्रथम पुरस्कार सुलेख में मिला करता था। लेकिन भाग्य की विडंबना, घर की परिस्थिति कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उसको पिता का व्यवसाय अपनाना पड़ा और उसने दीवारें लिखने का काम अपना लिया। एक हफ्ते से सुगंधित महान किला बासमती चावल का विज्ञापन लिखते लिखते उसकी नाक में बासमती चावल की गंध बसती जा रही थी। सोचता था एक दिन वह चावल घर ले जाएगा, पर किसी दिन बाबूजी का टूटा चश्मा, अम्मा की दवाई, बेटी की गुड़िया या बेटे का बस्ता खरीदने की प्राथमिकता होती, उसकी और पत्नी की आवश्यकताओं का तो कोई अंत ही नहीं था। आज बासमती चावल के विज्ञापन को लिखने का आखिरी दिन था। सुगंधित महान किला बासमती चावल घर पर बने और पूरे मोहल्ले को महका दी, स्वाद से भरपूर, सेहत से भरपूर, उससे रहा नहीं गया। आज मजदूरी के बदले या ये कहो कि अपनी दिन भर की मेहनत के बदले उसने 2 किलो चावल ले लिए। खुशी खुशी घर जा रहा था गुनगुनाता हुआ, आलू डालकर बनवाऊंगा, गोभी मटर भी आ रही है बाज़ार में, कल ही घर ले गया था, अभी शायद रखी होगी। ये नई बीमारी वायरल इन्फेक्शन भी क्या है, घर में किसी एक को हुआ नहीं कि धीरे धीरे पूरा घर चपेट में आ जाता है। दोपहर में पड़ोस के डॉक्टर को दिखाकर लाई थी सुनीता अम्मा को। डॉक्टर ने कहा भर्ती करना पड़ेगा। सोच रही थी माधव के आने पर अम्मा को भर्ती करवा देंगे, घर की हालत और माधव की अकेले की कमाई से ज़रूरतें पूरी होना बहुत कठिन हो रहा था। सोच रही थी सुनीता उसे भी कुछ करना चाहिए, पर घर की जिम्मेदारी, बूढ़े सास ससुर की देखभाल, नंद की शादी में लिया गया कर्ज पटाना, वो कितनी भी चतुराई से काम करे अभाव मारे जाते थे। पास में कहीं गाना बज रहा था, सखी सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते। सुनीता आज बहुत बेचैन है, पल पल दरवाजे की ओर देख रही है, कब माधव आए, कुछ रुपए लाए और फिर अम्मा को अस्पताल दिखाएं या भर्ती करवाएं। अगर माधव के आने में देर हुई तो, अगर रात ज़्यादा हो गई, डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं किया, तब क्या करेंगे। इधर दोनों बच्चों को भी तेज बुखार हुआ जाता है, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने लायक तो रुपया है नहीं। सुनीता ने आज पक्का सोच लिया है कि वह कुछ ना कुछ काम करेगी, अम्मा अच्छी हो जाएंगी, वो बच्चों को देख लेंगी। वैसे भी बच्चे उससे ज़्यादा अम्मा से ही निकटता रखते हैं, उसके पास अगर दिन भर में 2 घंटे रहते हैं तो 8 घंटे वो अम्मा के साथ ही बिताते हैं, बाकी बच्चा टाइम वो बापू के साथ, उसके ससुर के साथ बिताते हैं। कुछ महीने पहले तक बापू भी दीवार लिखने जाते थे, पर एक दिन ऊंचाई पर लिखते लिखते स्टूल फिसल गया और दाहिने हाथ की हड्डी गिरने से टूट गई, पैरों में भी दर्द रहने लगा। भगवान भी गरीबों की कैसी कैसी परीक्षा लेता है। बहू, माधव आ गया क्या, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अम्मा ने कहा। सुनीता ने धीरज बंधाया, अम्मा आ ही रहे होंगे, दवा लेकर लौटेंगे, झूठा आश्वासन दिया। उधर बच्चे भी तेज बुखार से व्याकुल थे, उन्हें भी अपने पिता के आने की प्रतीक्षा थी। माधव आ गया, सुनीता ने लपक कर दरवाज़ा खोला। आ गए, अम्मा को भर्ती करवाना है। क्या हुआ अम्मा को, दोनों बच्चों को भी तेज़ बुखार है, उन्हें भी डॉक्टर को दिखाना है। मेरे पास कुछ रुपए थे, अम्मा को दोपहर से तेज बुखार था, मैं डॉक्टर दुबे जी को दिखाकर लाई थी, उन्होंने कहा कि भर्ती करवाओ, ड्रिप लगेगी। अम्मा बेचैन हो रही हैं, माधव सन्न रह गया, वो तो आज रुपए के बदले बासमती चावल ले आया है। अपराधी सा चावल सुनीता को पकड़ाते हुए बोला, गलती हो गई, मैं आज रुपयों के बदले चावल ले आया सुनीता। सुनीता दिन भर की परेशान बैठी थी, मधुर स्वभाव है उसका, हमेशा मुस्कुराकर स्वागत करती है माधव का, छोटा सा परिवार है उन लोगों का, बड़े सामंजस्य से रहते हैं सब। जो भी माधव लाता है उसी में बड़ी चतुराई से घर चलाती है सुनीता, किसी को पता ही नहीं पड़ता कि किस चीज़ का अभाव है। उस सुनीता को आज न जाने क्या हो गया, उसने गुस्से से थैली धरती पर पटक दी, चावल बिखर गए। इससे क्या सिर फोड़ूं, इतने महंगे हैं ये चावल, इतने में 10 दिन का आटा आ जाता। माँ के अप्रत्याशित गुस्से को देखकर बच्चों का बुखार न जाने कहाँ चला गया। बिटिया चिल्लाई, माँ तुमने ये क्या किया, पापा की दिन भर की मेहनत। अम्मा भी घबरा कर बिस्तर से उठ गई, उनका बुखार न जाने कहाँ चला गया, घबराहट भी न जाने कहाँ चली गई। सुनीता इतना गुस्सा मत कर, उसे क्या मालूम था कि आज मैं इतनी बीमार हो

जाऊंगी, बच्चों को भी बुखार आ गया। उसे नहीं पता था कि आज इतनी मुसीबत आई हुई है घर में। माधव बोला, नहीं अम्मा, गलती मेरी ही है, मैं अपनी औकात भूल गया था। मैंने तेते पांव नहीं पसारे जितनी चादर थी, और चादर भी इतनी जीर्ण शीर्ण, चादर फट गई अम्मा। माधव रो पड़ा। बच्चों ने पहली बार पिता को रोता वो माँ को गुस्से में देखा था। सब लोग अपनी सारी तकलीफें भूल कर चावल समेटने लगे, रोते जाते थे, एक एक चावल के दाने को बीनते जाते थे। इस बीच बापू न जाने कहाँ चले गए थे। घर लौटे तो सुनीता के हाथ में कुछ रुपए देकर कहा, ले बेटा काम चला। एक कागज के पुड़े में कुछ खड़ा गर्म मसाला लेकर आए थे। चल चावल बना नमकीन। कहाँ से आए रुपए बापू, विस्फारित से नेत्रों से सुनीता ने देखा। मैंने अपनी घड़ी बेच दी बेटे। अरे बापू, वो तो आपको अच्छी दीवार लिखने पर इनाम में मिली थी। मैंने घड़ी बेचकर समय खरीदा है बेटी, चलो तुम पुलाव बनाओ। रिक्शा लेकर आया हूँ, बच्चों को और अम्मा को अस्पताल लेकर जाता हूँ। रहने दो, मैं घर पर ही ठीक हो जाऊँगी। न जाने कहाँ चला गया अम्मा का बुखार। सुनीता रो रो कर अम्मा से लिपट गई। कभी कभी कोई तूफान ऐसा आता है कि बड़ी शांति दे जाता है। उसने उनके बेटे की पसीने की कमाई ही नहीं फेंकी थी, अन्न का भी अपमान किया था, उस अन्न का जो उनकी गरीबी को मुँह चढ़ा रहा था। महान किला बासमती, आज उसे अपने दादाजी के शब्द याद आ रहे थे। बेटा याद रखना, दो नंबर की कमाई वाले एक नंबर का सामान खाते हैं, और एक नंबर की कमाई वाले दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और नीचे उतरो, न जाने कौन से नंबर का खाते हैं। सुनीता विवशता से बापू की सूनी कलाई देख रही थी। कभी कभी कोई धक्का चढ़ी हुई नस को अचानक ठीक कर देता है। माधव के घर में एक झटके से ही सामान्य होने लगा सब कुछ। वह तूफान के बाद की शांति थी। थोड़ी देर के बाद माधव का घर पुलाव की खुशबू से महक रहा था। सुनीता प्रसन्न थी अपनी पाक कला की सभी से प्रशंसा सुनकर। माधव के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था कि आज वह अपने बच्चों को वह चावल खिला सका जिसका विज्ञापन लिखते लिखते उसकी गंध की कल्पना उसे पागल कर देती थी। पर आगे के लिए वह तय कर चुका था कि कभी भी पगड़ी बेचकर घी नहीं खाएगा। आज उसे वह कविता याद आ रही थी जिस पर उसने बचपन में प्रथम पुरस्कार पाया था। मेरे सोफे की गद्दियों पे कवर, रामू नंगा ही कर रहा है सबर। इन गद्दियों में रुई बेमानी, ठंड से ठिठुर गया रमजानी। वास्तव में दिल बहुत रोता है, चलो कुछ प्रायश्चित होता है। रामू की माँ, ये कवर ले जाओ, इनसे जो कुछ भी सिले सिलवाओ। इन गद्दियों की रुई खिंचवा ले, रमजानी लिहाफ भरवा ले। वो कविता उसे आज बार बार याद आ रही थी, और अपने हाथ में उसके स्कूल से मिली हुई प्रथम शील्ड जो आज भी घर में सुरक्षित है।

महान किला बासमती चावल। अभी आपने पुष्पा भदौरिया से उनकी एक कहानी सुनी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने फिल्म अन्नदाता का यह गीत सुना। गीतकार थे योगेश, संगीतकार सलिल चौधरी। आइए सलिल चौधरी की ही एक और संगीत रचना सुनते हैं। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है पूनम की रात।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लता मंगेशकर को आइए अब सुनते हैं फिल्म माया में। मजरू सुल्तानपुरी का गीत है और संगीत सलील चौधरी का।

लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी का ये कलाम। मौसिकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम चोरी चोरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
6: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
5: क्या, कैसे?
6: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
5: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
6: mmsky.mp.gov.in पर। MMSKY, सीखो भी कमाओ भी।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: लता मंगेशकर के स्वर में आइए सुनते हैं शैलेंद्र की ये गीत रचना। फिल्म अनाड़ी के लिए इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में शैलेंद्र की ये गीत रचना। संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर SIT की जांच और जारी CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की CID जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। ACB के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
4: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
5: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी

0: में दो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने की बात की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक दो मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. and India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over two tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid students' protests over the issue. Here is a report.
4: The Jharkhand government has cancelled 44 recruitment examinations conducted by JPSC, JSSC and outsourced agencies, including the JSSC CGL and examinations conducted by TDPL. The cancelled examinations include the JPSC 11th to 13th Civil Services examinations, CDPO, Drug Inspector, Civil Judge, Assistant Conservator of Forest, Forest Range Officer, Assistant Professor and other recruitment examinations. The government has also cancelled examination results where the preliminary work was conducted by TDPL, even if another agency subsequently handled the process. The notifications state that the JSSC CGL examination was cancelled based on findings emerging from the SIT probe into alleged irregularities and the ongoing CID investigation. The government has also decided to postpone 6 examinations and order CID investigations into 17 examinations. A fast-track court will be sought from the High Court for cases relating to alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. Internal vigilance cells will also be constituted in both commissions, while a committee headed by senior IAS officer Amitabh Kaushal will recommend reforms in the examination system. The committee is expected to submit its report to the government within 2 months. The decisions follow a 25-day student agitation demanding cancellation of disputed examinations and investigation into alleged irregularities, with students earlier announcing a proposed protest outside the Chief Minister's residence on August 20th. While students had welcomed the cancellation of the JSSC, CGL and other examinations, they have maintained that the demand for a CBI probe must also be addressed. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
3: The anti-corruption branch of the Delhi government has arrested former Delhi Minister and AAP leader Satendra Kumar Jain, former CEO of the Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and 4 others accused persons. Our correspondent reports that these arrests have been made in connection with alleged irregularities and criminal conspiracy in the tendering process related to augmentation and upgradation of the sewage treatment plants of the Delhi Jal Board.
5: The case was registered against them on the complaint of Directorate of Vigilance. During course of investigation, it was revealed that the tendering process allegedly involved restrictive technical specifications and conditions favoring a particular technology provider, thereby restricting competition and providing undue advantage to a selected private entity. Investigation further revealed that private person were allegedly in regular communication with certain public servants and intermediaries in order to manipulate the tender process. ACB said it indicates an alleged nexus between private persons and public functionaries for influencing the tender conditions in favor of a particular technology provider. The investigation is examining the complete money trail and the alleged proceeds of crime. With Anupam Anand, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: In West Bengal,

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं वीणा जोशी के गाए कुछ गीत और भजन। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वीणा जोशी से सुनते हैं एक और भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: वीणा जोशी के गायक गीत और भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको वीणा जोशी के गाए कुछ भजन सुनवा रहे थे, आइए सुनते हैं कुछ गीत।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाडली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,500 रुपये की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि के प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वह रायसेन, सागर, जबलपुर, रीवा और छतरपुर सहित एक दर्जन जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से ये मुकाबला अहम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, सावन का महीना आधा बीत चुका है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बीत चुका है, बस कुछ दिन बाकी हैं। हालांकि हमारे देश में सावन भादो, या यूं कहें कि आषाढ़ सावन और भादो, तीन महीने का जो समय होता है ये बारिश का मौसम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे मानसून की वजह से हो गया है। ये जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बारिश का आनंद तो आप ले ही रहे होंगे, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है कहीं कम। खैर, ये सुख दुख की तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नाजिर होती है ये बारिश। बारिश का आनंद लेते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। श्रोता साथियों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास का नाम लेते ही आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आती होगी, रामचरितमानस। जी हाँ, रामचरितमानस गोस्वामी जी की ऐसी रचना है जो भारतीय समाज के लोगों की रग रग में बसी हुई है। बहुत से परिवारों की ये आचार संहिता भी है। रामचरितमानस में लिखे हुए दोहे और चौपाइयाँ हमें समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। लोग एक दूसरे के लिए मुहावरों की तरह ये दोहे और चौपाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। नीतिगत बातें हमें सिखाई जाती हैं इन्हीं दोहे और चौपाइयों के माध्यम से। दरअसल तुलसीदास जी को सिर्फ साहित्यकार मानना गलत होगा। वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक मनोविज्ञान की उन्हें गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्होंने अपने इस महाकाव्य में इतनी गूढ़ नीतिगत बातें लिखी हैं जो आज तक प्रासंगिक हैं। रामचरितमानस के लेखन के बाद 450 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितने अपने रचना काल में थी। श्रोता साथियों, इतना लोक व्यापीकरण दिखाई नहीं देता कि किसी और साहित्य का हुआ हो। इतनी सरल और सुस्पष्ट भाषा है, लोक संस्कृति की इतनी समझ है लेखक को, भक्ति और सामाजिक चेतना का जो मेल उन्होंने किया है अपने इस महाकाव्य में, ये एक अद्भुत बात है। पूरा उत्तर भारत अवधि की इस लोक भाषा को इतने गूढ़ तरीके से समझ लेता है और उसे अपने व्यवहार में उतार लेता है। इस पूरी प्रक्रिया में साहित्य इतनी भली प्रकार से रचा और बसा हुआ है कि हम कब इन शब्द भंडारों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं ये हमें समझ में भी नहीं आता। मूलतः रामचरितमानस की जो कथा है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है रामायण में, लेकिन जब ये लोक भाषा में आई तो पूरे समाज ने इसे हाथों हाथ लिया। संस्कृत के जो मुश्किल तत्व थे वो निकल गए और जन जन के मन में राम कथा बैठ गई। न सिर्फ लोक भाषा का प्रयोग था, बल्कि यदि हम कहें कि लोक जीवन से जुड़ी संवेदनाएं इसमें थीं तो गलत नहीं होगा। न सिर्फ राम को उन्होंने धार्मिक आदर्श के रूप में स्थापित किया, बल्कि जो पारिवारिक मूल्य थे उन्हें भी पुनः स्थापित करने में तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न सिर्फ रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो, बल्कि मित्रता, त्याग, कर्तव्य, करुणा, संघर्ष, इतनी परतें हैं इस महाकाव्य में कि हम इन्हें जितना पढ़ेंगे उतना हम अपने जीवन में इसे
महसूस करते जाएंगे। सिर्फ एक पुस्तक नहीं रही ये, बल्कि लोक संस्कृति का हिस्सा बन गई, ये इसकी बहुत बड़ी सफलता है। यदि हम उदाहरण देखें तो परोपकार के लिए सबको एक ही दोहा ध्यान आता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। किसी भी साहित्य के एक अंश का इतना लोकव्यापीकरण हो जाना कि छोटे छोटे बच्चे अपने निबंधों में इस तरह की चौपाइयाँ और दोहे प्रयोग करें, ये कहीं और नहीं दिखता। लोकगीतों में राम दिखाई देने लगे, जन जन इसे गाने लगा। इसके जो चरित्र हैं उनके उनका इस प्रकार से चित्रण हुआ कि लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। आदर्श भाई कैसा हो, भरत जैसा हो, आदर्श सेवक कैसा हो, हनुमान जैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, सीता।

जैसी हो, भाई के रूप में यदि त्याग की भावना देखनी है तो लक्ष्मण की तरफ देखा जाता है, माँ कैसी हो, कौशल्या जैसी हो, इस तरह से तमाम सारे जो चरित्र हैं इस रामचरितमानस में वो हमें बार बार अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं, अपनी नैतिकता की याद दिलाते हैं। हालांकि लंबे समय से हमारा रेडियो रामचरितमानस का संगीतमय पाठ लोगों को सुनाता रहा है और लगातार सुनाता रहेगा, क्योंकि ये एक धार्मिक पाठ नहीं है बल्कि लोक संस्कृति में बसा एक सामाजिक मनोविज्ञान का पाठ है। यदि हम इसे तरीके से पढ़ते रहे तो अपने चरित्र में तमाम पॉजिटिव चेंजेस ला सकेंगे। श्रोता साथियों, यदि हम रामचरितमानस की इतनी बातें कर रहे हैं तो हमारी बातें तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम आपको इसका एक उदाहरण नहीं दे देंगे, और उदाहरण के तौर पर यदि हम गीत न सुनवाएं तो और ही गलत होगा। तो गीत हमें याद आया है, फिल्म गीत गाता चल का ये गीत है, आपको भी याद होगा। गीत गाता चल में रामायण की कुछ चौपाइयाँ हैं जो जसपाल सिंह ने गाई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: श्रोता साथियों, हर दिन जब शुरू होता है तो हम उस दिन को कैसे बिताएंगे, उस दिन के हमारे गोल्स क्या हैं, ये तय करते हैं। और शाम होते होते हम ये भी तय करते हैं कि कौन कौन से काम आज हमने ख़त्म कर लिए और कौन से पेंडिंग हैं जिन्हें कल निपटाना ज़रूरी है। ये तो रोज़ाना की बात हुई, ये रोज़ाना का टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे गोल्स लंबे भी होते हैं, जिन्हें पूरा करने में काफ़ी समय लगता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है कुछ साल लगते हों। यानी ये जो टाइम मैनेजमेंट है, यदि हमने नहीं किया तो किसी भी काम को करने में लगने वाला समय लंबा होता जाता है, ये हम सब जानते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सुना होगा ना आपने ये दोहा। दरअसल ये जो टाइम मैनेजमेंट है, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात है, इसी पर आज हम बात करेंगे। समय के सदुपयोग की बात कही गई है। समय तो अपने आप बीतता है, लेकिन उस पल को, उस घड़ी को, उस लम्हे को, उस मिनट, सेकंड और घंटों को हम किस तरह से बिताते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं रुके हुए हैं, या पीछे की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, समय के साथ साथ हमें आगे ही बढ़ना है, रुके रहना अपने आप को बर्बाद कर देना है। दरअसल आजकल समय कैसे बीत जाता है, ये हम समझ नहीं पाते और अक्सर शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हमें तो समय ही नहीं मिलता। थोड़ा सा अपने आप को अंदर से टटोलिए, क्या आप सही में समय का सदुपयोग कर रहे हैं, या जो ज़रूरी काम है उन्हें निपटाने के बाद, या कोई वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं, या फ़ोन में अपने रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं करते? यदि आप ऐसा करते हैं और साथ में ये शिकायत करते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल गलत है। समय को यूं ही जाने देना हमारी बहुत बड़ी भूल है। हर पल को हम कुछ नया सीखने में बिता सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यदि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो यकीन जानिए ये दुनिया हमें थोड़ा पीछे तो कर ही देगी। हम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे और अपने आप को या अपनी वर्थ को कम करते जाएंगे। क्या आपको इस तरह वर्थलेस होकर जीने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं। अपनी उपयोगिता को लगातार साबित करते रहने के लिए ये ज़रूरी है कि हम समय पर कुछ नई चीज़ें अपने अंदर समाहित कर लें। जो भी आपकी इच्छा है, वो नया हमेशा सीखते रहें, और ये सीखते रहना ही समय का सही सदुपयोग है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, आज 19 अगस्त और आज है विश्व फोटोग्राफी दिवस। दरअसल किसी

फ़ोटो में कोई इतिहास छुपा होता है। कोई कोई फ़ोटो तो ऐसी भी होती है जो समाज के सोचने की दिशा तक बदल देती है। अब आप धीरे धीरे समझेंगे कि फ़ोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर खींचना नहीं है, बल्कि किसी वक्त के लम्हे को कैद कर लेना है, यादों को सहेज कर रखना है और किसी भी घटना को, रिश्तों को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक किसी तस्वीर में पूरी पूरी कहानी होती है, कोई विचारधारा होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी बहुत सारे शब्द भी नहीं कह पाते, वो तस्वीर कह देती है। अब मान लीजिए किसी पुराने घर की तस्वीर है, उसे देखकर आप न सिर्फ इमारत देखते हैं बल्कि उस समय की घर बनाने की, भवन निर्माण की कला भी देखते हैं, जीवन शैली देखते हैं, लोगों का पहनावा देखते हैं, कैसा परिवेश था वो सब देखते हैं। यानी एक तस्वीर को यदि आप ढंग से देखें तो वो अपनी कहानी खुद कहती है। हम सब फोटोग्राफर हैं, हम सब के हाथ में कैमरा है, यदि मोबाइल है तो कैमरा तो है ही। हम फ़ोटो खींचने के नए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं, किस रोशनी में कैसी फ़ोटो आएगी, कैसे फ़ोटो खींचनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस कैप्चर हो सकें। हालांकि आजकल फ़ोटो खींचना हर व्यक्ति चाहता है और बहुत सारे उसमें फ़िल्टर्स लगा करके फ़ोटो खींची जाती है, लेकिन जो कहानी एक नॉन फिल्टर्ड फ़ोटो कहती है वो फ़िल्टर्ड फ़ोटोग्राफ्स कभी नहीं कह पाती। दरअसल फ़ोटोग्राफी का जो शौक़ है वो दुनिया को एक अलग नज़र से देखने का शौक़ है। आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, बारिश में आपकी फ़ोटो खींची हुई और किसी फ़ोटोग्राफ़र की नज़र से खींची हुई फ़ोटोग्राफ्स में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी साधु की फ़ोटो, किसी बुज़ुर्ग की फ़ोटो, बच्चे की मुस्कान की फ़ोटो, किसी शहर की पुरानी गली की फ़ोटो, आप देखते होंगे तो जो फ़ोटो को खींचने वाला है उसकी नज़र की दाद तो ज़रूर देते होंगे। दरअसल ये शौक जो है वो हमें संवेदनशीलता सिखाता है, धैर्य सिखाता है, रचनात्मकता तो सिखाता ही है। हम अपनी पुरानी यादें सहेज लेते हैं, यहाँ तक कि कोई सुंदर नज़ारा देखकर फ़ोटो खींचने का मन हो आता है, तो ये जो शौक़ है वो हमें प्रकृति से जुड़ाव भी सिखाता है। कभी कभी कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं समय की दिशा भी बदल देती हैं, इतिहास और समाज की दिशाएं भी बदल देती हैं। बहुत सारी इतिहास में ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए मजबूर किया है। कुछ युद्धकाल की फ़ोटोग्राफ्स आपको याद आ रही होंगी जिसने लोगों को हिंसा की भयावह तस्वीरें दिखाई, या कभी आप किसी प्राकृतिक विनाश की फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, भूकंप की, बाढ़ की, तो आपको उस जगह की, उस घटना की, दुर्घटना की भयावहता का अंदाज़ा होता है और पूरी दुनिया का ध्यान उस मानवीय संकट पर वो तस्वीरें खींच पाती हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान एक जलते हुए घर से एक बच्ची भाग रही है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान उस युद्ध की तरफ खींचा। अफ़गानिस्तान के युद्ध की एक फ़ोटो को पुरस्कृत भी किया गया, एक बच्चा मरणासन्न हालत में है, एकदम जर्जर हालत में उसकी काया है और उसके मरने का इंतज़ार एक गिद्ध कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को उस तस्वीर ने इतनी अच्छी तरह से व्यक्त किया था कि पूरी दुनिया में युद्ध से होने वाले मानवाधिकारों पर बात होने लगी। जिस तरह से युद्ध स्त्रियों और बच्चों के लिए नुकसानदेह बन के आता है या पूरी मानवता के लिए नुकसानदेह होता है, इस पर बहुत चर्चाएं हुई। पृथ्वी की जब अंतरिक्ष से पहली बार फ़ोटो ली गई थी, तस्वीर उठाई गई थी, तो मनुष्य ने पहली बार देखा था कि जो धरती इतना धीरज रखती है, इतनी कठोर है, वो इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत भी है। तो ये सारी तस्वीरें हमारे सोचने की दिशा बदल सकती हैं।

सच को सामने ला सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो भ्रम में भी डाल सकती है। आजकल मॉर्फ्ड फ़ोटो का ज़माना है, एआई से अलग अलग तस्वीरें बना करके प्रस्तुत कर देने का ज़माना है, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। तो हमें अपने विवेक को इतना जागृत रखना होगा कि हम असली फ़ोटो और नकली फ़ोटो में अंतर समझ पाएँ। यदि आप कहीं की रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए कहीं कोई विभीषिका है, कोई आग लगी है, और यदि आप शब्दों में उसकी रिपोर्टिंग पढ़ते हैं तो आप शायद उतनी गहराई से उसे महसूस ना कर पाएँ, लेकिन यदि कोई तस्वीर सामने आ जाती है तो आपका हृदय उस दुर्घटना से द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। ये है किसी तस्वीर की, किसी फोटो की असली ताकत। खैर, हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं गीत के माध्यम से। तो जो गीत अभी हम सुनवा रहे हैं ना, जब हम देख रहे थे कि ये गीत पहले आप तक कब पहुंचा था, तो पिछले साल आज ही के दिन ये गीत आप तक पहुंचा था, तो ये गीत भी एक इतिहास बनाने जा रहा है। चलिए, एक साल बाद पूरे इस गीत को आप तक पहुँचाते हैं, और आज के दिन के लिए पूरी तरह मुफीद है ये गाना।

तो आज अपने कैमरे से एक तस्वीर ज़रूर उतारिएगा और अपने फोटोग्राफी के शौक को थोड़ा सा पूरा कर लीजिएगा। फिलहाल कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं।

हैं प्रज्ञा श्री शर्मा का शास्त्रीय गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं विनय विंदे, सारंगी पर हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सुनते हैं प्रज्ञा श्री शर्मा का गाया राग अहीर भैरव में ये ख्याल।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रज्ञा श्री शर्मा का गाया ये ख्याल। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजते हैं। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।
1: सुनिए भिंड जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीआरपी लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों तथा करगिल शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सजीव प्रसारण एलईडी के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बदलते दौर का मध्य प्रदेश भिंड जिले की विकास गाथा का वितरण किया गया, जिसमें विगत 2.5 वर्षों में जिले की उपलब्धियों का वर्णन है। मुख्य अतिथि ने सभी परेड कमांडर से परिचय प्राप्त किया और हर्ष तथा शांति के प्रतीक रंगीन गुब्बारे छोड़े। मुख्य अतिथि ने बताया कि जिले में वर्तमान में 23 पीएम श्री विद्यालय संचालित हैं, जो एयर कंडीशनड, स्मार्ट क्लासरूम, संगीत और कंप्यूटर प्रशिक्षण से लैस हैं। कनावर, गोहा, दटी, लहार में 145.59 करोड़ रुपए की लागत से सब सुविधायुक्त सांदीपनी विद्यालय तैयार किए गए हैं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत संचालित माय भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भिंड जिले के युवा कलाकार और आर्यावर्ती संस्कृति संगम के उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर विजेता के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, सामाजिक जागरूकता के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। इस उपलब्धि के फलस्वरूप उन्हें 15 अगस्त को लाल किला नई दिल्ली में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में

विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये सम्मान भिंड जिले और मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर माई भारत केंद्र ने कहा है कि भूपेंद्र चौहान की सफलता जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी उपलब्धि ये दर्शाती है कि प्रतिभा, समर्पण और निरंतर प्रयास के साथ माई भारत द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माई भारत केंद्र भिंड ने जिले के सभी युवाओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में माई भारत पोर्टल पर पंजीयन कर विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, स्वयंसेवी गतिविधियों, नेतृत्व विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास अभियानों और राष्ट्र निर्माण से जुड़े आयोजनों में सक्रिय सहभागिता करें। भिंड जिले में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन हुआ। पर्यटन विभाग की समृद्धि और मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अनुसार इस साल भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन नवल किशोर पातीराम शिवहरे नर्सिंग कॉलेज भिंड में किया गया। प्रतियोगिता के लिए टीम चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें मूल्यांकन के बाद प्रथम 6 टीमों का चयन किया गया। इन 6 टीमों के साथ ऑडियो वीडियो राउंड के माध्यम से क्विज प्रतियोगिता की गई, जिनमें प्रथम स्थान सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 भिंड, द्वितीय स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोड़ा, तीसरा स्थान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहा, चतुर्थ स्थान सादीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव और पांचवां स्थान द इंडियन पब्लिक स्कूल डबोह, छठवां स्थान सिटी सेंटर पब्लिक स्कूल भिंड ने प्राप्त किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ वीर सिंह चौहान ने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यों में विद्यार्थियों को अवश्य सहभागिता करनी चाहिए, जिससे जीवन जीने की कलाएं प्राप्त होती हैं और भविष्य में परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्राप्त होता है। भिंड कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में सभी जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियां, सामने आई समस्याओं, ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं और आगे की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से पंचायतों में किए गए जनसंवाद के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी ली। अधिकारियों को जनसंवाद के निष्पक्ष और प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष रूप से कहा कि जनसंवाद केवल योजनाओं का वितरण नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर में वास्तविक परिवर्तन लाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक पंचायत में यह देखना अनिवार्य है कि क्या लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर और सही ढंग से मिल रहा है। बैठक में निर्देश दिए गए कि जन संवाद के दौरान प्राप्त शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया फिल्म नायक का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार एआर रहमान। सुनना चाहते थे आप सब। कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गरवी। खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल और तन्वी। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन और गुड़िया। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। जलगांव से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन। और आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और हिमेश रेशमिया का संगीत बद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है क्योंकि।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सब। आप हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, वर्षा, सुमन, भानुप्रिया, मेघा, राशि, माधुरी और किरण। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी साव, अजय कुमार, अभय कुमार और पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरी डीह से गुड्डू कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, शिवानी कुमारी, प्रियंका, हीरा, मोती, पन्ना, शीत, बसंत, बीके सिन्हा, बांके बिहारी, बाबू मोशाए और कलकत्तिया बाबू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं।

व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। आप हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। बहुड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। खांडवी बुल्ढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े। थिलोरी अमरावती से सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन।

भोंडे, शिवाजीनगर वड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराताई खोबरखेड़े और छकुलीताई खोबरखेड़े, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और उनके परिवार के सभी सदस्य। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: आइए सुनते हैं अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बरेडी से, नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से और हर्षिता लाम से। न्यू बजरंग कॉलोनी, राजा गैस गोदाम, गोल पहाड़िया, लश्कर, ग्वालियर से नेत्राम गोड़िया, सूरज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आद्या और श्रेया देवांशु। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव और नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और बेबी सिया जाधव। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदागर संतर मुरार से, गुड्डू मिश्रा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और जतिन ललित का संगीतबद्ध किया फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत।

आइए अब पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। आप हैं ग्राम संदलपुरांतरी से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी और चित्रेखा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, उमेश और धनेश्वरी वर्मा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक कुमार वर्मा, राजकुमार बोडाना। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शिवचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया फिल्म कसूर का ये गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं आप सब। कोपर गांव से सुलेश मालोदे, वर्षा मालोदे, शेवगांव से श्रीराम गोंधली, उषा गोंधली, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत। गीतकार सावन कुमार, संगीतकार राजेश रोशन।

0: और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आप सबकी पसंद। आप हैं बगबड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। बुलढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार दामोदर। आप सब सुनना चाहते हैं उदित नारायण, सुनिधि चौहान और निहिरा जोशी के स्वर में फिल्म बंटी और बबली का ये गीत। गीतकार गुलजार, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: सारे काम कर देते, ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।
2: खाली

0: निर्मला सीतारमण आज मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आईएसएमआर में हिस्सा लेंगी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 39वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाडली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,500 रुपए की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति शुरू की गई है। प्रदेश भाजपा प्रदेश स्थापना दिवस पर छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं एक दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज दोपहर 3 बजे से भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से मुकाबला अहम है। उधर भारतीय महिला टीम ने कल शाम अपने ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दी। भारत अपने अंतिम पूल मैच में कल से खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कविता रावत द्वारा प्रस्तुत फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुनें।

0: श्रोताओं नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से है इंतजार। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते।
0: हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं आप?
1: थैंक यू।
0: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
1: रश्मि तिवारी।
0: रश्मि तिवारी जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: सागर से।
0: सागर से, अच्छा आपने शायद पहली बार कॉल किया है रश्मि जी।
1: नहीं, हम तो कई देर किया कॉल।
0: अच्छा अच्छा, अभी कितने दिन बाद, एक हफ्ते बाद कॉल किया है या इसके पहले भी बात कर चुकी हैं?
1: 6-7 महीना।
0: अरे चलिए कोई बात नहीं। और कैसी हैं रश्मि जी?
1: ठीक है, मौसम है वो पानी गिर रहा खुल जाता है, ठंडा मौसम है।
0: और गीत कौन सा सुनना चाहती हैं? मुस्कान का कौन सा गीत?
1: जाने मन छुपके छुपके।
0: जाने मन छुपके छुपके,
1: डैडी के टॉप को भी, रानू को भी और रानू के हस्बैंड को भी और आप और हमारा ने और नंदनी के लाने।
0: अरे वाह क्या बात है भाई,
1: थैंक यू।
0: हाँ थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं देख लूँ पहले मुस्कान फिल्म का गीत हाँ हमारे पास है, तो मुस्कान का कौन सा, जाने मन चुपके चुपके।
1: हाँ।
0: चलिए ठीक है, तो ये गीत बिल्कुल आप सुनिएगा। और अभी क्या कर रही थी आप?
1: खाना बना के फ्री बैठे।
0: अच्छा,
1: और कहीं कॉल ही कर लाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया। और अब उम्मीद करते हैं कि आप बार बार कॉल करेंगी लेकिन एक हफ्ते के बाद। चलिए रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया। नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ
1: आकाशवाणी
0: जी
1: मध्य प्रदेश।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी, मैं मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मुन्ना सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं।
1: एक थोड़ी सी आपसे हम शिकायत करते हैं मैडम।
0: करिए।
1: पिछली बार जो है हमने फोन लगाया था
0: हाँ
1: 14 जून को,
0: अच्छा
1: उसके बाद फोन लगा 16 अगस्त को, मतलब परसों के दिन।
0: हाँ
1: रिकॉर्डिंग भी हुई
0: हाँ
1: 10:45 पर, अपनी
0: अच्छा। हाँ
1: समय सीमा पर।
0: हाँ
1: अगले दिन 17 अगस्त को प्रोग्राम प्रसारण भी हुआ,
0: हाँ
1: लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग प्रोग्राम से काट दी गई।
0: अच्छा, चलिए इस बारे में हम पता करेंगे। बाकी ये हो सकता है कि आपके पहले जितने कॉलर्स रहे होंगे उनका प्रोग्राम बनाते बनाते ही समय पूरा हो गया होगा, ये संभावना होती है हम लोगों के साथ।
1: जी
0: तो
1: मैडम,
0: हम क्या कॉलर्स के एक आध कॉल एक्स्ट्रा में इसलिए ले लेते हैं कि कभी कम ना पड़ जाए समय। तो गाने वाने जब ऐड करते हैं सब, तो वो टोटल हमारा टाइम 58 मिनट्स का होता है, बल्कि फिफ्टी
1: जी
0: सेवन मिनट 30 सेकेंड का। तो उस बीच में है ना, फिर एका श्रोता का कॉल कट ही जाता है। तो वो हम लोगों की मजबूरी है, उसे आप प्लीज समझिए और किसी से भी नाराज मत होइए।
1: जी मैडम,
0: है ना,
1: जी
0: आज का कॉल आपका दूसरे नंबर पे ही है, तो ये गारंटी है कि कल आपका कॉल प्रोग्राम में ज़रूर आएगा।
1: जी
0: है ना, लास्ट लास्ट के जो एक दो कॉलर्स हैं उनके साथ ये समस्या आए दिन हो जाती है, और इसी वजह से होती है कि समय सीमा का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है।
1: का गीत सुनना है मैडम।
0: हाँ जी बताइए।
1: फिल्म का नाम है उसने कहा था।
0: उसने कहा था।
1: उसने कहा था, और गाने के बोल हैं, आहा रिमझिम की फुहारे सावन गीत के लिए, आई रात सुहानी देखो प्रीत के लिए।
0: हाँ बिल्कुल सही है, ये गीत तो मिल गया हमको, और कल के प्रोग्राम में आप अपनी सारी बातें और गीत ज़रूर सुनेंगे, और खुश रहिएगा, मस्त रहिए,
1: जी मैडम,
0: और बिल्कुल तनाव
1: धन्यवाद
0: मत
1: मैडम, नमस्कार
0: पालिए।
1: मैडम।

0: किसी की भी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सब श्रोता हमें बहुत प्रिय हैं। सिर्फ लास्ट के कॉलर्स जो भी रहेंगे तो वह मजबूरी है कि कभी कभी उनका कॉल्स कट सकता है। ठीक है
1: जी,
0: जी नमस्ते मुन्ना जी,
1: धन्यवाद मैडम।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके मुझे और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए,
0: अच्छा,
1: आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपसे बातचीत करके सच में हमें लग रहा है कि हमारे इतने नए नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी, बिल्कुल। मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने की वजह से है ना,
0: हाँ,
1: हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को मिल जाता है स्पष्ट प्रसारण के साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है।
1: जी
0: और सुनाइए प्रेम सिंह जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी आपको बताऊं, गीत सुनने से पहले, मौसम काफी अच्छा है हमारे यहाँ पर अभी, और आज सुबह अच्छी बारिश हुई आधे घंटे से, और
0: अच्छा,
1: उज्जैन महाकालेश्वर के लिए बहुत दूर दूर से मतलब दर्शन करने के लिए एक लोग आ रहे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही बात है। और आप तो वाकई बहुत अच्छी नगरी में, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: भक्ति से
1: हमें तो बड़ा
0: ओतप्रोत हो
1: सौभाग्य
0: रखे
1: मिला है,
0: होंगे।
1: और हम तो यही चाहेंगे कि बाबा की कृपा सभी पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे। जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बनी रहेगी। तो
1: तो साथ में महाकालेश्वर के मंदिर के ही साथ में एक नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है,
0: हाँ जी।
1: उसके बारे में बताना चाहूंगा। हर मतलब नाग पंचमी के दिन यहाँ पर द्वार खोले जाते हैं एक साल में एक बार,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसा मान्यता है कि वहाँ स्वयं नाग देवता दर्शन देते हैं।
0: हाँ जी
1: जी, और एक दीपक जलता हुआ मतलब आज छोड़ते हैं ना,
0: हाँ
1: तो अगली
0: हाँ
1: नाग पंचमी तक ऐसे ही वह दीपक जलता रहता है।
0: अरे
1: जी
0: वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे बाकी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सुनकर। गीत बताइए प्रेम सिंह जी। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे, एक हफ्ते के पहले आपका कॉल तो नहीं लगा ना?
1: नहीं लगा है। जी,
0: चलिए तो ठीक है, गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है दूध का कर्ज, और गाने के बोले
0: हाँ,
1: मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मैं तो बीन बजाऊंगा।
0: अच्छा, तो आपने ये
1: जी
0: नाग पंचमी के ऊपर ही लिया
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: है ना?
1: ये गाना
0: चलिए,
1: मतलब समझिए कि नागपंचमी के उपलक्ष्य में ही मैं सुनना चाहता हूँ।
0: हाँ, चलिए बिल्कुल, जरूर सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद का गीत, कल के प्रोग्राम में
1: और
0: सुनिएगा।
1: जी बिल्कुल, और एक बात है, अमिता त्रिवेदी जी मिले तो हमें हमारा नमस्ते बोलिएगा उन्हें।
0: बिल्कुल, वो है ना, सुन रही होंगी आपका प्रोग्राम, मुझे ऐसी उम्मीद है। और
1: जी
0: खुश होंगी कि है ना, हमें अभी भी लोग याद करते हैं।
1: जी और अमिता त्रिवेदी जी और राजेश भट्ट से मेरी काफी पहले बातें होती थी।
0: जी जी जी
1: वो एक प्रोग्राम पेश करते थे एड्स के बारे में,
0: हाँ,
1: उसमें मैंने काफी पार्टिसिपेट किया, पत्र द्वारा वो कार्यक्रम चलता था ना,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: उसमें मतलब एक कहानी सुनाई जाती थी और फिर एक विनर को भी घोषित किया जाता था, तो
0: जी
1: उसका सवाल मैंने कई बार सही दिया और मैं कई बार विनर बना वहां पर।
0: बिल्कुल। तो आप तक उनकी आवाज़, आपकी याद जरूर पहुंचेगी, और उन दोनों की तरफ से शुक्रिया। ठीक
1: जी
0: है
1: धन्यवाद।
0: जी।

0: बहुत अच्छा हूँ। आपका आशीर्वाद वहाँ के बिहारी कृपा है। घर परिवार में सब लोग आनंद रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। आप लोगों से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत ही सुखद अनुभूत होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सावन की घटा।
1: सावन की घटा।
0: जी अभी उमर घुमर के बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सावन का महीना है। हाँ। और कभी कभी रिमझिम बारिश होती है, कभी टिप टिप बारिश होती है, कभी झमाझम बारिश हो जाती है।
1: हाँ।
0: और ऐसे में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत फिल्म सावन की घटा से रफी साहब ने गीत को गाया है।
1: कौन सा गीत बताइए रफी साहब का गाया हुआ?
0: चेहरे से जरा
1: जुल्फों को हटाओ।
0: हटा ले जुल्फों, चेहरे से जरा हटा ले जुल्फों को, थोड़ा सा उजाला होने दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत आप जरूर सुनेंगे कल के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी कॉल करने के लिए।
0: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: सादर नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेगी सुने
0: जी। हाँ, फोन करेंगी सुने में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: जी। मैडम, मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बगुला से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी, पूरन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और
1: जी
0: क्या
1: मैं
0: हाल
1: बात
0: है
1: कर रही था
0: आपके?
1: मैडम।

0: बोल रही हैं सर?
1: जी हाँ, मैं कविता बोल रही हूँ। धन्यवाद आवाज से पहचानने के लिए।
0: जी मैडम, काफी दिनों के बाद बात हो रही है। कैसे हो मैडम आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: जी मैडम, मैं तो बढ़िया हूँ। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, बहुत बिजी आने लग गया आजकल। तो
1: और जयपुर में मौसम कैसा है पूरन जी?
0: जयपुर में अच्छा मौसम है मैडम। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, ठंड है, हवा चल रही है, पर यह है कि बारिश का इंतजार है मैडम अभी।
1: हाँ, अभी बारिश की पूर्ति पूरी नहीं हुई है ना?
0: हाँ जी, हाँ ठीक है, हुई है, एक बार हुई थी तो 2-3 दिन पहले, पर कम हुई मैडम। तो अगर आ जाए ना तो, क्योंकि अब बाजरा की फसल लगाई है खेतों में, उसके लिए पानी चाहिए मैडम।
1: और जयपुर
0: आपको
1: शहर
0: उधर?
1: तो बहुत ही खूबसूरत है ना पूरन जी?
0: हाँ जी मैडम, हाँ जी।
1: बिल्कुल।
0: आपको उधर कैसा हो रहा है मौसम?
1: हमारे अभी रिमझिम फुहारे हैं एकदम, बहुत लग के बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी सी हो गई है कंपैरेटिवली।
0: जी मैडम,
1: गीत बताइए, कौन से गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम, मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है पाप की दुनिया। मिल जाएगी आपके पास?
1: मैं कोशिश करती हूँ, अगर मिल गई तो बहुत ही अच्छा है।
0: और उसमें गाने जो बोलते हैं, तू मेरा दिल का तोता, मैं दिल तेरे दिल की मैना,
1: जी, मिल
0: खुले
1: गया।
0: आसमान में उड़ते, ऐसा कुछ गाना है, अगर ये
1: हाँ
0: मिल
1: हाँ
0: जाए तो।
1: मिल गया, मिल गया ये गीत
0: जी
1: तो। पक्का आपका ये कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत सुन सकेंगे, ठीक है पूरन जी?
0: जी मैडम, मिल तो गया ना गीत, नहीं तो
1: हाँ
0: वो तो
1: हाँ
0: कई
1: मिल गया,
0: बार।
1: मिल गया, किशोर कुमार का गाया हुआ मैं तेरा
0: हाँ नहीं
1: तोता।
0: मैडम, ये अनुराधा पोटवाल की आवाज थी शायद इसमें।
1: अनुराधा पौडवाल की आवाज़ तो नहीं है, एस जानकी की आवाज़ है किशोर कुमार जी के साथ में।
0: उस गाने तो बोलते, मैं तेरे दिल की मैना होती, तू मेरे दिल का तोता, ऐसा कुछ गाना था
1: हाँ,
0: वो।
1: यही गीत है मैं तेरा तोता, पाप की दुनिया फिल्म का, ये मिल चुका है और यही है ये। इसके अलावा कोई और पाप की दुनिया मूवी तो नहीं है हमारे पास, यही है जो किशोर कुमार की आवाज़ में है और एस जानकी है साथ में। अनजान का गीत है और बप्पी लहरी का संगीत।
0: चलो ठीक है मैडम, ये सुना दीजिए, सुन के पता लगेगा
1: ठीक,
0: फिर अगली बार।
1: बिल्कुल
0: थैंक
1: बिल्कुल, हाँ जी ठीक है, धन्यवाद कॉल करने के लिए
0: यू मैडम।
1: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है हमारा
1: जी
0: फोन
1: जी
0: करिए।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहे दीदी मनोज नामदेव।
0: मनोज जी, क्या हाल है आपके?
1: बस दीदी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बढ़िया है। दीदी सब पर काम कर रहे थे और काम करते करते अचानक आपकी याद आ गई दीदी।
0: अरे वाह भाई, अचानक याद मत किया करो। टाइम
1: नहीं
0: से
1: नहीं
0: याद किया करो आप, कि हमारा फोन इन प्रोग्राम जब रिकॉर्ड हो रहा हो।
1: आपको तो प्रतिदिन याद करते हैं, लेकिन फोन करे जिस समय की अचानक में याद आई कि आज तो मंगलवार है,
0: बहुत
1: आज तो
0: सही
1: मुझे
0: टाइम
1: फोन
0: पर
1: ही करना
0: आपने
1: है।
0: कॉल किया है।
1: जी
0: तो
1: दीदी बिल्कुल।
0: बताइए मनोज जी, कौन सा गीत सुनने का मन है आज?
1: हाँ दीदी आज सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा चम्मल की कसम,
0: ओहो, चंबल
1: और
0: की
1: उस
0: कसम।
1: जी उसमें गाना है मेरे भैया से कहना बहना याद करे रक्षाबंधन पर्व
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: पर
0: हैं।
1: उपलब्ध कर है दीदी।
0: हाँ, चंदा रे मेरे भैया से कहना।
1: चंदारी नहीं है दीदी, मेरे भैया से कहना बहना याद करे, ये है गाने की बोल।
0: लेकिन इसकी जो शुरुआत है ना, वो यही है, चंदा
1: चलो
0: रे
1: ठीक है
0: मेरे
1: तो
0: भैया
1: चलेगा
0: से
1: चलेगा,
0: कहना,
1: चलो चलो दीदी ये चलेगा
0: क्योंकि
1: दीदी।
0: मेरे सामने ही है वो गीत,
1: हाँ तो बिल्कुल दीदी
0: है ना?
1: चलेगा,
0: बिल्कुल, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छा गाना
1: बिल्कुल
0: है
1: दीदी
0: ना? चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: दीदी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपके कार्यक्रम पेश हो रहे हैं
0: जी
1: और फोन के गीत सुने हैं, सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे सभी कार्यक्रम लग रहे हैं, तो
0: जी
1: मेरी ओर से सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी धन्यवाद।

0: इसके साथ ही अनुमति दीजिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति के साथ। अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। ISMR की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज लाड़ली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाड़ली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,500 रुपए की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जाए। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायसेन, सागर, जबलपुर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले सुनवाते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की, और अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही ये हमारे श्रोता है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और समस्त परिवार, और आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हमारे श्रोता है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरव, साइना शर्मा और निवान शर्मा। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अनपढ़ फिल्म का गीत।

श्रोताओ, राखी का त्यौहार सामने आ रहा है और हमारे सभी श्रोता लगभग राखी से संबंधित गीतों की फरमाइश कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश थी ये, दिल को मन को छू गई और भावुक कर गई है। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक नज़र फिल्म का गीत, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद किया है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल और अनुत डेरे। और घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हमें मिला है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमंती पंचोलिया का। और इसी गीत को पसंद किया है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, J.S. नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। तो सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सी नज़्म।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम शामिल कर रहे हैं उसे पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़ कर राही श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता अर्जुन गवाड़कर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परीने और ये खत मिला है छत्तीसगढ़ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू का। हमारे ये सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अनवर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, जिसे हमने लिया है जनता हवलदार फिल्म से।

कार्यक्रम में अब जो गीत हम शामिल करने जा रहे हैं वो भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ही है, लेकिन फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मास्टर मनीष और गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और स्वीटी बेबी प्रियांशी का। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

और कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगम फिल्म के लिए इसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिधिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुस्ताफा खान पुत्री अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई, गांधी भाई अकोला से गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इस गीत को सुनना चाहा है। कवाई बारो राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने।

0: इस गीत के साथ ही अनुमति दीजिए आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका को आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
5: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
7: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
7: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
7: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
9: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा?
10: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
8: और
10: फिर ले आनंद इस मौसम का।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की पहली कड़ी।

0: नींद कहाँ से आएगी जमुनिया?
1: कुछ सोचो मत, आंख मूंदो, नींद आ ही जाएगी।
0: हम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, बस छटपटा सकते हैं, सो छटपटा रहे हैं।
1: क्यों जी, ऐसा काहे कह रहे हो? हाँ,
0: और नहीं तो क्या? अरे, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो भी ठीक से पेट भी नहीं भर पा रहे हैं सबका।
1: अरे, एक आदमी कमाएगा तो सात सात आदमी का पेट कैसे भरेगा? हम अपने भाई को समझाओ कि वो भी कुछ काम धाम किया करे। यूं ही खाना गुर्राना और दिन भर आवारागर्दी, यही तो एक काम रह गया है उसका।
0: अपने आप एक दिन उसको लगेगा कि कुछ करना चाहिए, तो करेगा ही। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो और ढीठ हो जाएगा।
1: ठीक है पापा, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बस आप सो जाइए, कल सरकारी दफ्तर जाना है।

0: सरजमीन का पट्टा होगा, हमें भी कुछ जमीन मिलेगी, आपन जमीन होगी। मेहनत करेंगे, सबका पेट भरेगा। सरकार हमारे बारे में सोच तो रही है ना?
1: सरकार तो सोचती ही रहती है, पर दीवान जैसे लोग बीच में ही भांजी मार देते हैं। हमें तो कुछ मिलता ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा होगा, हमें भी मिलेगा।
1: ठीक है भाई, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो।
0: देखो जी, हमारे भगवान तो तुम ही हो, दुखी मत हो। हाँ, बस आराम करो।
1: अरे वाह, बड़ी सयानी हो गई हो जमुनिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीख ली?
2: माई, ओ माई, जरा पानी देना।
0: बबुआ पानी मांग रहा है, देकर आती हूँ। हाँ
3: आई।
0: अब सो जा बेटा।
2: ठीक है माई, सो जाऊंगा। कुछ खाने को है क्या माई?
0: अभी तो खा के सोया था ना, अब सवेरे खाना। बार बार खाने से पेट खराब होता है।
2: ठीक है माई।
1: एक लिट्टी रखी तो है उसमें, उसी में से एक टुकड़ा खिला दो उसे।
0: अरे वही एक लिट्टी तो तुम्हारे कल दिन भर का सहारा है, उसको खिला दिया तो तुम्हें सवेरे क्या परोसूंगी? क्यों जी, हंसे काहे? ऐसा क्या कह दिया हमने?
1: लिट्टी परोसने पर हंसी आ गई, और लिट्टी भी क्या परोसने की चीज है?
0: क्यों, लिट्टी की कोई इज्जत नहीं है का?
1: अरे बहुत इज्जत है, पर ये भकोसने की चीज है, परोसने की नहीं, समझी?
0: समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब आराम करो और सो जाओ।

0: Are Karan? कितने पिएगा तू यार, पहले ही बहुत पी ली है।
1: तू मेरे पीने का हिसाब कर रहा है क्या? मेरा भाई रतन तो कुछ कहता नहीं है जो मुझको खिलाता है। तू कौन होता है हिसाब करने वाला है?
0: अरे यार, मैं तो कोई नहीं होता भैया, पर रतन भाई का तो ख्याल करो यार। रात भी काफी हो चुकी है, घर चलो यार।
1: कमाएं खिलाएं और दुनिया की वाहवाही लूटें। और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो मौज करे मस्त रहे, कहो किसी का ये।
2: पीने के बाद तो कैसा हो जाता है भाई?
1: किससे हो जाता हूँ? रहता तो मैं एक सही हूं, पीने के बाद बस बोल देता हूं।

0: तो मुंह लगना गलती है।
1: अबे तो क्यों लगते हो मेरे मुंह में? ला भाई एक गिलास और पिला, खिला होते भाई।
2: अरे ये रहा करण, मैं ना कहता था कि ये इसी अड्डे पर मिलेगा।
3: तू ठीक कहता था। ए करण, तुझे दीवान जी ने याद किया है।
1: चलो, अरे अरे
3: चल।
1: अरे, चलता हूँ भाई, चलता हूँ। ये गिलास तो गटक लेने दो भाई।
2: अरे अब जल्दी से गटक और चल उठ, वरना तो।
1: वरना क्या, मारोगे?
2: हेलो,
1: मारो,
2: चल
1: मारो, मारो,
2: मारो। तेरी ये मजाल बहस करता है।
3: हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो।
1: अरे अरे अरे
2: चुप
1: चुप, छोड़
2: छोड़ बात नहीं, बात नहीं।
1: अरे तो चल रहा हूँ भाई, कौन तुम्हारा मुंह लगे यार, दीवान के आदमी हो, तुम्हें क्यों कह रहा है?
4: ओ भैया जी, पैसे पैसे।
1: अरे लिख लेना, पैसे पैसे लगा हुआ है, देख नहीं रहा दीवान ने बुलाया है?
4: आओ तो देख रहा है भैया, पैसे तो दे जाओ।
1: लिख लो
4: भैया, इसके पैसे लिख ले।
2: चल चल चल,
1: अरे चल रहा है भैया, सराफत से तो चलो। चल चल चल।
2: लो मालिक, करण को ले आए हम।
3: ना कर रहा था, धमका कर ले आए।
1: मैंने कब ना की? अरे तुमने कहा दीवान जी ने याद किया है तो मैं तुरंत उठकर चल दिया, दारू का पैसा भी नहीं दिया जल्दी के मारे।
5: ठीक है ठीक है, अच्छा तुम लोग जाओ और इस करण को यहीं छोड़ जाओ।
3: ठीक है
2: मालिक, मालिक।
5: उधार की कितनी दारू पी चुका है तू करण?
1: अब आपसे झूठ तो बोलेंगे नहीं सरकार, 2,500 तो हो गए होंगे।
5: 2,500 की उधारी? एक बात पता, इतनी उधारी चुकाएगा कैसे? तू तो कुछ करता धरता नहीं, और तेरे भाई रतन की कमाई वो तुम सबका पेट भरने के लिए कम पड़ती है। सुन, तू हमारे साथ मिल जा। हाँ, अरे हमारा काम कर, हम तेरा कर्जा भी चुका देंगे और ऊपर से अंग्रेजी दारू का इंतजाम भी कर देंगे।
1: ये तो मेरे बड़े नसीब की बात होगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा?
5: ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। हे, हे, कुछ भी। अच्छा सुन, सुन करण सुन, मुझे लगता है तू अभी नींद में है और नशे में भी, और तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत भूखा भी है।
1: आप सही पहचाने मालिक, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा।
5: अरे कहाँ जाएगा इतनी रात को? सुन, मैं तेरे लिए यहीं खाना मंगवा देता हूँ ना। हाँ, खाकर यहीं सो जा और फिर सवेरे आराम से काम की बातें करेंगे।
1: अरे सरकार, भैया भाभी राह देख रहे होंगे।
5: कोई किसी की राह नहीं देखता करण, छाओगे जगाओगे तो मैं कोस कर दरवाजा भी खोल देंगे बेचारे। ना खुद परेशान हो ना उन्हें परेशान कर, खाना खाकर यहीं आराम से सो जा। सवेरे बात होंगी बाकी की।
1: ठीक है मालिक, जैसा हुकुम आपका।
5: शाबाश, बहुत बढ़िया।
2: अरे बकुल है
6: जी मालिक।
5: सुनो, इस करण को ले जाओ और आराम से खाना खिलाओ, और हाँ बाद में यहीं 12 दरी में सुला दो इसे।
6: जो हुकुम मालिक।
5: ले जाओ।

0: चल रहा हूँ। अरे यार धीरे धीरे से,
1: प्यार से ले जाओ
2: जी मालिक,
1: आराम
2: जी मालिक,
1: अपना मेहमान है, मेहमान है अपना।

0: जमुनिया, अरे कहाँ हो भाई? बच्चे अभी उठे नहीं हैं क्या?
1: अरे वो तो उठ गए और गुड़ चना खाकर जंगल को भी चले गए हैं लकड़ियां बीनने।
0: तो ला भाई, अब मेरा भी कलेवा परोस दे। अरे आज वो शहर जाना है, हमें जमीन मिलनी है ना।
1: ये रहा आपका कलेव।
0: अरे वो करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो?
1: अरे वो तो रात आया ही नहीं, क्या पता कहाँ गया होगा, और नहीं तो दारू के अड्डे पे पड़ा होगा। मैंने तो उसकी चोरू से भी कहा कि उसे समझाए, पर वो किसी की सुनता कहाँ है।
0: अरे तू छोड़, समझ जाएगा तो सबकी सुनेगा। अब बस मैं चलता हूँ अब।
1: अरे आईना तो देखते जाओ, आज सोमवार है, शुभ रहता है। और सुनो, तुम बुरा ना मानो तो मैं भी साथ चलूं।
0: ठीक है भाई, तू भी चल। एक से भले दो, और ला वो तेरा आईना भी देख लूं। अब उसमें देखना तो मुझे ही है ना, कितना शुभ होगा पता नहीं।
2: अरे सुना
3: जी मालिक,
2: देखो वो करण जागा कि नहीं।
3: अरे नहीं मालिक, वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है।
4: हाँ मालिक,
2: घोड़े बेचकर सो रहा। घोड़े बेचकर सो रहा। अरे उसके पास गधा तो है नहीं बेचने को, और घोड़े बेचकर सो रहा। जाओ जगाओ से और बोलो कि हमने बुलाया है।
3: जी मालिक।
2: जाओ तुरंत।
4: जी मालिक जी। करण चल उठ।
5: हाँ हाँ उठ जा, उठ जा।
4: चल मालिक ने बुलाया।
6: प्रणाम मालिक।
2: प्रणाम प्रणाम करण भैया प्रणाम। नींद अच्छे से आई ना?
6: अरे मालिक पता ही नहीं लगा, बड़ी अच्छी नींद आई।
2: शाबाश भाई, हमने तो रात को ही तुमसे कहा था कि घर मत जाओ, घर वालों को परेशान मत करो, पर यहाँ सब तुम्हारे लिए सुविधाएं हैं, खाओ पियो आराम से सो। ठीक है ना?
6: हाँ जी।
2: सुनो करण
6: जी,
2: अब बात यह है कि वो आज भूमिहीनों को
6: हाँ।
2: ग्राम समाज की बंजर जमीन बांटी जानी है।
6: अच्छा, मुझे नहीं मालूम मालिक।
2: हाँ?
6: हाँ।
2: तुम्हें नहीं मालूम?
6: ना मालिक।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, करण भैया तुम तो भैया निरे भोले हो। हाँ। अच्छा तुम्हारे भैया रतन ने ये बात नहीं बताई तुम्हें?
6: जी नहीं मालिक, भगवान कसम नहीं बताई।
2: हैं?
6: हाँ।
2: हो, चलो चलो कुछ कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो करण भैया,
6: हाँ।
2: तुम हमारे साथ चलो आज। हाँ
6: आओ मालिक।
2: हाँ वहाँ खुद देख लेना कि कैसे क्या होता है।
6: क्या होगा मालिक वहाँ?
2: अरे करण भैया होगा क्या, वो ग्राम समाज की जमीन का पट्टा बटेगा ना।
6: अच्छा,
2: तो तुम्हारे भाई को जमीन मिलेगी।
6: और मुझे?
2: हैं? तुम्हें काहे को मिलेगी? अरे ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो भैया, एक ही परिवार के

0: कई सदस्य को मिलेगी ना जमीन, है? नहीं आई समझ में? अरे खाम खा परेशान हो रहा है। अरे भाई जाओ ले जाओ इसे, समझाओ भाई क्या नियम कायदा है, जाओ।
1: आया मालिक। हाँ। आया, आया। चलो करण भैया। हाँ। हम तुम्हें समझाते हैं।
0: हाँ। सुनो सुनो।
1: हाँ। जी मालिक।
0: भाई हमारे शहर जाने का इंतजाम तो करो।
1: आप भी जाएंगे मालिक?
0: जाना तो पड़ेगा भैया, कम से कम वो जमीन तो बचानी पड़ेगी जो ग्राम समाज की है, और हम उसे जोत बो रहे हैं। अरे अगर पटे भी तो उन्हें जो हमारे पास काम कर रहे हैं, समझे?
1: जी मालिक।
0: अरे ये नया वीडियो किसी की सुनता ही नहीं ससुर, वरना हमारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: ट्रैक्टर तैयार करवा देते हैं, उसी से जाएंगे ना मालिक।
0: हाँ और सुनो, थोड़ा जल्दी तैयार करवा देना।
1: जी मालिक, जी मालिक, जैसी आ गया।

0: ट्रैक्टर में बैठने का आनंद ले रहे हो?
1: बहुत मजा आ रहा हूँ मालिक।
0: लग रहा आप पहली बार बैठे हो ट्रैक्टर पे।
1: आओ मालिक।
0: अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही आनंद में रहोगे।
1: आओ मालिक।
0: पर चिंता में दिख रहे हो भैया तुम। सुन हमारी बात सुन लो।
1: हाँ।
0: ऐसा है, जमीन तुम्हें मिलने से रही। हाँ वो बात यह है, मिलेगी तो रतन को ही। वैसे भी भैया वही कमाता खिलाता है तुम लोगों को।
1: हाँ सो तो है,
0: ये गांव के सब लोग जानते हैं ना भैया।
1: आओ मालिक।
0: हाँ अरे तुम्हें तो पहले भी कुछ ना करना था और ना तुमने कुछ किया है कि नहीं। अब भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ
1: मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया मालिक।
0: नहीं समझे तुम
1: ना।
0: चलो तो तफसील से समझाते हैं तुम्हें, ध्यान से सुनना।
1: आओ मालिक।
0: अब ये जमीन जिसे मिलेगी उनके पास पहले से जमीन तो होगी नहीं, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ और जो जमीन मिलेगी वो होगी बंजर, ऊसर, जिसमें खेती करना मुश्किल होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ अब उसे समतल करवा के खरपतवार पत्थर निकलवा कर जोतने बोने लायक बनाना होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ और फिर उसके ऊपर से बीज, पानी, जुताई, गुड़ाई सब लगेगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ इन सब के लिए पैसा हम देंगे। सभी पट्टेदारों में ये बात तुम फैलाओगे।
1: फैला देंगे मालिक।
0: हाँ और वो लोग तुम्हें बताएंगे कि इस काम के लिए तो बैंक भी कर्ज देते हैं।
1: हाँ वो तो देते हैं।
0: तो हम बैंक से कम ब्याज पर पैसा देंगे।
1: हाँ मालिक।
0: और तुम कुछ खास लोगों को कहोगे तो बिना ब्याज के भी पैसा दे देंगे।
1: हैं?
0: हाँ अरे भैया हमें तो तुम सबका भला करना है ना।
1: ये पक्की बात बोली मालिक आपने।
0: है कि नहीं
1: मालिक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का पहला भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर के आधिकारिक दौरे पर हैं। वे वहां चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक ISSMR में हिस्सा लेंगी। ISSMR की शुरुआत 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1,25,13,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा। लाडली बहनों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1,500 रुपये की राशि के अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प के संदर्भ में संचालित गतिविधियों और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जाए।

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर जिले में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायसेन, सागर, जबलपुर, रीवा और छतरपुर सहित एक दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज दोपहर 3 बजे से भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिहाज से ये मुकाबला काफ़ी अहम है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है।
1: सावन की ठंडी फुहारों के बीच आप सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। इस समय आपके साथ है आपकी दोस्त धम्म मित्रा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, ये बारिश की बूंदें धरती को हरा भरा कर देती हैं। इससे किसानों के चेहरों पर चमक आ जाती है। खाली बांध भर जाते हैं बारिश के पानी से, जो लोगों की प्यास बुझाते हैं साल भर। पर यदि यही बारिश जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ का संकट खड़ा हो जाता है। बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, संक्रमण और खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। सखियों, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटना काफ़ी कठिन होता है। भूकंप, अकाल, महामारी, युद्ध जैसी घटनाओं में भी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। सखियों, प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित संकट, इनमें पूरी मानव जाति प्रभावित होती है। ऐसे में सहायता करने के लिए निकल पड़ते हैं लोग जिनमें जज्बा होता है सहायता का, हिम्मत का, लोगों की मदद का, जिसे कहते हैं मानवीयता। मानव का मानव के प्रति, किसी प्राणी के प्रति प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे गुण को दर्शाना बिना किसी भेदभाव के। सखियों, मानवीयता एक व्यवहार है जो हमें दूसरों के दुख को समझना सिखाता है और यही मानवीयता समाज का आधार भी है। सखियों, विश्व मानवीयता दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मान देने और उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संकट में फंसे लोगों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी या अपना जीवन समर्पित कर दिया। सखियों, 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर एक बड़ा बम धमाका हुआ था। इस भयानक बम धमाके में इराक में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्गियो वेरा डी मेल्लो समेत 22 मानवीय सहायता कर्मियों की भी मौत हो गई थी। इन शहीदों की याद में और मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में प्रस्ताव पारित किया और 2009 से हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवीयता दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों में मानवीय संकट में ज़रूरतमंद की सहायता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, साथ ही युद्ध और आपदा क्षेत्रों में काम कर रहे सहायता कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण की वकालत करना। सखियों, ये सहायता कर्मी पीड़ितों को भोजन, दवाइयाँ और बेघर लोगों को आश्रय जैसे आपातकालीन मदद पहुँचाते हैं, इसीलिए इन्हें हम राहतकर्मी या मानवीय सहायता कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। जब ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को सहायता पहुँचाते हैं तो ये लोग भी अपनी सुरक्षा और संरक्षण का हक रखते हैं। आइए हम भी संकल्प लें कि यदि कभी किसी को भी मुसीबत में हमारी मदद की आवश्यकता पड़े तो उस समय हम उसकी मदद ज़रूर करें। आखिर यही तो है मानव धर्म।

0: सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब आइए सुनते हैं कहानी मेहनत की कमाई। कहानीकार हैं मंदाकिनी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी।
1: डब्बू ने किराने की दुकान से 10 रुपए वाला ब्रेड का एक पैकेट खरीदा और बचे हुए पैसों को एक हाथ में अच्छी तरह दबाकर तथा दूसरे हाथ में ब्रेड के पैकेट को पकड़कर खुशी से झूमता हुआ घर की तरफ लौट रहा था कि दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उसे रंग बिरंगे कागज जैसा कुछ सामान सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो कुछ रुपए गुड़ी मुड़ी सी हालत में सड़क पर पड़े थे। शायद इसीलिए अब तक उन पर किसी की नजर नहीं गई थी। डब्बू ने उन पैसों को भी अपने एक हाथ में बड़े संभाल कर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि सड़क पर पड़ी कोई भी वस्तु को जब तक उसके वास्तविक मालिक तक नहीं पहुंचा दो, तब तक उसकी हिफाजत अपनी वस्तु की तरह ही करना चाहिए। डब्बू ने सड़क पर पड़े उन पैसों को किसी लालच के चलते नहीं उठाया था, बल्कि माँ की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उठाया था, और इसीलिए उन पैसों को उठाते समय उसने आसपास के माहौल पर नज़र डालकर यह सुनिश्चित कर लिया था कि उस समय उन पैसों का वास्तविक मालिक वहां उपस्थित नहीं था। डब्बू ने घर आकर अपनी माँ को ब्रेड का पैकेट और बचे हुए पैसे लौटाने के साथ ही सड़क पर पड़े पैसे भी दिए। उसकी माँ ने देखा तो उन पैसों में 10, 20, 50 के अलावा 5 के कुछ नोट मिलकर 1000 रुपये की राशि बना रहे थे। उन नोटों के संग्रह स्वरूप को देखते ही डब्बू की माँ को सारा मामला समझ आ गया। उसके भीतर का संवेदनशील मनुष्य द्रवित हो गया ये सोचकर कि जिसने इन पैसों का संग्रह किया है उसने परिश्रम कितना किया होगा और इनके यूं खो जाने पर वह इस समय कितनी पीड़ा में होगा। डब्बू की माँ ने डब्बू को साथ लिया और उस स्थान की तरफ चल दी जहाँ डब्बू को वह पैसे मिले थे। न जाने उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि पैसे का सही दावेदार उन्हें उसी स्थान पर मिलेगा। डब्बू के साथ वह उस किराने की दुकान के पास पहुंची ही थी कि एक वृद्ध महिला जो लगभग 68 साल की थी अपनी कमजोर आंखों से सड़क पर कुछ खोजने का प्रयास कर रही थी। डब्बू ने अपनी माँ को देखा और माँ ने डब्बू को देखा और दोनों ने आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे से कहा हो कि इन पैसों का सही उत्तराधिकारी मिल गया, किंतु फिर भी एक बार ये जांच कर लेना उन्होंने जरूरी समझा कि वह वृद्ध महिला क्या ढूंढ रही है। सो वह दोनों उस वृद्धा के समीप पहुंचे और डब्बू की माँ ने बड़ी विनम्रता के साथ उनसे पूछा, माँ जी आप कुछ ढूंढ रही हो? कहते हैं परेशानी की हालत में मनुष्य के पास यदि भगवान भी आ जाए तो मनुष्य उसको भी लताड़ सकता है। वही हुआ। उन वृद्धा ने चिढ़ते हुए से अंदाज में डब्बू की माँ से बोला, तुम्हें क्या करना है? मैं कुछ भी ढूंढ रही हूँ। अपनी माँ के संकेत पर डब्बू ने अपनी मीठी और भोली सी आवाज में वृद्धा से कहा, दादी आप परेशान मत हो, आप हमें अपनी परेशानी बता सकती हो, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वृद्धा के बूढ़े कानों में डब्बू की शहद जैसी आवाज़ पहुंची तो वह वहीं रुक गई और डब्बू की तरफ ध्यान से देखने लगी। ईश्वर जैसी निश्चलता ने वृद्धा को डब्बू से सब कुछ कह देने के लिए विवश कर दिया। वह बोली, बेटा क्या बताऊं? मैं पास ही की गली दानाओली में एक मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचती हूँ, उसी से मैंने कुछ पैसे लगभग 1000 रुपये जोड़े थे, उन्हीं को अपने बैंक के खाते में जमा करने जा रही थी ताकि दुकान के लिए कुछ और सामान ले सकूं। पर मेरी फूटी किस्मत तो देख कि मेरी अंटी में बंधे वो पैसे सड़क पर गिर गए। भगवान के दरवाजे पर बैठकर कमाया गया मेरी मेहनत का वो धन पता नहीं किसकी जेब में उचक रहा होगा। पड़े मिले पैसे और कमाए गए पैसे की इज्जत में फर्क होता है। भगवान पता नहीं कहाँ सो रहा है और इतनी उल्हाना देने के साथ ही वह फिर से अपनी कमजोर आंखों को इधर उधर दौड़ाने लगी। डब्बू की माँ समझ गई कि वह वृद्धा डब्बू के साथ एक आत्मीय संबंध को अनुभव कर रही है। और साथ ही वह इस बात को लेकर भी निश्चिंत हो गईं कि ये सड़क पर मिले पैसे उन्हीं वृद्धा के हैं, इसलिए उन्होंने फिर से डब्बू को कुछ इशारे में समझाया। माँ के उस संकेत पर डब्बू ने बोला, दादी, भगवान ने आपके परिश्रम की बहुत इज्जत की है, उसने आपकी मेहनत के पैसे सही जेब में पहुँचाए हैं। वृद्धा ने डब्बू की तरफ पलटकर देखा और पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? डब्बू, हाँ दादी, मैं सच कह रहा हूँ। और फिर अपनी माँ से बोला, माँ, दादी के पैसे दादी को दे दो ना। डब्बू के कहने पर डब्बू की माँ अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे उस वृद्ध महिला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए माँ जी, आपके परिश्रम का धन। वृद्ध महिला अपने खोए हुए पैसों को पाकर छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई और बोली, बेटी, ये तुम्हें कहाँ मिले? माँ जी, ये मुझे नहीं, आपके इस पोते को, यहीं सड़क पर पड़े मिले थे। वृद्ध महिला आपके पोते को सुनकर भावुक हो गई और डब्बू के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, तेरी इस साफ स्वच्छ नीयत को ईश्वर बनाए रखे। तू खूब लंबी उम्र पाए, तू खूब तरक्की करे, बिना किसी छल प्रपंच के अपना जीवन जिए, और न जाने ऐसे ही कितने आशीर्वाद उसे दे डाले। जब वृद्धा के अंदर का वात्सल्य थोड़ा थमा तो उसने अपने पैसों को देखा और बोली, बेटा, ये पैसे तो बिल्कुल वैसी ही हालत में हैं जैसे मेरी अंटी में थे, तुमने तो इनके रखने के तरीके को भी नहीं बदला। तब डब्बू बोला, दादी, माँ कहती है सड़क पर पड़ी किसी भी वस्तु को जब तक उसके सही अधिकारी तक ना पहुँचा दो तब तक उसकी रक्षा अपने प्राणों की तरह करना चाहिए और उस व्यक्ति को अपनी वस्तु उसके मूल रूप में ही लौटाना चाहिए। डब्बू की बात सुनकर उस वृद्ध महिला ने डब्बू की माँ से कहा, बेटा, तुम बहुत पुण्य का काम कर रही हो, अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देकर। और फिर आशीर्वाद देते हुए बोली, ईश्वर तुम्हारे बुढ़ापे को पोते पोतियों की उंगली थामने का सुख दे, भगवान तुम्हारे बच्चों को शुद्ध और साफ हृदय का बनाए रखे। डब्बू की माँ ने वृद्धा को बताया कि माँ जी, मुझे भी ये सब अपने माता पिता से मिला है। बचपन से सद साहित्य के संपर्क में रहने के कारण हम नैतिक मूल्यों को जी पाए। माता पिता ने सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्परता रखी, जो मेरे पास पूर्वजों की धरोहर के रूप में संचित है उसी को मैंने अपने बच्चों को दिया है, ताकि ये देश, समाज और परिवार के साथ जुड़े नैतिक कर्तव्यों को निभा सकें। डब्बू की माँ ने बातों बातों में उस वृद्ध महिला के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, जैसे वह उनकी कॉलोनी से लगे छोटे से बाजार दानामोली में रहती थी। उसने पारलौकिक विवाह किया था, इसलिए वैसे निसंतान थी, किंतु उसकी मानस संतानें बहुत थीं। वह सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थीं, इसलिए वह वृद्धा अब अकेली थी। डब्बू की माँ ने डब्बू से कहा तो डब्बू वृद्धा से बोला, दादी, अब से मैं आपके पास हर रविवार को आऊँगा और आपके साथ आपके जरूरी काम करवाऊँगा। डब्बू की माँ भी बोली, माँ जी, आपकी कभी बैंक वगैरह जाने की इच्छा हो या कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करें, मैं आपको गाड़ी से लेकर चलूँगी। डब्बू और उसकी माँ के प्रस्ताव सुनकर वह वृद्ध महिला आसमान की तरफ देखकर बोली, बहुत खूब खाना, मैंने खोया तो चंद रुपयों को था, पर तेरी कृपा से वे खोए हुए रुपये अनमोल ब्याज के साथ वापस मिले हैं। ये कहते समय वह डब्बू को स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी। वृद्धा ने डब्बू और उसकी माँ को उसी आत्मीयता का अनुभव देते हुए उत्तर दिया, अब इस उम्र में दादी पोते बेटे बहू के पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, मेरे जीवन भर की मेहनत की कमाई बस यही तो है।
0: सखियों, मेहनत की कमाई, अभी आपने सुनी ये कहानी। कहानीकार थी मंदाकिनी शर्मा। सखियों, बरसात का मौसम हो और भुट्टे की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भुट्टों को भूनकर नमक नींबू लगा कर तो हम सभी अक्सर खाते हैं, पर आज दो अलग रेसिपी यहाँ बताऊंगी जिन्हें आप झटपट तैयार कर गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कॉर्न भजिए। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है, मुलायम भुट्टे 2, स्वीट कॉर्न हो तो और भी अच्छा है, काली मिर्च, धनिया, जीरा एक एक चम्मच, इसे दरदरा कूट लेंगे। अजवाइन एक छोटा चम्मच, दो प्याज बारीक कटे हुए, नमक स्वादानुसार, बेसन करीब दो चम्मच, हरा धनिया बारीक कटा हुआ एक चम्मच, दो मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक का छोटा सा टुकड़ा घिसा हुआ, पिसी हल्दी चौथाई चम्मच और तलने के लिए तेल करीब एक कप। सखियों, अब इसका बनाने का तरीका ये है। सबसे पहले भुट्टे के दानों को निकाल लेंगे, इसमें नमक डालकर 5 मिनट के लिए रख देंगे। नमक डालकर रखने से एक्स्ट्रा पानी निकलने लगेगा, इसे कपड़े से छानकर निकाल लेंगे। अब इसमें बेसन को छोड़कर सारी सामग्री एक एक कर डालकर अच्छे से मिलाएंगे। लास्ट में इसमें बेसन डालेंगे। बेसन उतना ही डालेंगे कि पकौड़ी का गाढ़ा घोल तैयार हो जाए। अब इसे छोटे छोटे पकौड़ी शेप में गर्म तेल में तल लेंगे, सुनहरा होने पर निकाल लेंगे। लीजिए, चटपटे करारे कॉर्न भजिए तैयार हैं। सखियों, अब बनाते हैं कॉर्न कटलेट। सामग्री है 2 मुलायम भुट्टे, 2 गाजर बारीक कटी हुई, 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, चावल का आटा चौथाई कप, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार काला नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और तेल फ्राई करने के लिए। सबसे पहले भुट्टे के दानों को निकालेंगे और उन्हें दरदरा पीस लेंगे। अब इसमें चावल के आटे के अलावा सारी सामग्री मिलाएंगे। जब सब अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें चावल का आटा मिलाएंगे। अब फिर से इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब कटलेट का शेप देंगे व इन्हें 10 मिनट स्टीम करेंगे। स्टीम होने के बाद इन्हें थोड़े तेल में फ्राई करेंगे। आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्राई कर सकती हैं। हल्का ब्राउन होने पर इन्हें बाहर निकाल लेंगे। लीजिए, कॉर्न कटलेट तैयार है। इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करें। साथ ही सुनिए ये प्यारा सा गीत।

सखियों, आज सबके पास अच्छे मोबाइल हैं जिसमें तरह तरह के फीचर्स, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल का कैमरा, और वो भी सेल्फ़ी लेने में। हाँ सखियों, कहीं भी जाइए लोग फ़ोटो लेते सेल्फ़ी लेते ज़रूर दिख जाएंगे तरह तरह के पोज बनाते हुए। सेल्फ़ी लेते लोगों को ये भी ध्यान नहीं रहता कि वो कहाँ हैं। कई बार ऐसे ख़तरनाक स्थानों पर होते हैं कि वहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, जैसे नदी

को इसका इतना जुनून होता है। सखियों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में सेल्फी से जुड़ी 42% घटनाएं तो केवल भारत में होती हैं। भारत में सेल्फी का क्रेज खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, इसलिए सरकार ने कई जगह नो सेल्फी जोन भी बनाए हैं। एक अध्ययन के अनुसार सेल्फी के कारण हादसों का शिकार सबसे ज़्यादा युवा होते हैं। युवाओं में सेल्फी के बढ़ते जुनून को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि अधिक सेल्फी लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ जल्दी आती हैं, एंजाइटी भी बढ़ती है। मनोचिकित्सकों ने सेल्फी को एक मनोरोग मान लिया है। उनके मुताबिक सेल्फी साइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो उसे बेचैनी होने लगती है। इस जुनून का लोगों के रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है। सखियों, हम तो यही कहेंगे कि सेल्फी का शौक बुरा नहीं है, लेकिन उस हद तक ना हो जहां जिंदगी ही मुसीबत में घिर जाए। आप अपना ख्याल रखिए, साथ ही अपनों का भी। सखियों, आज पूरा विश्व मना रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस। आप भी लीजिए अपनों के बीच कुछ यादगार फोटोज़ और सेल्फीज़, जिसे आप यदि बाद में भी देखें तो मन प्रफुल्लित हो जाए और होठों में आ जाए एक प्यारी सी मुस्कान। तो सखियों, अब समय हो रहा है हमारे जाने का। अनुमति दीजिए धम्म मित्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले सुनेंगे आप ये गारी गीत।

लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथ ही इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये हरदौल गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथी। इनके स्वर में अब आप सुनेंगे ये रावला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं तांजी पमनानी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूल बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत टाइगर जिंदा है। इस फिल्म से गीत आप सुनेंगे आसिफ असलम की आवाज़ में।

ए.आर. रहमान, अनुराधा, अनुपमा की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे। फिल्म का नाम दिल से, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार ए.आर. रहमान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर जिले में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे, जिसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी जाएगी। हर बहन के खाते में 1,750 रुपए पहुंचेंगे, जिसमें 1,500 रुपए नियमित किस्त और 250 रुपए रक्षाबंधन का विशेष शगुन है।
1: रक्षाबंधन का त्यौहार 28 तारीख को होने वाला है। आज मैं मैहर की माताजी के स्थान से 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के लिए उनकी नियमित 1,500 की किस्त और 250 रूपये अलग से रक्षाबंधन का नेग उनको देने के लिए हमारा एक कार्यक्रम आयोजित है। ये बहनों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प का भी कारण है। कई घरों में ये बहुत बड़ी राशि है, 1,500 रूपये महीना हर महीने जो मिल रहा है, इससे घर के पूरे आर्थिक तंत्र को बदल रहा है।
0: मुख्यमंत्री इस अवसर पर मां शारदा लोक के फेज वन का भूमि पूजन भी करेंगे और मैहर में करीब 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मान सिंह यादव ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे।
2: भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मध्य प्रदेश की 4 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों का मुख्यमंत्री खेल ट्रॉफी कराई जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और शाम को 5 बजे समापन अवसर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
0: भिंड के गोहद क्षेत्र के धमसा गांव में बिना लाइसेंस चल रहे सेवई और नूडल्स कारखाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने निरीक्षण के दौरान गंदगी और मक्खियां पाई। कारखाने में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का निर्माण और पैकिंग की जा रही थी। टीम ने मौके से 200 कट्टे मैदा और करीब 50 कॉटन सेवई जब्त कर कारखाने को सील कर दिया है। अब रुक करते हैं खेल का। श्रीलंका में खेले गए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका 165 रन से हरा दिया है। भारत ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी। भारत की जीत में मानव सुथार का अहम योगदान रहा, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी है, जहां पर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। इसके साथ ही रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, मंडला, शहडोल, सीधी, रीवा और सतना समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को नर्मदापुरम में समरसता संकल्प अभियान और यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर से रीवा, बिकापुर और सिंगरौली जाने वाली इंटरसिटी ट्रेनों का मुख्य स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए नया टर्मिनल अब मदन महल बना दिया गया है और शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरपंचों और सचिवों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। NEET UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 20 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें

0: बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बताते हैं। पहला गीत सुनेंगे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म हमराज से। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी।

संगीतकार रवि। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ से। श्रोता है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। अगले श्रोता अमरपुर छत्तीसगढ़ से हैं, दिशा, दिव्यांश, रूही और लवी श्रीवास्तव। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म सोल्जर से। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार है अनु मलिक। फरमाइश हमें आई है सामाजी नगर से। श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, श्रीमती शीतल राजेश। अगले श्रोता शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं विमला बाई ओझा, ज्योति बाई ओझा, प्रीति बाई ओझा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

प्रीति सागर की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म जोली से। गीतकार हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फरमाइश हमें आई है नेपाल पैलेस सागर से। श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा शिमाली। अगले श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अगला गीत सुनेंगे फिल्म कलयुग से। गीतकार असीम रज़ा, संगीतकार रोहेल हयात फैज़ल रफ़ी। फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। अगली श्रोता जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म डॉन से, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बागपत उत्तर प्रदेश से, श्रोता है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। अगले श्रोता आदर्श नगर मलोट से हैं, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा, निवान शर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मैहर जिले में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि भेजी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जाँच प्रणाली लागू की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी है, जहां पर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। और श्रीलंका में खेले गए पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम दोनों पारियों में 284 और 206 रन ही बना सकी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

पसंद कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की रहेगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:33 पर शाम 6:30 और रात 8:15 पर। शाम के ठीक 6:00 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसमें डॉक्टर अमर बहादुर सिंह की भेंट वार्ता होगी, विषय रहेगा भूमि की जैव विविधता बढ़ाने के उपाय एवं महत्व। रात 8:00 प्रसारित होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10:00 आप सुनेंगे नाटक हम सफ़र, इसके लेखक हैं दिनेश राय, प्रस्तुत करता है राकेश ढौंडियाल। 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का, इसमें कलाकार सुनीत मुखर्जी का सरोद वादन आप सुनेंगे, राग होगा रागेश्री। और इन्हीं सारी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के 5:00 सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हमारा प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। लोक संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं रतनलाल कुशवाहा और साथी। इनके स्वर में आप सुनेंगे ये गारी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति है। सुगम संगीत में हमारी आज की कलाकार हैं हितांशी पमनानी। इनके स्वर में आप सुनेंगे भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र का योगदान था। डीटीएच पर यह आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म ओम शांति ओम से। स्वर शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना के हैं। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार विशाल शेखर।

फिल्म लव आजकल से अगला गीत सुनेंगे नीरज श्रीधर के स्वर में। गीत लिखा इरशाद कामिल ने, गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने।

चित्रपट संगीत में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। इस गीत को सुरों से सजाया है श्रेया घोषाल, विशाल दादलानी और साथियों ने। गीत लिखा अन्विता दत्त ने, गीत को संगीतबद्ध किया विशाल शेखर ने।

अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म जुदाई से। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, DTH पर यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर जिले से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की, जिसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक पात्र बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर जिले में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जहां पर 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। और शतरंज में ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए सिंकफील्ड कप के 8वें और अंतिम दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लॉग्रेव को हरा दिया है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानानंदा के 8 में से 5 अंक हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कव्वाली। और महफिल समा में हम आगे बढ़ रहे हैं इश्क से इबादत तक और इबादत से इंसानियत तक के उस सफर पर जिसकी एक बेहद रोशन मिसाल है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को समझना दरअसल सूफियत की उस रूह को समझना है जिसमें जाहिरी दिखावे से ज्यादा दिल की सफाई को अहमियत दी जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश बदायूं में 1238 ईस्वी में हुई। बचपन से ही इल्म और रूहानियत की तरफ आपका रुझान रहा। आगे चलकर आप दिल्ली पहुंचे और चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर से आपकी रूहानी निस्बत कायम हुई। यही निस्बत आगे चलकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनी। चिश्तिया सिलसिले की तालीम में मोहब्बत, फक्र, सब्र और खिदमत को बड़ी अहमियत हासिल रही है। यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, वो जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का दरवाजा भी बनी। कहा जाता है कि उनकी खानकाह में आने वाले के बारे में ये नहीं देखा जाता कि वो अमीर है या गरीब, उसका ताल्लुक किस तबके से है, उसकी जबान क्या है, उसकी हैसियत क्या है। अहम ये था कि वो इंसान है और उसे सहारे की जरूरत है। ये तो सूफियत का एक बेहद खूबसूरत पहलू है, दिल को इतना बड़ा कर लेना कि उसमें अपने साथ दूसरों के लिए भी जगह बन जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की तालीम में मोहब्बत का ये पहलू बहुत गहरा था। उनके यहाँ खुदा की मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं थी, क्योंकि अगर दिल में इश्क है तो उसका असर रवैये में भी दिखाई देगा। किसी भूखे के लिए निवाला बनेगा, किसी परेशान के लिए सहारा बनेगा, किसी मायूस के लिए उम्मीद बनेगा। और शायद इसी वजह से सूफियों की महफिलों में समा की अपनी एक अहम जगह बनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की महफिलों से जुड़ी एक और खूबसूरत शख्सियत का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी निस्बत हिंदुस्तानी सूफियाना रवायत की सबसे यादगार मिसालों में शुमार की जाती है। खुसरो के लिए उनके पीर सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई का मरकज थे। इसीलिए जब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई समा की महफिल, सूफियाना कलाम और अमीर खुसरो की याद भी अपने आप चली आती है। और इसी रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी अगली कव्वाली की तरफ बढ़ते हैं। ये कलाम हमें उस अकीदत और मोहब्बत की याद दिलाता है जिसमें एक बंदा अपने बुजुर्ग की निस्बत को अपने लिए रूहानी सहारा समझता है। तो आइए मोहब्बत और अकीदत के इसी रंग में रंगी अगली पेशकश सुनते हैं। मोहम्मद सईद की आवाज में कलाम है सैयद अब्दुल हक शाह का। बोल हैं ख्वाजा ख्वाजा जो कहता रहे उसका हर काम बनता रहे। समाअत कीजिए।

आपने सुना मुनव्वर मासूम और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कलाम, और इसी के साथ आज की हमारी महफिल समा अपने आखिरी मरहले तक पहुंच रही है। इश्क हो तो ऐसा जो दिलों को जोड़ दे, जिक्र हो तो ऐसा जो किरदार को बेहतर कर दे, इबादत हो तो ऐसी जिसमें मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा हो, और जिंदगी हो तो ऐसी जिससे किसी दूसरे की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की विरासत हमें यही पैगाम देती है कि दिल में मोहब्बत रखिए, नफरत के लिए जगह कम कीजिए, और जहां तक हो सके किसी के काम आइए, क्योंकि सूफियों की जबान में इश्क सिर्फ कहा नहीं जाता, जिया जाता है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल की खास पेशकश महफिल समा। आपकी तजावीज, आरा और खत हमारे लिए हमेशा कीमती हैं। अपने खत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल। पिन कोड है 462002। मैं हूँ आपकी मेजबान आफरीन बानो। आपसे इजाजत चाहती हूँ, फिर किसी और रूहानी मौजू, किसी और सूफियाना कलाम और किसी और खूबसूरत महफिल समा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दिलों में मोहब्बत को जिंदा रखिए, इंसानियत का दामन थामे रखिए, और दुआओं में याद रखिए। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। DTH पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का पहला भाग।

पिछड़ापन और अंधियारों की उन ताकतों के खिलाफ संघर्ष की जो इसे सदियों की गुलामी के साथ विरासत में मिली। ये कहानी है उस हालात की मारी जमुनिया की जो आप सब में से कोई भी हो सकता है। वो जमुनिया हमें शहर की गगनचुंबी इमारतों के नीचे अपने मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में यूं ही अक्सर दिख जाती है।

0: नींद कहाँ से आएगी जमुनिया?
1: कुछ सोचो मत, आंख मूंदो, नींद आ ही जाएगी।
0: हम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, बस छटपटा सकते हैं, सो छटपटा रहे हैं।
1: क्यों जी, ऐसा काहे कह रहे हो? हाँ,
0: और नहीं तो क्या? अरे, हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, तो भी ठीक से पेट भी नहीं भर पा रहे हैं सबका।
1: अरे, एक आदमी कमाएगा तो सात सात आदमी का पेट कैसे भरेगा? हम अपने भाई को समझाओ कि वो भी कुछ काम धाम किया करे। यूं ही खाना गुर्राना और दिन भर आवारा गर्दी, यही तो एक काम रह गया है उसका।
0: अपने आप एक दिन उसको लगेगा कि कुछ करना चाहिए, तो करेगा ही। तुम कुछ मत कहना, नहीं तो और ढीठ हो जाएगा।
1: ठीक है पापा, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, बस आप सो जाइए। कल सरकारी दफ्तर जाना है, बंजर जमीन का पट्टा होगा, हमें भी कुछ जमीन मिलेगी, आपन जमीन होगी, मेहनत करेंगे, सबका पेट भरेगा। सरकार हमारे बारे में सोच तो रही है ना?
0: सरकार तो सोचती ही रहती है, पर दीवान जैसे लोग बीच में ही भांजी मार देते हैं। हमें तो कुछ मिलता ही नहीं।
1: अच्छा, सोचो, अच्छा होगा, हमें भी मिलेगा।
0: ठीक है भाई, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो।
1: देखो जी, हमारे भगवान तो तुम ही हो, दुखी मत हो। हाँ, बस आराम करो।
0: अरे वाह, बड़ी सयानी हो गई हो जमुनिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली?
2: माई,
1: बबुआ पानी मांग रहा है, देकर आती हूँ। हाँ,
2: आई।
1: अब सो जा बेटा।
2: ठीक है माई, सो जाऊंगा। कुछ खाने को है क्या माई?
1: अभी तो खा के सोया था ना, अब सवेरे खाना। बार बार खाने से पेट खराब होता है।
2: ठीक है माई।
0: एक लिट्टी रखी तो है उसमें, उसी में से एक टुकड़ा खिला दो उसे।
1: अरे वही एक लिट्टी तो तुम्हारे कल दिन भर का सहारा है, उसको खिला दिया तो तुम्हें सवेरे क्या परोसूंगी? क्यों जी, हंसे काहे? ऐसा क्या कह दिया हमने?
0: लिट्टी परोसने पर हंसी आ गई, और लिट्टी

0: भी क्या परोसने की चीज है?
1: क्यों, बेटे की कोई इज्जत नहीं है का?
0: अरे बहुत इज्जत है, पर ये भकोसने की चीज है, परोसने की नहीं, समझी?
1: समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब आराम करो और सो जाओ।

0: अरे करण, कितनी पिएगा तू यार, पहले ही बहुत पी ली है।
1: तू मेरे पीने का हिसाब कर रहा है क्या? मेरा भाई रतन तो कुछ कहता नहीं है जो मुझको खिलाता है, तू कौन होता है हिसाब करने वाला है?
0: अरे यार, मैं तो कोई नहीं होता भैया, पर रतन भाई का तो ख्याल करो यार, रात भी काफी हो चुकी है, घर चलो यार।
1: कुछ लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि कमाएं, खिलाएं और दुनिया की वाहवाही लूटें। और कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो मौज करे, मस्त रहे, कहो किसी के ये।
2: वाह वाह वाह भाई वाह वाह, पीने के बाद तो कैसा हो जाता है भाई?
1: चुप, किससे हो जाता हूँ? रहता तो मैं एक सही हूँ, पीने के बाद बस बोल देता हूँ।
2: तेरे तो मुंह लगना गलत ही है।
1: अबे तो क्यों लगते हो मेरे मुंह? ला भाई एक गिलास और पिला, चले।
3: अरे ये रहा करण, मैं ना कहता था कि ये इसी अड्डे पर मिलेगा।
4: तू ठीक कहता था करण, तुझे दीवान जी ने याद किया है। चलो
1: अरे अरे चल, चलता हूँ भाई चलता हूँ, ये गिलास तो गटक लेने दो भाई।
3: अरे अब जल्दी से गटक और चल उठ, वरना तो
1: वरना क्या मारोगे? चलो मारो,
3: चल मारो। तेरी ये मजाल बहस करता है,
4: हमारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो।
1: अरे अरे अरे
3: चुप
1: चुप, छोड़ छोड़,
3: अबे बात नहीं बात नहीं।
1: अरे तुम चल रहा हूँ भाई, कौन तुम्हारा मुंह लगे यार, दीवान के आदमी हो, तुम्हें क्यों कह डर? ए
5: भैया जी, पैसे पैसे।
1: अरे लिख लेना, पैसे पैसे लगा हुआ है, देख नहीं रहा दीवान ने बुलाया है?
5: आओ तो देख रहा है भैया, पैसे तो दे जाओ,
1: लिख लो
5: भैया, इसके पैसे
1: चल,
5: लिख ले।
3: चल चल चल,
1: अरे चल रहा भैया, सराफत से तो चलो, चल चल चल।
3: लो मालिक, करण को ले आए हम।
4: ना कर रहा था, धमका कर ले आए।
1: और मैंने कब ना की? अरे तुमने कहा दीवान जी ने याद किया है तो मैं तुरंत उठ कर चल दिया, दारू का पैसा भी नहीं दिया जल्दी के मारे।
4: ठीक है ठीक है, अच्छा तुम लोग जाओ और इस करण को यहीं छोड़ जाओ।
3: ठीक है मालिक।
4: उधार की कितनी दारू पी चुका है तू करण?
1: अब आपसे झूठ तो बोलेंगे नहीं सरकार, 2-2.5 हजार तो हो गए होंगे।
4: 2-2.5 हजार की उधारी? एक बात पता, इतनी उधारी चुकाएगा कैसे?

0: तू तो कुछ करता धरता नहीं, और तेरे भाई रतन की कमाई वो तुम सबका पेट भरने के लिए कम पड़ती है। सुन, तू हमारे साथ मिल जा। हाँ, अरे हमारा काम कर, हम तेरा कर्जा भी चुका देंगे और ऊपर से अंग्रेजी दारू का इंतजाम भी कर देंगे।
1: ये तो मेरे बड़े नसीब की बात होगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा?
0: ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। हे, हे, अच्छा सुन, सुन करन, सुन। मुझे लगता है तू अभी नींद में है और नशे में भी, और तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत भूखा भी है।
1: आप सही पहचाने मालिक, मैं कल सवेरे आ जाऊंगा।
0: अरे कहाँ जाएगा इतनी रात को? सुन, मैं तेरे लिए यहीं खाना मंगवा देता हूँ ना। हाँ, खाकर यहीं सो जा और फिर सवेरे आराम से काम की बातें करेंगे।
1: अरे सरकार, भैया भाभी राह देख रहे होंगे।
0: कोई किसी की राह नहीं देखता करण। छाओगे, जगाओगे तो मैं कोस कर दरवाजा भी खोल देंगे बेचारे। ना खुद परेशान हो ना उन्हें परेशान कर। खाना खाकर यहीं आराम से सो जा। सवेरे पास होंगी बाकी की।
1: ठीक है मालिक, जैसा हुक्म आपका।
0: शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे कोई है?
2: जी मालिक।
0: सुनो, इस करण को ले जाओ और आराम से खाना खिलाओ, और हाँ बाद में यहीं बारादरी में सुला दो इसे।
2: जो हुक्म मालिक।
0: ले जाओ।
2: चल
1: चल चल रहा हूँ। अरे यार धीरे धीरे,
0: प्यार से ले जाओ।
2: जी मालिक।
0: आराम।
2: जी मालिक।
0: अपना मेहमान है, मेहमान है अपना।

0: जमुनिया, अरे ओ जमुनिया
1: जी?
0: अरे कहाँ हो भाई, बच्चे अभी उठे नहीं हैं क्या?
1: अरे वो तो उठ गए और गुड़ चना खाकर जंगल को भी चले गए हैं लकड़ियां बीनने।
0: तो ला भाई, अब मेरा भी कलेवा परोस दे। अरे आज वो शहर जाना है, हमें जमीन मिलनी है ना।
1: ये रहा आपका कलेव।
0: अरे वो करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो?
1: अरे वो तो रात आया ही नहीं, क्या पता कहाँ गया होगा, और नहीं तो दारू के अड्डे पे पड़ा होगा। मैंने तो उसकी चोरू से भी कहा कि उसे समझाए, पर वो किसी की सुनता कहाँ है।
0: अरे तू छोड़, समझ जाएगा तो सबकी सुनेगा। बस मैं चलता हूँ अब।
1: अरे आईना तो देखते जाओ, आज सोमवार है, शुभ रहता है। और सुनो, तुम बुरा ना मानो तो मैं भी साथ चलूं।
0: ठीक है भाई, तू भी चल। एक से भले दो, और ला वो तेरा आईना भी देख लूं। अब उसमें देखना तो मुझे ही है ना, कितना शुभ होगा पता नहीं।
2: अरे सुना
3: जी मालिक,
2: देखो वो करण जागा कि नहीं।
3: अरे नहीं मालिक, वो तो घोड़े बेचकर सो रहा है।
4: हाँ मालिक,
2: घोड़े बेचकर सो रहा। घोड़े बेचकर सो रहा। अरे उसके पास गधा तो है नहीं बेचने को, और घोड़े बेचकर सो रहा। जाओ जगाओ उसे और बोलो कि हमने बुलाया है।
3: जी मालिक।
2: जाओ तुरंत।
4: जी मालिक जी।
5: प्रणाम मालिक।
2: प्रणाम प्रणाम करण भैया प्रणाम। नींद अच्छे से आई ना?
5: अरे मालिक पता ही नहीं लगा, बड़ी अच्छी नींद आई।
2: शाबाश भाई, हमने तो रात को तुमसे कहा था कि मत जाओ, घर वालों को परेशान मत करो, पर यहाँ सब तुम्हारे लिए सुविधाएं हैं, खाओ पियो आराम से सो। ठीक है ना?
5: हाँ जी।
2: सुनो करण
5: जी,
2: अब बात यह है कि वो आज भूमिहीनों को
5: हाँ।
2: ग्राम समाज की बंजर जमीन बांटी जानी है।
5: अच्छा, मुझे नहीं मालूम मालिक।
2: हाँ?
5: हाँ।
2: तुम्हें नहीं मालूम?
5: ना मालिक।
2: हा हा हा हा, करण भैया तुम तो भैया निरे भोले हो। हाँ। अच्छा तुम्हारे भैया रतन ने ये बात नहीं बताई तुम्हें?
5: जी नहीं मालिक, भगवान कसम नहीं बताई।
2: हैं?
5: हाँ।
2: ओ हो, चलो चलो कुछ कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो करण भैया,
5: हाँ।
2: तुम हमारे साथ चलो आज। हाँ
5: आओ मालिक।
2: हाँ वहाँ खुद देख लेना कि कैसे क्या होता है।
5: क्या होगा मालिक वहाँ?
2: वो ग्राम समाज की जमीन का पट्टा बटेगा ना।
5: अच्छा,
2: तो तुम्हारे भाई को जमीन मिलेगी।
5: और मुझे?
2: हैं? तुम्हें काहे को मिलेगी? अरे ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो भैया, एक ही परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगी ना जमीन। हैं? नहीं आई समझ में? अरे खामखा परेशान हो रहा है। अरे भाई जाओ ले जाओ इसे, समझाओ भाई क्या नियम कायदा है, जाओ।
4: आया मालिक।
2: हाँ।
4: आया, आया। चलो करण भैया।
5: हाँ।
4: हम तुम्हें समझाते हैं।
5: हाँ।
2: सुनो सुनो।
5: हाँ।
4: जी मालिक।
2: भाई हमारे शहर जाने का इंतजाम तो करो।
4: आप भी जाएंगे मालिक?
2: जाना तो पड़ेगा भैया, कम से कम वो जमीन तो बचानी पड़ेगी, जो ग्राम समाज की है और हम उसे जोत बो रहे हैं। अरे अगर बटे भी तो उन्हें जो हमारे पास काम कर रहे हैं, समझे?
4: जी मालिक।
2: अरे ये नया वीडियो किसी की सुनता ही नहीं ससुर, वरना हमारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
3: ट्रैक्टर तैयार करवा देते हैं, उसी से जाएंगे ना मालिक।
2: हाँ, और सुनो, थोड़ा जल्दी तैयार करवा देना।
4: जी मालिक, जी मालिक, जैसी आज्ञा।

0: ट्रैक्टर में बैठने का आनंद ले रहे हो?
1: बहुत मजा आ रहा हूँ मालिक।
0: लग रहा आप पहली बार बैठे हो ट्रैक्टर पे।
1: आओ मालिक।
0: अरे हमारे साथ रहोगे तो ऐसे आनंद में रहोगे।
1: आओ मालिक।
0: पर चिंता में दिख रहे हो भैया तुम। सुन हमारी बात सुन लो।
1: हाँ।
0: ऐसा है जमीन तुम्हें मिलने से रही। हाँ वो बात यह है मिलेगी तो रतन को ही। वैसे भी भैया वही कमाता खिलाता है तुम लोगों को।
1: हाँ सो तो है।
0: ये गांव के सब लोग जानते हैं ना भैया।
1: आओ मालिक।
0: हाँ अरे तुम्हें तो पहले भी कुछ ना करना था और ना तुमने कुछ किया कि नहीं। अब भी कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ
1: मैं अब भी कुछ समझ नहीं पाया मालिक।
0: नहीं समझे तुम?

0: चलो तो तफसील से समझाते हैं तुम्हें, ध्यान से सुनना।
1: आओ मालिक।
0: अब ये जमीन जिसे मिलेगी उनके पास पहले से जमीन तो होगी नहीं, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ, और जो जमीन मिलेगी वो होगी बंजर, ऊसर, जिसमें खेती करना मुश्किल होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ, अब उसे समतल करवा के, खरपतवार पत्थर निकलवा कर जोतने बोने लायक बनाना होगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ, और फिर उसके ऊपर से बीज, पानी, जुताई, गुड़ाई सब लगेगा, ठीक?
1: जी ठीक।
0: हाँ, इन सब के लिए पैसा हम देंगे। सभी पट्टेदारों में ये बात तुम फैलाओगे।
1: फैला देंगे मालिक।
0: हाँ, और वो लोग तुम्हें बताएंगे कि इस काम के लिए तो बैंक भी कर्ज देते हैं।
1: हाँ, वो तो देते हैं।
0: तो हम बैंक से कम ब्याज पर पैसा देंगे।
1: हाँ मालिक।
0: और तुम कुछ खास लोगों को कहोगे तो बिना ब्याज के भी पैसा दे देंगे। हाँ, अरे भैया, हमें तो तुम सबका भला करना है ना।
1: ये पक्की बात बोली मालिक आपने,
0: है कि नहीं
1: मालिक?

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया का पहला भाग। DTH पर यह आकाशवाणी भोपाल है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। मछुआ कल्याण विभाग राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत निवेशकों के साथ बैठक ली और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुष सक्सेना और आप सुन रहे हैं युववाणी। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं आपसे एक छोटे से सवाल से करना चाहता हूं। आपके फ़ोन में आखिरी बार कौन सी तस्वीर खींची गई थी? शायद दोस्तों के साथ कोई तस्वीर, शायद किसी खूबसूरत जगह की, शायद कोई सेल्फी, या फिर कोई ऐसी तस्वीर जिसे आपने बिना किसी खास वजह के बस इसलिए खींच लिया क्योंकि उस पल में कुछ ऐसा था जो आप अपने पास रखना चाहते थे। हमारी ज़िंदगी में तस्वीरों की जगह शायद हम खुद भी नहीं समझ पाते। कभी कोई पुरानी तस्वीर अचानक सामने आ जाती है और हम कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाते हैं। चेहरा वही होता है, जगह शायद बदल चुकी होती है, लोग शायद बदल चुके होते हैं, लेकिन वह तस्वीर हमें उस पल में वापस ले जाती है। और शायद इसी वजह से आज का दिन थोड़ा खास है। आज 19 अगस्त है, यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस खास दिन पर फोटोग्राफी से जुड़े सभी लोगों, फोटोग्राफर्स, क्रिएटर्स और उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं जिन्होंने अपने तस्वीरों के जरिए हमें दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया। तो आज ज़रा रुककर सोचते हैं, आखिर एक तस्वीर में ऐसा क्या होता है कि वह कभी कभी हज़ारों शब्दों से ज़्यादा कह जाती हैं। दोस्तों, तस्वीर लेना आज हमारे लिए शायद दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। जेब से फ़ोन निकाला, कैमरा खोला, क्लिक किया और तस्वीर तैयार। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब एक तस्वीर लेने की प्रक्रिया अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हुआ करती थी। 19 अगस्त 1839 को फ्रांस में डेग्योरोटाइप फोटोग्राफिक प्रोसेस के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी दी गई थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में आज 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। यानी जिस चीज़ को आज हम सेकंडों का काम समझते हैं, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, प्रयोग और तकनीकी विस्तार छुपा हुआ है। और तस्वीर खींचने की यही यात्रा अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। पहले तस्वीर खींचना मुश्किल था, फिर कैमराज आए, फिर फिल्म कैमराज आए, फिर डिजिटल कैमराज और आज स्मार्टफोन कैमराज। तकनीकें बदलती गईं लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, इंसान की किसी पल को अपने पास रखने की इच्छा। हम तस्वीरें सिर्फ किसी चीज़ को याद रखने के लिए नहीं लेते, बल्कि उन पलों को अपने साथ हमेशा महसूस करते रहने के लिए लेते हैं। किसी दोस्त के साथ बिताई शाम, परिवार के साथ कोई त्यौहार, कॉलेज का पहला दिन, किसी सफ़र का आखिरी सनसेट, या फिर किसी ऐसे इंसान की तस्वीर जिसे देखकर आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तस्वीर समय को रोक तो नहीं सकती, लेकिन वह हमें उस रुके हुए पल में वापस ज़रूर ले जा सकती है। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। हम

तस्वीरों की बात आगे बढ़ाते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या अच्छी तस्वीर लेने के लिए महंगा कैमरा ज़रूरी है? शायद नहीं, क्योंकि कैमरा वही देखता है जो उसके सामने होता है, लेकिन फोटोग्राफर वह देखता है जो शायद बाकी लोग भी नहीं देख पाते। एक ही सड़क पर 10 लोग चल रहे हों तो 10ों की नज़र एक जैसी नहीं होती। किसी को सड़क पर पड़ती हुई सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, किसी को वहां से गुजरता हुआ कोई बुजुर्ग, किसी को बच्चों की हंसी और किसी को उस सड़क की खामोशी। यानी फोटोग्राफी सिर्फ कैप्चर करने का नाम नहीं है, यह उन्हें देखने का एक तरीका है। और शायद इसी वजह से आज फोटोग्राफी युवाओं के बीच इतनी लोकप्रिय है। आज लगभग हर हाथ में कैमरा है, लेकिन इसी के साथ एक नया बदलाव भी आया है। हम तस्वीरें सिर्फ यादों के लिए नहीं लेते, हम उन्हें शेयर भी करते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरीज, रील्स और सोशल मीडिया की पूरी दुनिया। अब एक तस्वीर सिर्फ हमारी नहीं रहती, कुछ सेकंडों में वह सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। यह अपने आप में एक बेहद प्रभावशाली बात है। एक युवा अपनी फोटोग्राफी को दुनिया के सामने रख सकता है, अपना काम दिखा सकता है, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित कर सकता है, और यहाँ तक कि इसे अपने पेशे में भी बदल सकता है। फोटोग्राफी आज फैशन से लेकर जर्नलिज्म तक, एडवर्टाइजिंग से लेकर फिल्म मेकिंग तक, ट्रैवल से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक हर जगह दिखाई देती है। कभी-कभी हम किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले सोचते हैं, यहाँ मैं किस किस तरह की तस्वीरें ले सकता हूँ। पर शायद कभी-कभी हमें ये भी सोचना चाहिए, ये पल मुझे कैसा महसूस करा रहा है? क्योंकि हर खूबसूरत पल को पोस्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ पल सिर्फ हमारे लिए भी हो सकते हैं, और शायद फोटोग्राफी की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी वही होती है जिसे देखकर हमें लाइक्स की संख्या नहीं याद आती, बल्कि उस पल की याद आती है। क्योंकि आखिरकार तस्वीर का मूल्य उसके लाइक्स में नहीं, उसकी याद में छुपा होता है।

दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी तस्वीरों को बहुत बदल दिया है। आज हम तस्वीरें लेते नहीं हैं, उसे एडिट करते हैं, लाइट बदलते हैं, बैकग्राउंड बदलते हैं, कभी आसमान बदल देते हैं, कभी अनचाही चीज़ें हटा देते हैं। और यहीं से टेक्नोलॉजी की कहानी एक कदम आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी तस्वीर को बेहतर बना सकती है, तो क्या वह हमारे लिए एक पूरी नई तस्वीर भी बना सकती है? आज इसका जवाब है हाँ। और सिर्फ तस्वीर ही क्यों, आज टेक्नोलॉजी सवालों का जवाब दे सकती है, हमारे लिए लिख सकती है, कोड बना सकती है, आवाज़ को पहचान सकती है, वीडियो जनरेट कर सकती है, और ऐसे काम कर सकती है जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन में देखते थे। इसी बदलाव का सबसे बड़ा हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शायद आपने भी इसका इस्तेमाल किया होगा किसी कंसेप्ट को समझने के लिए, असाइनमेंट में मदद के लिए, कोडिंग सीखने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, या सिर्फ जिज्ञासा में ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, जब मशीन हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो हमारी ज़रूरत क्या रह जाएगी? क्या AI हमारी जॉब ले लेगी? क्या आने वाले समय में मशीन इंसानों से ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी? या फिर क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर पहले से ज़्यादा कुशल बन सकते हैं? शायद इन सब सवालों का जवाब डरने में नहीं बल्कि समझने में छिपा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बचकर हम भविष्य में नहीं जा सकते, हमें उसके साथ चलना ही होगा। सवाल सिर्फ इतना है, हम उसके साथ चलेंगे या वह हमें चलाएगी? आज का युवा इस बदलाव के बिल्कुल बीच में खड़ा है। एक तरफ AI हमारे लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल रही है, और दूसरी तरफ कुछ पुराने तरीके और जॉब्स को बदलने की चुनौतियां भी सामने हैं। लेकिन शायद हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि AI मेरी जॉब लेगी या नहीं, हमें पूछना चाहिए AI के दौर में मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ काम ज़रूर बदलते हैं, लेकिन साथ ही नए काम और नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। आज एक छात्र AI की मदद से किसी कठिन कंसेप्ट को आसान भाषा में समझ सकता है, एक प्रोग्रामर कोडिंग में AI का इस्तेमाल कर सकता है, एक कंटेंट क्रिएटर अपने विचारों और कल्पनाओं को बढ़ाने के लिए इसकी मदद ले सकता है, एक फ़ोटोग्राफ़र इसके इस्तेमाल से फ़ोटो एडिटिंग और रचनात्मक प्रयोगों में भी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है, AI हमारी मदद कर सकती है लेकिन हमारी जगह सोच नहीं सकती, कम से कम उस अर्थ में नहीं जिस तरह इंसान सोचता है। क्योंकि इंसान के पास अनुभव है, भावनाएं हैं, कल्पना है, और सबसे बड़ी बात अपना नज़रिया है। यही चीज़ हमें अलग बनाती है। AI आपको हज़ारों शब्द लिख के दे सकती है, लेकिन उन शब्दों में आपकी ज़िंदगी का अनुभव नहीं होगा। AI एक सुंदर तस्वीर बना सकती है, लेकिन वह तस्वीर से जुड़ी आपकी यादें नहीं बना सकती। AI आपको कोई विचार दे सकती है, लेकिन उस विचार को सार्थक बनाने के लिए आपकी सोच ज़रूरी है। इसलिए शायद आने वाले समय में सबसे ज़रूरी स्किल सिर्फ ये नहीं होगी कि AI को कैसे इस्तेमाल करें, बल्कि यह भी होगी कि AI के जवाब पर कब भरोसा करना है और कब सवाल पूछना है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, और इसी के साथ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लगातार सीखते रहने की आदत। क्योंकि टेक्नोलॉजी हर कुछ साल में बदल सकती है, लेकिन अगर हमने सीखना सीख लिया तो हम बदलाव के साथ खुद को बदल सकते हैं, और यही आज के युवा की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। AI को अपना प्रतिद्वंद्वी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना उपकरण बनाइए, उससे काम करवाइए, लेकिन अपनी सोच को दूसरों पर निर्भर मत होने दीजिए। क्योंकि कोई मशीन कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए, एक बेहतर सवाल पूछने वाला इंसान हमेशा आगे निकल सकता है।

तो दोस्तों, आज की इस मुलाकात में हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में बात की जो हमारे बीते हुए पलों को संभाल कर रखती है, और फिर उस टेक्नोलॉजी की बात की जो हमारे आने वाले कल को बदल रही है। एक तरफ तस्वीरें हैं जो हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका देती हैं, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल

जब एआई का इस्तेमाल करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि वह आपके लिए क्या कर सकती है, यह सोचिए आप उसके साथ मिलकर क्या क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकती है, लेकिन उसे मीनिंगफुल बनाना अभी भी हमारे हाथ में है, और शायद यही आज की हमारी छोटी सी बातचीत का सबसे बड़ा संदेश है। अपनी तस्वीरों में अपने पलों को बचा कर रखें और अपने सोच में भविष्य को बनाते रहिए। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के खास दिन पर आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं। खुश रहिए, सीख नए कैमरे में नहीं अपने दिलों में भी ज़रूर कैद कीजिए। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम से मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: ये आकाश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
5: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। श्रोताओं, सुहानी सी इस शाम में बहुत ही खूबसूरत नगमे लेकर हम हाजिर हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा नगमे जो आपके दिल से बातें करेंगे और आप उन्हें गुनगुना उठेंगे। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सिटी लाइट्स फिल्म के इस गीत से। आवाज़ अरिजीत सिंह की है, बोल रश्मि सिंह के, और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

खामोशियाँ फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है। इसे लिखा है रश्मि सिंह ने, संगीत जीत गांगुली का और आवाज़ एक बार फिर अरिजीत सिंह की।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। कार्यक्रम का अगला गीत हमने इस फिल्म से लिया है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम और गायक कलाकार श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत, प्रीतम का संगीत, आवाज़ अरिजीत सिंह की है, फिल्म का नाम है डंकी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत 16 आवर्स में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओ, एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओ, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ

0: और है।
1: जी श्रोताओ, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलौ शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
0: जी।
1: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओ, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओ कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है
0: जी।
1: ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी,
0: जी,
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी।
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं, तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है, जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित

0: स्थित हुई। नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला हैं। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
1: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
0: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
1: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आँख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
1: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
0: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
1: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
0: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
0: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
1: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: हाँ।
0: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
0: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
3: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
0: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
3: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
3: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
3: अच्छा तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
0: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
1: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
0: वो आगे बढ़ती रही, रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
3: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
3: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही इसीलिए जीवन चलता रहा।
3: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो चलती रहो चलती रहो।
3: मैं चलती रहूंगी। हाँ मैं हमेशा चलती रहूंगी।
1: चरैवेति यही तो जीवन है।
0: चरैवेति चरायवेति।

0: नदियों का संदेश यही महान, चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, नी। हाँ, पा नी।
2: नी।
4: एक बार फिर कोशिश करो।
2: पा।
4: हाँ,
2: नी।
1: यूं शुरू हुआ हेलन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
4: मिसेस केलर
2: जी,
4: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
2: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: dum ta bia no.
1: Helen. Helen, शाबाश हेलेन. मिस सलीमन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं मिसेस,
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है. मिस सलीमन,
2: मिसेस केलर,
1: हेलेन बोल सकती है.

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेडक्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: उन्नीस सौ 1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का

0: हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर। और श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये था प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार, अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम है कुछ खास, क्योंकि ये कार्यक्रम आज पेश करेगा हमारे आसपास, हमारी दुनिया और हमारे सरोकारों की एक खूबसूरत सी तस्वीर। जी हाँ, इस सफर में होगी प्रकाश और छाया की कहानी, जिसके जरिए हम सब सहेज लेना चाहते हैं जिंदगी को, उसके किसी खास पल को। जी हाँ, आज होगी कहानी फोटोग्राफी की, आज होगी कहानी तस्वीरों की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम तस्वीरों की बात कर रहा है, क्योंकि आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो आइए चलते हैं बहुत पुराने वक्त में चित्रों के इतिहास की ओर। ये वो समय है जब मनुष्य के सामने सबसे बड़ा संकट अस्तित्व का संकट था। जंगलों में, गुफाओं में रहने वाले मनुष्य का सारा संघर्ष एक दिन के भोजन की व्यवस्था के लिए था। दिन भर किसी शिकार का पीछा या कंदमूल की व्यवस्था, और शाम ढले एक सामूहिक उत्सव भोजन का। और इस दिन की जद्दोजहद और उपलब्धि के बीच उसकी आंखें जो कुछ भी देखती थीं, उसका एक चित्र उसकी स्मृति में कैद हो जाता था। और फिर कभी अवकाश में वो उन बातों को, उन यादों को गुफाओं में, पत्थरों पर उकेरता था। इस तरह हजारों बरस पहले इंसान ने चित्र बनाना शुरू कर दिया था। दरअसल चित्र बनाना इंसान की रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम था। आगे चलकर जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो फोटोग्राफी भी इसी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। कैमरे के कृत्रिम लेंस से चित्र बनाने में मनुष्य को मिली सफलता के जश्न को हम मनाते हैं आज के दिन। जी हाँ, 19 अगस्त विश्व छायांकन दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे।

श्रोताओं, अगर आप सोचें तो पाएंगे कि इस संसार में प्रकृति ने हर प्राणी को जन्म के साथ ही एक कैमरा दिया है, जिससे वो इस संसार की प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है, और वो कैमरा है उसकी आंखें। इस दृष्टि से देखें तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है, लेकिन आंखों में उतरती तस्वीर का कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं होता, जबकि मन तो जीवन के खूबसूरत पलों को बार बार छूना, बार बार जीना चाहता है, उन पलों को संजो लेना चाहता है, और जब भी चाहे उसका मन, तब निकाल कर उसे फिर देख लेना चाहता है। उसकी इसी चाहत ने चित्रों की यात्रा शुरू की, उसकी इसी इच्छा से पेंटिंग अस्तित्व में आई, फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक तरक्की हुई और कृत्रिम लेंस का आविष्कार भी हुआ, और इस लेंस से प्राप्त छवि को हमने स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। दोस्तों, तस्वीरें, फोटोग्राफ्स हमारी संवेदना से जुड़ी हुई बातें हैं। एक समय था ना जब हर घर में एक फ़ोटो एल्बम हुआ करता था। आज तो हर हाथ में मोबाइल है और आपकी सारी तस्वीरें आपके मोबाइल में कैद होती हैं, लेकिन पहले एल्बम हुआ करता था। जीवन की कितनी यादें उसमें धड़कती थीं, बचपन की तस्वीरें, स्कूल के दिनों की तस्वीरें, आपके जो छोटी क्लास में जो सहपाठी थे उनकी तस्वीरें, उन टीचर्स की तस्वीरें, ग्रेजुएशन के समय की तस्वीरें, कभी किसी पिकनिक में गए या किसी उत्सव में थे, ये सारी तस्वीरें हमारे एल्बम में रहती थीं। दरअसल कोई भी तस्वीर हमारी ज़िंदगी का एक ठहरा हुआ पल है, कैमरे की आँखों ने जिसे कैद कर लिया, और वो पल हमारे एल्बम में हमेशा मुस्कुराता रहता है, और दिल जाने कब कब कितनी कितनी बातें उससे करता है। और कभी यूं भी होता है, क्योंकि तस्वीर हमारे मन में होती है, दिलो दिमाग में होती है, तस्वीर ख्यालों में हम बनाते हैं, लेकिन ये तस्वीर बन नहीं पाती।

दोस्तों, फोटोग्राफी की आधिकारिक शुरुआत सन 1839 से मानी जाती है, जब फ्रांस सरकार ने मेंडे लेग्यूरे द्वारा ईजाद की गई फोटोग्राफी की तकनीक को मान्यता दी थी। आज फोटोग्राफी को जो मुकाम हासिल है, उसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस जैक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे पास महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की वास्तविक तस्वीरें हैं, तो इसकी वजह यही है कि उस वक्त तक कैमरे की मौजूदगी थी, जबकि उसके पहले के जो इतिहास पुरुष हैं उन्हें तो हम कल्पना की आँखों से ही देख पाते हैं। दरअसल फोटोग्राफी के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। सच तो ये है कि ये एक चरणबद्ध तरीके से विकसित होती हुई कला है, और आज तो भाई मोबाइल है हर हाथ में, जिसके ज़रिए कैमरा हर हाथ में है और मनचाही तस्वीरों से ज़िंदगी की बातचीत जारी है।

श्रोताओं, दरअसल फोटोग्राफी एक ग्रीक शब्द है जिसकी उत्पत्ति फोटोज यानी लाइट और ग्राफी यानी उसे खींचने से हुई। सन 1839 में वैज्ञानिक सर जॉन एफ डब्ल्यू हर्शरेल ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। ये मेथड किसी संवेदनशील सामग्री पर प्रकाश की कार्रवाई या संबंधित रेडिएशन की प्रक्रिया द्वारा इमेज की रिकॉर्डिंग करने से जुड़ा हुआ है। रोचक बात यह है कि शुरुआती दौर में चित्र में गतिशीलता लाने के लिए लालटेन का प्रयोग किया जाता था। मसलन कांच की पट्टी पर चित्र अंकित कर उसे एक विशेष उपकरण के सामने लगाकर पीछे लालटेन लगा दी जाती थी। परिणाम स्वरूप पर्दे पर एक धुंधला चित्र दिखाई देने लगता था। इस तरह लालटेन को उस आधारभूत उपकरण के तौर पर माना जाता था जिससे वैज्ञानिकों ने फिल्म प्रोजेक्टर का विकास किया और इस तरह तस्वीरों का संसार बदलता गया, बढ़ता गया।

श्रोताओं, इस कैमरे की फोटोग्राफी की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड का ज़माना आया, तस्वीरों ने चलना शुरू किया तो चित्रपट हमारे सामने आया, रुपहला पर्दा सामने आया। और इस रुपहले पर्दे के ज़रिए कितने कितने महान कलाकार सदा के लिए अमर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि तस्वीरें हमसे बातें करती हैं। बंद आँखों से हम कुछ तस्वीरें देखते हैं तो कुछ खुली आँखों से देखते हैं, कुछ तस्वीरें हमारे सपने में आती हैं। दरअसल तस्वीर हमारे मन की छायाएं हैं, तो वो आपके मन से बात करती हैं। आपके पास ज़िंदगी की सुंदर तस्वीर हो, ये कामना हम करते हैं। गुजरे हुए जो पल हैं वो आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा याद बनकर संचित रहें, उन्हें आप संजो कर रखें फोटोग्राफी के ज़रिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए।

0: श्रोता, उम्मीद है कि फिल्म संगीत का आज का ये कार्यक्रम जो तस्वीरों की बात कर रहा था, तस्वीरों से बात कर रहा था, आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही देर बाद।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223। क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़े ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोकगीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाऊ थी।
1: हाँ खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोकगीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी,
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है पॉलीथीन दूर हटाना है। धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ। जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
3: पानी पानी रे, पानी रे।
4: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
5: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
4: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
5: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
4: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
5: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
4: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
5: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
6: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
4: आओ मिलकर करें प्रयास,
5: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: पॉलिथिन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि
1: 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4-लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
2: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर अमर बहादुर सिंह के साथ की गई भेंटवार्ता। विषय होगा भूमि की जैव विविधता बढ़ाने के उपाय एवं महत्व। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम सफर। ये नाटक सुनिए आज रात 10 बजे। लेखक दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे सुनील मुखर्जी का सरोद वादन राग रागेश्री। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की और अब एक संक्षिप्त सा परिचय कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का।

आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:40 का समय होगा चिंतन का और कृषि चर्चा सुनी जा सकती है 6:45 पर। सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:02 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर कल हम आपको सुनवाएंगे भाग्यश्री सहस्रबुद्धे के गाए हुए कुछ भजन। बुनियाद ये नाटक सुनिए सुबह 9:30 पर। लेखक अजीमुद्दीन, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम श्रीवास। जिले की चिट्ठी सुनी जा सकती है सुबह 10:00। 10:05 का समय होगा फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम गीत सागर का। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:30 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है दिन में 12:00 संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक जमुनिया की दूसरी कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1:00। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे जबलपुर केंद्र का योगदान होंगे। दिन में 2:00 फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 2:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। शाम 5:33 पर, शाम 6:30, रात 8:15 पर और रात 9:30। कल शाम 6:00 हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुर्खियों में। ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 10:00 सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा रात 10:30। इसमें कल हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर प्रभा अत्रे का ख्याल गायन राग मधुवंती। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मैहर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक बहनों के खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। हर बहन के खाते में रक्षाबंधन के 250 रुपए के शगुन सहित कुल 1,750 रुपए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया।
6: श्री राम वन गमन पथ और 3,000 करोड़ से ज्यादा के काम चित्रकूट पे भी हमने मंजूर किए हैं और माता मैहर के लोक का भी पहले फेज का भूमि पूजन आज यहाँ हुआ है। कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया है। बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए की राशि आप तक पहुँचाई।
5: इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने मां शारदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वसहायता समूहों की बहनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को अपने निर्णयों में विवेकपूर्ण, अपने आचरण में करुणामय और सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ ही जनता की निष्पक्षता, विनम्रता और समर्पण के साथ सेवा करने का गहरा दायित्व भी आता है। नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। न्यायालय ने सुरक्षित परीक्षा केंद्र, बेहतर साइबर सुरक्षा, विशेषज्ञों की स्थायी व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से हलफनामा दाखिल कर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही नंदन नीलकेणी समिति के सुझाए बदलावों को भी इसमें शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत आज उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नानाखेड़ा शांति पैलेस, शांतिनगर नीलगंगा और शांतिनगर मंछामन इंदौर रोड का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने सड़क का लेवल एक समान रखने और निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा निर्धारित समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क से मिट्टी हटाने, गड्ढों का भराव तथा नाले के पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
7: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
5: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 6-8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत हर साल करीब 130 अरब अमेरिकी डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बातचीत की।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी।
5: प्रदेश के डिंडौरी जिले ने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जुलाई महीने में देश के 100 चयनित जिलों में डिंडौरी को नंबर 1 रैंक मिली है। जिले में कोदो कुटकी, प्राकृतिक खेती और जैविक प्रमाणीकरण को बढ़ावा देकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 1040 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका है। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने वर्ग 3 के तहत सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, प्रयोगशाला तकनीशियन सहित कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाएं 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आज भोपाल में मत्स्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के साथ बैठक की। मंत्रालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जलाशयों में मत्स्य निवेश, जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और निवेशकों की समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य क्षेत्र को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर इसे उद्योग और रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहयोग देने की बात कही। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि नवाचार तभी तक सार्थक हैं जब वे प्रयोगशाला से निकलकर निर्माण स्थल तक पहुंचे और उसके अच्छे परिणाम मिले। उन्होंने ये बात आज भोपाल में सतत अधोसंरचना कार्यशाला के दौरान कही। मंत्री ने नई तकनीकों को पहले परीक्षण और पायलट परियोजनाओं में आजमाने के बाद बड़े स्तर पर अपनाने पर जोर दिया। कार्यशाला में टिकाऊ सड़क निर्माण, नई निर्माण सामग्री, कचरे के उपयोग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में युवाओं को एकजुट करने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्योपुर जिला कलेक्टर सभागार में सांसद शिवमंगल सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सांसद ने मुख्य सड़क के अप्रोच रोड की सुविधा से वंचित गांवों के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। अशोकनगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर लार्वा सर्वे, जाँच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती पर उनके सामाजिक न्याय व मानवता के संदेश के प्रसार के लिए समरसता संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उल्लास अभियान के तहत एडीआर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण

शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ में आकांक्षी विकास खंडों में विकास कार्यों की समीक्षा व बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को डिजिटल टूल किट का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने कुकरू हिल्स स्टेशन पर कॉफी प्लांटेशन को बढ़ावा देने और जल संरचनाओं के एकीकृत प्लान के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। सीहोर में इछावर तहसील के मोगरा रोड पर बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने उतरे 3 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 सगे भाई थे। और खंडवा जिले में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और समरसता यात्रा का आयोजन कल 20 अगस्त से 10 सितंबर तक किया जाएगा। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की खपत पर 20% तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर से लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी की। नीट यूजी 2026 मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडौरी जिला देश में पहले स्थान पर रहा और प्रदेश में वर्ग 3 के 1040 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अब अपना कार्यक्रम चौपाल, तो चलिए हम सब चलते हैं चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनबे वाले सभी भैया हरन को भौजी बिन्ना हरों को आरती की राम राम। और भैया हरों कैसे का हाल चाल है आप और इनके? भैया हरों देखो सावन को महीना चल रहा है और देखी जाए तो चारों ओर जोन इतेक नौनी हरियाली छाई है, ठंडी ठंडी पुरवैया चल रही है और रिमझिम फुहार जब गिरत है तो देखो जा सावन के महीना की तो का ही कहें, है ना। ऐसो लगत है कि का कि साक्षात कामदेव जमीन पे आ गए हों। और संगे संगे तीज त्यौहार, तो भैया देखो तीज त्यौहार की बरखा सो होने लगत है। अब अपन और ने देखो हरियाली तीज मनाई, नागपंचमी को त्यौहार मनाओ और अब आन बारी है भैया रक्षाबंधन और बाकी पाछे जन्माष्टमी और फिर देखो भैया गणेश चौथ और सांची कहे तो एक के बाद एक त्यौहारन की तो लाइन लग जाते। तो जो त्यौहार जो होते हैं भैया रे जी अपने मन को कितेक सुकून देते हैं, कितेक तसल्ली देते हैं, है ना, और कितेक आनंद से अपन का भर देते हैं। तो भैया रे सावन को महीना चल रहा है और हमारे कई भैया हरे जौन हैं वे भोले बाबा के हैं बड़े भगत। सुबह सावन के महीना में कांधे पे कांवर धर के बम भोले को नारा लगात भय, बड़ी मस्ती में झूमत झामत भय, पैदल चल के हाथ में गंगा जल ले के मंदिर पहुँच रहे और भोले बाबा को खुश करवे के लाने बेलपत्र धतूरा फूल फल चढ़ा रहे, गंगा जल चढ़ा रहे। तो देखी जाए तो अपने भोले बाबा हैं भी तो कितने दयालु, है ना, वे हमारी हर पीड़ा को हर कष्ट को वे तुरंत ही हर लेते। बस तनक मन से उनको ध्यान धर लो, एक लोटा जल ढार दो तो वे तो बई में खुश हो जाते। तभी तो जो सावन को पावन महीना जो है शिव जी को आशीर्वाद पावे को जो है बड़ो ही पावन महीना है, है ना। तो हमारे सोई अपनी मनोकामना पूरी करवे के लाने कही जाते कि जो सावन को महीना बड़ो पवित्र है। तो हम तो यही कहें कि आप और भैया देखो हर दिन आप और उनको हर दिन सावन की हरियाली जैसो हरो भरो हुए और भोले बाबा को आशीर्वाद हमेशा आप सभी के संगे ऐसो ही बनो रहे। तो भैया रो हमारे भी सबके संगे हिल मिल के रहें, हारी परेशानी में उनको ख्याल रखें। अब देखो तो हमारे कई भैया रन की का आदत होते कि वे मुसीबत में फंसे लोगों को सहायता करवे के लाने हमेशा तैयार रहते और आज को दिवस भी भैया ऐसे ही लोगों का समर्पित है। आज है 19 अगस्त और भैया आज सभी हम सब मिल के विश्व मानवतावादी दिवस सो मना रहे, उन्हें याद करके उन्हें सम्मान देवे को देना है। काहे से देखो बिना कोनो स्वार्थ के अपनी जान को जोखिम में डाल के मुसीबत में फंसे लोगन की भैया ऐसे जो हम सेवादार भैया हरे भी मदद करते। चाहे भैया रो बाढ़ आए या सूखा पड़े या कोनो महामारी या कोनो युद्ध आपदा होए, जो सेवादार जौन होते भैया जो सहायता कर रहते हैं और राहत पहुँचावे में सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो भैया रो जा देना को मनावे की शुरुआत की अगर अपन बात करें तो आपको बता दें कि 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद शहर में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में आतंकियों ने भैया हरो हमला कर दो आज ही के दिन, तो जी में कई सेवादारन की जान चली गई हती। तो बड़ी घटना के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने तय कर लो कि हर साल हम सभी मिल के 19 अगस्त को जो दिना है उखो उनकी याद में दुनिया भर के सेवादारों राहत कार्यकर्ताओं की याद में उनको त्याग और मान सम्मान मिले और जो इंसानियत को ना जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे जी के लाने हम सभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मना है। तो सांची कहें तो देखो अपने ते भी लोगों में बड़ी सेवा पर उपकार की भावना है ना, उन सेवा पर उपकार में कौन कमियाँ नहीं है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि हित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरन के दुख दर्द को बांटवे से बड़ो कौनों धर्म नहीं है। और भैया रो आपने देखो हुई है कि गर्मियों में कई भैया रे ठंडे पानी की सेवा देते हैं, स्टेशन होए बस स्टैंड होए जगह जगह के पे घड़ा भरवा होते जिसे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिले। अगर कौनों मान लो हारी बीमारी की बात हो, कमजोर बीमार है ऊखी देख रेख करते हैं, पूरा परोस में कौनों बीमार हो जाए भैया तो देखो अपने जिन महेश दद्दा नहीं है वे सबसे पहले उन लोगों के लाने खड़े होते हैं। मान लो कौनों को रक्त की ज़रूरत पड़ गई, खून की ज़रूरत पड़ गई, खून की कमी हो गई, अब खून चढ़वाने हैं तो भैया देखो ऐसे कई अपने सेवादार भैया हरे हैं वे तुरंत ही जब फोन कर दे तो तुरंत ही भी खून देवे के लाने भी तैयार हो जाते। तो भैया रो यही तो असली मानवता है। तो हमारे अपने लड़कन बच्चन को यही सीख दें कि हमेशा हमारे दूसरन की सेवा में के लाने तैयार रहें। तो भैया आज के दिन हम यही मिलके संकल्प लें कि जब तक बने हैं हर दीन दुखी की हमारे मदद करें, उनकी मदद के लाने तैयार रहें और हम सब मिलके देखो भैया आपस में प्रेम से हिल मिल के रहें। अब कई लोगों की आदत भी यही होता है कि तनक सी सेवा करी और बाकी फ़ोटो खींच के उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दी।
तो आजकल तो भैया हरो सुख दुख हंसी खुशी सभी पल को हमारे भैया हरे कैमरा में कैद कर लेते हैं। और कई भैया हरन को फोटोग्राफी को तो भैया इतो शौक होत है कि न वे दिन देखे न रात, कबू उन पेड़ पौधा की फ़ोटो खींच रहे हैं तो कबू चिड़ी चरोटा की फोटो खींच रहे हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते। और आजकल तो देखो भैया अब सबके हाथन में आ गया है मोबाइल, वहाँ में कैमरा लगो होता है, सो खूब ही रात दिन फोटो खींच रहे रील बना रहे हैं। तो कई कई को तो भैया सेल्फी लेवे की इतनी आदत होते है कि ऐसी खतरनाक जगह पे भी पहुंच जाते हैं, उन्हें जो भी नहीं समझ पड़त कि देखो अगर हमने तनक सी हमारी लापरवाही भई नहीं कि हम जान से हाथ धो बैठे, है ना, तो तनक निगाह छू की नहीं, पैर फिसलो नहीं तो गए काम से। तो भैया हरो कई मनोवैज्ञानिक जौन डॉक्टर हैं बेबी जई कहते हैं कि जिस सनक जौन होता है सेल्फी लेवे की जी में जौन पल को जौन दृश्य को हमारे कैमरे में कैद कर वो चाह रहे हैं तो देखी जाए तो वो दिमाग में हमारे कभी नहीं रहते ही, है ना। जिसे अच्छो तो यही है कि तनक देर हम होते बैठ जाएं और जब प्रकृति की सुंदरता को शांत मन से निहारें तो ये क्षण जो है ये दृश्य जो है वो आजीवन हमारे मन मस्तिष्क के पटल पर छाव रहे। तो काहे हम भैया ऐसे गलत काम कर रहे थे, जान को जोखिम में डाल रहे थे और सेल्फी ले रहे हैं। तो भैया रो आज 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस भी है तो जौन कैमरा से जो फोटो खींची जाती थी बा फोटो खींचवे के भी तो भैया देखो कछु नियम होते थे, है ना। अब बचपन में हम और जब मेला घूमने जा रहे हैं तो मेला में फ़ोटो खिंचवा लेते थे, हैं कौनों शादी ब्याह में गए तो उतें भैया जब फोटोग्राफी होती थी तो जब जो रील बन के जोन आती थी जो कैमरे से जब फोटो खींची जाती थी और एल्बम जब बन के आती थी तो वह एल्बम

0: दुनिया के सामने लाए और पूरी दुनिया को मुफ्त उपहार के रूप में उन्होंने जा खोज को दे दो, यानी कि वो जो फोटो खींचवे की जो खोज आती है ना उखो वो उन्होंने पूरी दुनिया को मुफ्त उपहार में दे दो। अब भैया देखो जीखो मनावे के पीछे भी यही उद्देश्य है कि हम अपनी संस्कृति यादें इतिहास की तस्वीरन के जरिए सहेजें और जौन फोटोग्राफर भैया बहन जो जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके काम को की सराहना करें। तो अब जे तो हो गई देखो इतिहास की बात, लेकिन देखो जाए तो जमाना कितना बदल गया है ना। अब सबके पास मोबाइल है, वे चाहे जब फोटो खींच सकते हैं। तो भैया हम तो यही कहें कि जब फोटो खींचे तो कछु बातन पे ध्यान धरें कि जौन कोशिश ये करें कि हमेशा जब फोटो खींचे तो ऐसे बनावटी फोटो नहीं खींचन चाहिए, बल्कि सच्चे भाव दिखें, नेचुरल दिखें, ऐसी फोटो खींचे। और फोटो खींचे वाले जो कैमरा होते हैं वाको लेंस भी साफ हो, जिससे कैमरा जो फोटो है वो धुंधली ना दिखे। तो भैया इस फोटोग्राफी दिवस पे काहे ना चौपाल पे बैठे हम सभी भैया बहन का एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो तनक खींच तो लो अपने लखन दद्दा से, कहो कि देखो इन सब की फोटो खींच लें और जा क्षण को कैमरा में कैद कर लें। तो भैया हरो जब सावन को महीना है और हम और भी देखो जही चाहे कि हमारो इच्छा हो रही काहे ना एक कजरी सुन ली जाए। तो चलो हम और आप मिल के विनोद पुरोहित के स्वर में जे कजरी सुन है, लेकिन भैया वासे पहले सुन लेते हैं जे विज्ञापन।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई ही, मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
0: तो भैया देखो सावन को महीना चल रहा है तो काहे ना हम सब मिलके सुने जे कजरी गीत। तो सुनत है विनोद पुरोहित के स्वर में ये कजरी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो भैया देखो, आइए अब आज है दिन बुधवार और आज हम आपको सुनवा हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह। भैया देखो, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम प्रति मंगलवार को पहले आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से मौसम की जानकारी दिवाओते थे, कृषि सामयिक सलाह दिवाओते, लेकिन अभी कछु दिन अनके लाने भैया समय दिन को चेंज करके, दिन को बदल के अब हम बुधवार को सुनवाओते हैं। तो भैया चलो हम सब मिलके सुनते हैं और जब मैं हमें जानकारी दे रहे हैं जो कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर हरविंद सिंह, तो चलते हैं उनके पास और लेते हैं जानकारी, मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह।
3: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे आप पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 5.1 से 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 34 से 34.5 और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 72 से 78 और शाम को 68 से 71% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में घने बादल रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 2 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35.4 से 35.7 और न्यूनतम तापमान 27 से लेकर 27.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अपेक्षित आर्द्रता की बात करें तो सुबह 93 से 95 और शाम को 73 से 82% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, संभावित मौसम की बात की जाए तो आगामी 5 दिनों में हल्की वर्षा की संभावना है पूरे ग्वालियर और मुरैना चंबल संभाग में। तो इसके देखते हुए जो आप अभी कृषि कार्य कर सकते हैं उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो किसान भाई, संभावित मौसम में आगामी 5 दिनों में हल्की वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में खरपतवार नाशी एवं नाइट्रोजन का छिड़काव करें, यानी खरपतवार का नियंत्रण करें और जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा है उसको दें। फसलों की बात करें तो किसान भाइयों, इस समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी इमेजाथायपर प्लस इमेजामाक 70 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन की अवस्था पर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, उर्द और मूंग की बात करें तो संभावित मौसम में खरीफ उर्द और मूंग में पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैंग को जो है 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर इसका भी छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों, तिल की बात करें तो संभावित मौसम में तिल में पत्ती धब्बा व काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैनको ये 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका

0: छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बाजरा की बात करें तो बाजरा की भी फसल इस समय वृद्धि अवस्था में कलले निकलने की अवस्था में, तो मौसम को देखते हुए बाजरा में जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको इस समय दें। साथ ही किसान भाई धान की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए क्यों हल्की हल्की बरसात होती है तो धान में पानी की जोड़ी कमी होती है उस समय खरपतवार होने की मात्रा बढ़ जाती है, खरपतवार हो जाती है खरपतवार की, तो उसमें इस समय खरपतवार अवश्य रूप से करें। साथ ही किसान भाई सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रभंग एवं सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है, सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास 750 से 800 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका प्रत्यक्ष छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो किसान भाई इस समय जो सब्जियां आपने नई सब्जियां जिनकी रोपाई की है जैसे आपकी अगेती गोभी हो, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, तो उनमें इस समय खरपतवार नियंत्रण करें और साथ ही आवश्यकता अनुसार जो नाइट्रोजन की मात्रा हो उसको दें। साथ ही किसान भाई भिंडी की बात करें तो इस समय भिंडी फलन अवस्था में है तो भिंडी में इस समय फलछेदक कीट की संभावना हो सकती है, तो इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाइयों मिर्च की बात करें जो इस समय फलन अवस्था में है तो उसमें चुरा मुरा रोग की संभावना हो सकती है, ऐसा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथाक्सिजाम 25 WG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बैंगन की बात करें तो बैंगन और टमाटर में तना छेदक और जो फलन वाली फसल है उसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु निवाक्रोन 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए पशुओं की नाद और पशुशाला की नियमित सफाई करें और प्रतिदिन पशुशाला की सफाई के बाद 5 ml दवा ml फिनाइल प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका फर्श पर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई संभावित मौसम में पशुओं में संक्रामक रोगों के होने की संभावना अधिक बनी रहती है, अतः पशुओं को इसके बचाव हेतु दूषित चारा दाना न दें और साथ ही तालाबाद का पानी न पिलाएं, शुद्ध पानी पिलाएं। साथ ही किसान भाई इस समय पशुओं को अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से अफरा रोग की संभावना बनी रहती है और अफरा रोग हो जाता है, अतः अफरा रोग की रोकथाम के लिए टिम्पाल या ब्लोटोसोल दवा 500 ml प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं, यानी टिम्पाल हो या अथवा ब्लोटोसिल हो उसको 200 ml दवा प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से मैं डॉक्टर हरबीन सिंह।
1: हाँ तो भैया रो देखो अभी हमारे सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मौसम की जानकारी और संगे संगे हमारे किसान भैया हरन ने जानकारी ली कृषि सामयिक सलाह पे और जानकारी दे रहे थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। और भैया रो अब बखत है एक विराम को, तो लेते विराम और सुनते ये विज्ञापन।

0: और आइए अब हम आपको सुनवावे जा रहे हैं गेंदा की व्यवसायिक खेती जा विषय पर जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर मयंक परिहार और इनसे भेंट कर रहे हैं श्री सोहन सिंह भैया। तो चलाते उनके पास भैया, लेते जानकारी।
1: किसान भाइयों, गेंदा की फसल वर्ष भर उगाई जाती है। गेंदा की फसल व्यवसायिक रूप में उगाकर अधिक लाभ ले सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर मयंक परिहार। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई गेंदा की फसल उगाते हैं, गेंदा के क्या क्या व्यवसायिक उपयोग हैं जिससे हमारे किसान भाइयों की अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके?
2: गेंदा एक वार्षिक पौधा है, इससे जल्द से जल्द फूल प्राप्त करके किसान बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। गेंदे का उपयोग हम जन सामान्यतः फूल माला बनाने में, घर में, पॉट प्लांट में, विंडो बॉक्सेस में, हैंगिंग बास्केट में एवं गार्डन के ब्यूटिफिकेशन में करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग इंडस्ट्रियल यूज़ में भी किया जाता है, जैसे कि पोल्ट्री फीड में ब्रॉयलर स्किन का पीला करना एवं अंडे के योग को पीला करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आजकल मॉस्किटो स्टिक, इंस्टेंट स्टिक बनाने में भी किया जाता है। गेंदा ज़ेंथोफिल का एक मुख्य स्रोत है जो कि 80-90% कैरोटीनॉइड युक्त होता है।
1: गेंदा की ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका चुनाव करके हमारे किसान भाई इस क्षेत्र में लगा सकते हैं?
2: मुख्यतः गेंदा हमारे देश में दो ही प्रकार का उगाया जाता है, जिसमें एक अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा होता है। अफ्रीकन गेंदा से जनरली जो है वो 1 मीटर हाइट का होता है, जिसमें डार्क फॉलिएज एवं फ्लावर येलो और नारंग ऑरेंज एवं येलो टू ऑरेंज फूल मिलते हैं। और जो फ्रेंच गेंदा है उसकी हाइट लगभग 1 फीट की होती है। इसमें सर जो पुष्प है वो येलो और महोगनी रंग का एवं महोगनी टू येलो रंग का भी पुष्प में प्राप्त होता है। अफ्रीकन गेंदा की जो मुख्यतः किस्में हैं जो हमारे यहाँ पर उगाई जाती हैं वो पूसा बसंती गेंदा एवं पूसा नारंगी गेंदा, ये दोनों वेराइटियाँ IRI दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इसके अलावा सर कुछ वेराइटी और हैं, जैसे जाइंट डबल अफ्रीकन ऑरेंज, इसका पुष्प बहुत ही बड़ा होता है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन गेंदा की हाइट 1 मीटर जरूर होती है, पर इसमें कुछ ड्वार्फ वेराइटी भी पाई जाती हैं। इंका सीरीज़ का गेंदा बहुत ही पॉपुलर है गार्डन ब्यूटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा सर फ्रेंच मारीगोल्ड की कुछ वैरायटी हैं जो हैं पूसा दीप और पूसा अर्पिता, ये सर हमारे यहाँ सामान्यतः उगाई जाती हैं।
1: गेंदा की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है जहाँ पर हमारे किसान भाई लगाएं तो अच्छा लाभ ले सकते हैं?
2: किसी भी फसल के लिए मिट्टी बहुत ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि मिट्टी ही निर्धारित करती है कि हमारी फसल किस तरह की होगी। मिट्टी का चयन करने के लिए हम लोग कई तरह के फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, जिसमें से एक सर मौसम भी है। मौसम के अनुसार हम देखें तो गर्मियों के मौसम में अधिक जल को रोकने वाली मिट्टी आवश्यक होना चाहिए, एवं जो बरसात का मौसम होता है उसमें अच्छी जल निकास वाली मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसके लिए सर हम इसमें बालू का उपयोग कर सकते हैं बरसात वाली दिनों में, एवं जो समर का जो सीज़न होता है उसमें क्ले वाला जो पोर्शन है उसका प्रोपोर्शन हम अधिक मात्रा में रख सकते हैं।
1: गेंदे के जो बुवाई है और उसकी जो रोपाई है वो करते समय हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
2: बुवाई और रोपाई एक सर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है गेंदे की खेती के लिए। गेंदे की नर्सरी उगाने के लिए साल में हम 3 बार गेंदा लगा सकते हैं, जैसे गर्मियों का मौसम, बरसात का मौसम और सर्दियों का मौसम। इसमें सर गेंदा जो है वो अधिक गर्मियाँ और एक अधिक सर्दी दोनों के लिए संवेदनशील होता है, इसीलिए इसको ऐसे मौसम उगाया जाता है जिसमें टेम्परेचर लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। गर्मियों के मौसम में जो बुआई का समय है वो जनवरी अच्छा माना जाता है। जनवरी के महीने में हम बुआई तथा इसकी रोपाई फरवरी माह में कर देते हैं, क्योंकि इस नर्सरी सर जनरली 1 महीने में पककर तैयार हो जाती है। ऐसा ही सर हम बरसात में करते हैं कि जून के महीने में नर्सरी की बुआई तथा जुलाई के महीने में इसकी रोपाई, और सर्दियों के मौसम के लिए अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी की बुवाई एवं फील्ड में जो ट्रांसप्लांटिंग होती है वो सितंबर के मध्य में इसकी हम रोपाई कर दी जाती है इसकी।
1: अगर गेंदा की फसल हमारे किसान भाई उगा रहे हैं तो इसका किस तरह व्यावसायिक प्रबंधन करें?
2: गेंदे की सर जो बुवाई और जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो मेनली बीज के द्वारा किया जाता है। इसके लिए जो बीज की मात्रा है वो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति दर से नर्सरी तैयार करते हैं। सर, नर्सरी तैयार करने के लिए मेन जो फैक्टर है वो है बेड। बेड मुख्यतः सर 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, सनकिन बेड, रेज्ड बेड और फ्लैट बेड। नर्सरी के लिए हम जो करते हैं, बरसात से मौसम के आधार पर इन बेडों को डिवाइड किया गया है। बरसात के मौसम के लिए रेज्ड बेड और समर के मौसम के लिए फ्लैट बेड और सर्दियों के मौसम के लिए सनकिन बेड का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। रेज्ड बेड मीन सर ये ज़मीन से सतह से 15 सेंटीमीटर की हाइट इसकी लगभग होती है, ताकि बरसात के दिनों में जब जल भराव की स्थिति हो तो नर्सरी के जो पौधे हैं वो इससे बचे रह सकें। नर्सरी में सर जो बेड है वो उसकी लंबाई अपने आवश्यकता अनुसार, ज़मीन की जो अपने पास उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, उसके अनुसार हम बेड की लंबाई रखते हैं। परंतु जो उसकी चौड़ाई है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की ही रखते हैं, क्योंकि हम बेड के इस तरफ से उस तरफ तक जो भी कार्य करने हो वो उसमें आसानी से किए जा सकते हैं।
1: अगर हम गेंदा की व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें उत्पादन अधिक से अधिक हो, और अधिक उत्पादन के लिए जो खादें हैं उनका भी विशेष महत्व होता है।

0: गेंदा की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार करें?
1: सर, जो गेंदा की फसल के लिए जो खाद और उर्वरक की जो आवश्यकता है, वो हमें खेत की जब हम तैयार करते हैं उस समय ही हमको करना होती है। जैसे खेत को हम 2 से 3 बार जब हम जुताई करते हैं, जुताई जब आखिरी जुताई हमारी चल रही हो उसके पश्चात ही हम 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से FYM अपने खेत में मिला देते हैं ताकि खेत में अच्छे से मिल सके वो। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की जो मात्रा है वो लगभग 45 किलोग्राम, 90 किलोग्राम और 75 किलोग्राम की इसमें रिकमेंडेशन की गई है। जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हम पूर्ण तरह एक बार में नहीं देते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा को हम 2 भागों में बांटकर एक जो इसकी ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर तथा 45 दिन बाद दूसरी मात्रा इसमें दी जाती है।
0: गेंदा की फसल में सिंचाई किस समय करनी चाहिए? जैसे बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में तो अधिकतर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में तो सिंचाई करनी।
1: सिंचाई सर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सर गेंदे की खेती के लिए। गेंदा का पौधा एक हर्बेशियस प्लांट होता है और यह अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ सारी लगभग 40 से 45 दिनों के अंदर कर लेता है और इसके बाद ही यह अपने फ्लावरिंग स्टेज में एंटर करता है। तो जो फ्लावरिंग स्टेज में जो वाटर रिक्वायरमेंट है सर इसकी, वो वेजिटेटिव ग्रोथ की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। तो हमको एक तो ये फैक्टर देखना है कि हमको कब पानी इसमें ज़्यादा लगेगा, दूसरा सा मौसम के बेसिस पर भी हम इसमें कर सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी अधिक लगता है और सर्दियों के मौसम में जैसे कम लगता है। तो सामान्यतः ये हिदायत दी जाती है कि पानी है वो गर्मियों में हफ्ते में एक बार कम से कम और सर्दियों में कम से कम 15 दिन में एक बार इसमें पानी दिया जा सके।
0: और कौन कौन सी ऐसी कृषि क्रियाएं हैं जो गेंदा की फसल में हमारे किसान भाई करें तो अधिक लाभ ले सकते हैं?
1: सामान्यतः खरपतवार को निकालना, मिट्टी की गुड़ाई ये करते ही हैं। इसके अलावा सर एक जो स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं जो गेंदा में मुख्य रूप से की जाती है वो सर पिंचिंग। पिंचिंग इसमें टर्मिनल पोर्शन रहता है पौधे का, उसको हम निकाल दे जाते हैं। अगर हम गेंदे के पौधे की फिजियोलॉजी को अगर देखें तो जो पौधा 40-45 दिन तक अपनी पूरी हाइट गेन कर लेता है, इसके बाद जो उसका जो टर्मिनल वर्ड होती है, जो कलिका होती है सबसे ऊपर वाली और जो आसपास की कलिका होती हैं, तो ये प्रोडक्शन इनका चालू हो जाता है क्योंकि ये फ्लावरिंग स्टेज में अपने आने लगता है पौधा। जब हम इसकी टर्मिनल पोर्शन को हम निकाल देते हैं या पिंच कर देते हैं अपने थंब और अपने फिंगर की हेल्प से, जो साइड की जो बड होती हैं कलिका, उन वो सर अपने ब्रांचों में तब्दील हो जाती हैं और आसपास इसकी साइड ब्रांचों का डेवलपमेंट होने लगता है। इससे इसके फ्लावरिंग में संख्या में बढ़ जाती है और इसमें उत्पादन में भी वृद्धि काफ़ी हो जाती है।
0: हर फसल की तरह गेंदा की फसल में भी कुछ रोग या कीट नुकसान पहुंचाते हैं?
1: गेंदा में सर मुख्य रूप से 2 तरह के कीट देखने को मिलते हैं। एक रेड स्पाइडर माइट बोला जाता है और दूसरा एक हैरी कैटरपिलर नाम से एक किस्म कीट लगता है। जो स्पाइडर माइट है सर, पौधों के निचले भाग में एक मकड़ी नुमा जाला टाइप बना लेते हैं और सर जो भी भाग पौधे का इस जाले का संपर्क में आता है वो धीरे धीरे अफेक्ट होने के बाद में डिफॉलेशन की ओर बढ़ने लगता है। सर इसके जो नियंत्रण के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो केराथिन 0.5% का उपयोग इसमें करते हैं। सर इसके अलावा एक सल्फर वेटेबल डस्टिंग पाउडर के रूप में भी आता है, उसका हम छिड़काव करने से भी इस कीट पर रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा सर जो कैटरपिलर है वो क्या करती है कि फूलों पर अपने अंडे को दे देती है और इस अंडों से बाद में लार्वा निकलती है जो कि इसके फॉलेज पत्तियों को खाती है। प्लांट को डैमेज मिलता ही है, साथ साथ उत्पादन में भी कमी आती है। इसके साथ नियंत्रण के लिए क्विनोल फॉस 1.5 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करने का सुझाव दिया जाता है। इसमें सर कुछ रोग सर जैसे इसमें डंपिंग ऑफ एक मुख्य रोग है जो कि नर्सरी के दिनों में इसमें होता है। डंपिंग ऑफ में जो होता है कि पत्तियों में धब्बे पड़ जाते हैं ब्राउन रंग के, जो धीरे धीरे वाटर सोक की ओर बढ़ने लगते हैं और ये धब्बे एनलार्ज होते जाते हैं समय के साथ साथ में और पत्तियों को बाद में सड़ा देते हैं। इसकी सीवियर स्टेज पर अगर हम देखें तो ये सब पत्तियों के साथ साथ तने पर भी देखने को मिल जाता है, जिससे सर सीडलिंग की सडन डेथ भी अक्सर देखने को मिलती है। पर इसका जो अनुकूल वातावरण है कि वेट एरिया में जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके सर उपचार या नियंत्रण बचाव के लिए हम देखें वेल वेंटिलेटेड नर्सरी को हमको बनाना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं रखना चाहिए। केफ्टाफ 4 ml प्रति लीटर की दर से इसमें हम छिड़काव कर सकते हैं तो भी इसमें सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा एक जो बीमारी हम इसमें देखते हैं वो है लीफ स्पॉट। यह अक्सर जो पौधा या फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है उसके बाद में ये बीमारी देखने को मिलती है। पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में बड़े होकर पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और पत्तियों का डिफॉलेशन

0: इसमें हो जाता है। इसमें इसका सर जो कंट्रोल है मैंको जेब 2 ml प्रति लीटर तथा प्रोपेकोनाजोल 250 ml तक इसमें डाल सकते हैं।
1: गेंदा की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हमारे किसान भाई टमाटर की फसल लगाते हैं और बीच बीच में अगर गेंदा के पौधे लगा देते हैं तो इनकी जो जड़ें होती है उनके जो सीक्रेट निकलता है उससे जो नेमाटोड की बीमारी आती है वो नेमाटोड की बीमारी टमाटर की फसल में नहीं लगती है और फसल स्वस्थ रहती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिसे अपनाकर हमारे किसान भाई अगर गेंदा की फसल लेते हैं तो उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है?
0: अंत में सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि गेंदा की सर जो फसल है वो से हम कम समय में अधिक लाभ आसानी से लिया जा सकता है। यह पौधा एक ऐसा है जो आसानी से किसी भी जलवायु में अधिक से अनेक प्रकार की मिट्टियों में आसानी से लगाया जा सकता है।
2: तो देखो अबे हम और ने जो भेंट वार्ता सुनी गेंदा की व्यावसायिक खेती जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मयंक परिहार और इनसे भेंट कर रहे थे सोहन सिंह भैया। तो भैया उम्मीद है कि आप सभी ने जो भेंट वार्ता को सुने हुई है और जौन हमारे भैया रहे हैं गेंदा की खेती कर वो चाह रहे हैं जिसे तो अच्छा लाभ मिला थे तो उन्हें जा वार्ता से जा भेंट वार्ता से सुन के उन्हें लाभ भी मिले। भैया देखो अब कछु चर्चा हो जाए का है कि देखो जब संजा बिरिया हमारे जब इतने आ रहे हते तो हम का देखें कि राम जानकी मंदिर में बड़ी भीड़ लगी हती और हमारे संगे संगे जो देवकी नंदन भैया हैं वे भी बड़े बड़े डग भरत भाई उतर जा रहे हते और हाथ में रामायण लाए। सो हमने उनसे कही का देवकी भैया आज का बात है हाथ में रामायण काय लाए हो? सो वे कहने लगे कि तुम्हारे को नहीं पता कि आज कितो पावन दिन आए। सो हमने की क्या पावन दिन का हमें कछु समझ में ही नहीं आई। तो कहने लगे कि शाम को शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और आज अपने तुलसीदास बाबा की जयंती है तो जिनने पूरी रामायण रामचरितमानस रची हती। सो हम सभी ने प्लानिंग करी है कि आज सभी मंदिर में इकट्ठे हुई हैं और 51 लोग एक साथ मिलकर रामचरितमानस को पाठ करें। सो हम एकदम सकुचा गए और कहन लगे अरे का करें दद्दा जा घर गृहस्थी के कामन से फुर्सत मिले तब तो कछु याद रखे। लेकिन चलो आप और कितो अच्छो काम कर रहे सांची कहें तो जो तुलसीदास बब्बा को जो नाता है जो अपने क्षेत्र से भी तो है। अरे देखो तो उनने चित्रकूट के पावन घाट पे कितेक बरस प्रभु श्री राम की भक्ति करी और जो दोहा तो आप और ने सुनी हुई है सबको याद भी हुई है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। तो भैया हरो चित्रकूट के कण कण में तुलसीदास जी की भक्ति देखे को मिलते और आपको बता दें कि जो तुलसीदास जी हैं उनने अयोध्या क्षेत्र की अवधि भाषा में प्रभु जो रामचरितमानस है वो लिख के जन जन तक प्रभु श्री राम जी के आदर्श पहुँचाए हते। भैया हरो जो तो देखो अपन और रोजीना हनुमान चालीसा को भी पाठ कर रहे थे और आपको बता दें कि जाकी रचना भी तुलसीदास जी ने करी हती। तो सांची कहें आज के समय में तुलसीदास जी के जो विचार हैं हम और उनको बिल्कुल सही राह दिखाते हैं कि परिवार में कैसो प्रेम रखें भाई भाई को प्रेम कैसो होए पिता पुत्र को प्रेम कैसो होए कि पिता की कही बात जो है वो पुत्र के सर माथे पे होए है ना समाज की मर्यादा को कैसे निभाने तो जिस सब सीख हमें उनकी चौपाइयों से मिलत है। भैया हरो कितो भी संकट आ जाए पर हमें धर्म और मर्यादा को रास्ता नहीं छोड़ने हैं है ना। हम सब समाज में हिलमिल के रहें समाज में कौनों के साथ ऊंच नीच छुआछूत को भेदभाव अपनखा नहीं करना है और हम सभी एक है जय संदेश देखो तुलसीदास जी ने भी दो है। तो भैया हरो आज उन जयंती पे हम सब मिलके यही संकल्प लें कि हम सब उनके बताए रास्ता पे चले हैं और अपने मन में जीवन में सेवा भावना है। और भैया चलते चलते जो गीत हो जाए तो चलिए देवकी प्रसाद अग्रवाल के स्वर में सुनाते हैं ये लोकगीत।

0: बैयारे अब जावे की बेरा हो रही, तो अब हम आप सभी से विदा लेते हैं। सभी को आरती की राम राम, जय जवान जय किसान।
1: ऐसी ज्ञान पिठारी तुलसी तो

0: पत्रकार के वी प्रसाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो रेलवे और राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। 13,041 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये दर्शाता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति में सरकार निवेश को कितना महत्व दे रही है। आज इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: मंत्रिमंडल ने जो आज रेलवे और राजमार्ग से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए 13,041 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो निवेश हो रहा है ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है, ये क्षमता बढ़ाने में कितना लाभदायक है और आने वाले वर्षों में जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखकर के अगर ये फैसला लिया गया है तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, कैसा असर देखने को मिलेगा?
2: अगर हम पहले भारतीय रेल की ओर जगह जिसमें काफी निवेश के बारे में अलग अलग प्रोग्राम अनाउंस किए, करीब 13,000 करोड़ के ये कैबिनेट के जो फैसले हुए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में रेलवे को माना जाता है जीवन यापन के लिए, खासकर जो लोगों के आवाजाही और माल ढुलाई के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जब नीतिगत और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है और हम जिस तरह से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य साधे हुए हैं, उसमें मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब तक आप एक तरफ हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा तेजी से विकसित करे और उसी की वजह से रोजगार और तमाम सारी चीजें जुड़ी होती हैं, ऐसे में रेलवे जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है उसमें काफी विस्तार की बात की है। जो 4-5 लाइन जो की है, कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स को 4th लाइन 3rd लाइन इस तरह बढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा यह है कि इसमें दोनों चीजें, एक तो यह है कि ये मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट जैसे कहा गया है, और एक जो सबसे बड़ा रूट है हावड़ा और चेन्नई के बीच, जो कि हम जानते हैं कि एक कोस्टल एरिया है और साथ ही साथ कई सारी, इसको हाई डेंसिटी रूट कहा जाता है क्योंकि काफी हद तक इस पे लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई होती है।
1: प्रसाद जी, 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की बात हुई है जिसमें लगभग 410 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि 410 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिछाना कोई आसान काम नहीं है। तो आज के समय में, मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय रेलवे के सामने बढ़ती यात्री संख्या और माल यातायात के बीच में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता नजर आती है, तो नई लाइनें और अतिरिक्त जो ट्रैक बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन समस्याओं का वो स्थायी समाधान दे रहे हैं हमें?
2: जी, कोशिश तो उसी तरफ रहती है क्योंकि जिस तरह से हमारे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, चाहे वो फ्रेट का ट्रैफिक हो या लोगों का, दोनों के लिए समस्या है। और हम ये सब जानते हैं कि भारतीय रेलवे की जो राजस्व होता है वो ज्यादा से माल ढुलाई से होता है और पैसेंजर ट्रैफिक कई खासकर नीचे श्रेणियों में तो काफी हद तक सब्सिडी सरकार उसको कंसेशन पे देती है, तो सरकार को उसमें राजस्व इतना नहीं होता और वो क्रॉस सब्सिडी के नाम पे माना जाता है। तो ऐसे में जब आप नई व्यवस्था बनाएंगे और खासकर जैसे उड़ीसा में बालासोर है, वहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पारादीप पोर्ट के

0: तरफ ये इनलैंड कंटेनर यानी कि जो माल ढुलाई के लिए जो मूवमेंट है वो एक काफी आसान करेगा। इसके साथ साथ जो आसपास के वहाँ पे इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, चाहे वहाँ सीमेंट के हों और इस तरह की चीजें हैं, उसकी तरफ भी फायदा होगा क्योंकि पूरी तैयारी हुई है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप इसमें देखें माल ढुलाई में तो कई सारे क्षेत्र इसको कवर करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे खनिज हो, चाहे वो इस्पात हो, तो कई सारी चीजें जो कि आपको जरूरी है आपकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में। और जैसे आपने कहा कि एक समन्वय बनाने की तैयारी है, वो इससे ज्यादा होगा।
1: प्रसाद जी, अपने श्रोताओं को हम ये जरूर बता दें कि खड़गपुर, भद्रक, हरिदासपुर, गुमिड्डी पुंडी, गुद्दूर और कटक पारादीप जैसे औद्योगिक कॉरिडोर हैं और माल परिवहन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने भी जिक्र किया कि कोयला, लोह अयस्क, स्टील, सीमेंट कंटेनर और अनाज की आवाजाही में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के समय में लॉजिस्टिक की लागत घटाने पर भी सरकार काफी ध्यान दे रही है, तो ये जो परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिन पर काम अब किया जा रहा है, ये कितना असर डालेंगी, कैसे ये सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे माल ढुलाई में देखा जाता है कि पहले जमाने में होता था कि आप पैसेंजर ट्रैफिक को ज्यादा देते थे और माल ढुलाई की गाड़ियों को कम प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में जो उत्पादक हैं वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका सामान या जो भी उनकी रॉ मटेरियल, जो भी उनकी चीज है, वो गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो अपने फैक्ट्रियों में पहुंचे या फैक्ट्री से तैयार माल जहां उनको निर्यात या आयात के लिए करना है, तो तमाम सारी चीजें जुड़ी रहती है। तो जो भी कंजेशन है, जो भी बॉटलनेक्स है, उसको कम करने के लिए जो अलग अलग लाइनों का विस्तार हो रहा है, जैसे कहीं तीसरी लाइन है वो, लेकिन मालूम है कि कुछ दिनों बाद पे आपको समस्या आएगी, तो सरकार वहाँ चौथी लाइन की तैयारी कर रहे हैं। और कई जगह तो लाइन थोड़ा सा मतलब जैसे कहते रूट कम कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि सड़क में नेशनल हाईवे में काफी कटौती कर रहे हैं कि समय बचे और वक्त बचे, जिसके साथ साथ पर्यावरण के भी अच्छा असर पड़े।
1: सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से करीब 60 लाख की आबादी वाले 6,448 गांवों तक पहुंच बेहतर होगी। तो आपको लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर रेल कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाने के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे?
0: जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि रेल जो है एक भारत की जीवनी है, मतलब लोगों के लिए सुविधा है, लोग अपने सामान्य जीवन में जो रोज सफर करते हैं, जैसे हम दिल्ली में, हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास कई सारे जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहां से लोग सुबह रोज चलते हैं, दिल्ली आते हैं, यहाँ अपना कारोबार के लिए या कार्य के लिए या नौकरी के लिए आते हैं और फिर शाम को घर लौटे जाते हैं, और ठीक इसी तरह दिल्ली से भी अन्य आसपास के शहरों में। तो ये इस तरह का सुविधा और प्रांतों में भी है, लेकिन उसका विस्तार जरूरी है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और बड़ी हुई है, और अगर हम विकास चाहते हैं और जिसमें कि आप चाहते हैं कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करें और आपके पास मूवमेंट आसानी से हो, लोग आसानी से आ जा सकें और सस्ते दामों में भी आ जा सके, क्योंकि आज के दौर में तो ये सब कॉम्पिटिटिवनेस की जब हम तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और लोगों के लिए भी बहुत सुविधा है। अगर जैसे मैंने कहा कि दिल्ली और आसपास के शहर, बॉम्बे, महाराष्ट्र जो आसपास है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर है, वहां पे ये आम बात है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से और आसपास के छोटे छोटे शहरों से लोग पलायन करते हैं, दिन में अपना काम करके शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की सुविधा बढ़ेगी तो ये निश्चित तौर पे इसी और आगे बढ़ेंगे हम।
1: वैसे सरकार ने इन रेल परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। और श्रोताओं, आपको हम ये बता दें कि इन परियोजनाओं से कुलदिहा, भीतरकनिका, पुलिकट झील और ललितगिरी जैसे पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। तो रेल संपर्क ये जो बढ़ेगा, इससे स्थानीय पर्यटन और रोजगार में किस तरह की बदलाव होने की गुंजाइश आप देखते हैं?
0: सरकार का अपना अनुमान है कि रेलवे का जब विस्तार होगा और आपके आसपास के छोटे ग्रामों में या छोटे जगहों पे जहाँ की रेल की सुविधा थी या बहुत ज्यादा नहीं थी, अगर जहाँ नहीं है वहाँ पहुंचाया जाए, मसलन जैसे अगर आप कहें कि जो एक साउथ में जो एक प्रोजेक्ट का है गुमिडपुंडी और गुडूर के बीच में तीसरा और चौथी लाइन, इसमें अनुमान है कि 90 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन इसमें यह है कि ये जो गुडूर एक शहर है वो आंध्र प्रदेश में, तो चेन्नई, विजयवाड़ा, रेणीगुंटा बहुत बड़ा जंक्शन है, चेन्नई और विजयवाड़ा तो बहुत ही बड़ा जंक्शन है, तो वहां से ये इंटरचेंज सेशन बन जाएगा। और इसके साथ साथ सरकार का अनुमान है कि वहां पे दो तीन टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है, चाहे पुलिकैट लेक हो, निलपत्तू बर्ड सेंचुरी हो, और जैसे सरकार ने ये भी पिछले दौर की जो हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग जाते हैं तीर्थ स्थलों के लिए, तो वहाँ एक वीरा स्वामी का पेरुमल टेम्पल है। तो इस तरह से ये देखिए जब पर्यटन पहुंचेगा, चाहे वो लोग अपनी आस्था को लेकर जाएं, तो आसपास के छोटे जो कस्बे हैं वहां पे लोग पहुंचेंगे, तो रिलीजियस टूरिज्म की वजह से ये देखा गया है कि बहुत बड़ा विस्तार हुआ है और स्थानीय लोगों को उसको जरूर एक रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी आमदनी का स्रोत बनता है। और पर्यटक जब बढ़ेगा और अंदर उन्हें इंटरनल टूरिज्म, मतलब घर के अंदर ही लोग इधर से जाएं अलग अलग जगह, तो वो

0: तौर पे आर्थिक व्यवस्था में बहुत मदद करती है।
1: प्रसाद जी, अगर रेलवे के हम विस्तार की बात करें तो ज्यादा समय तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 1 से 1.5 दशक के भीतर रेलवे ने काफी विस्तार किया, इलेक्ट्रिफिकेशन में काफी काम हुआ है, लाइनों के दोहरीकरण या अतिरिक्त संख्या में ट्रैक बनाने की भी गतिविधियां काफी तेज हुई हैं। मैं आपसे अगर पूछूं तो रेलवे का जो फोकस है धीरे धीरे यात्री परिवहन से कहीं आगे बढ़ रहा है, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना सफल मानते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि रेलवे सड़क परिवहन से ज्यादा माल अपने नेटवर्क से खींच रहा है अब?
0: पिछले करीब 20-25 साल से ये कोशिश रही है कि रेलवे को जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है जो सड़क यातायात से, खासकर सड़क माल ढुलाई से, ट्रक से, और उस पे कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को कम करे। और क्योंकि रेलवे की क्षमता बहुत है, अगर
1: बिल्कुल
0: एक बारी आपने कोई 20 और 50 वैगन को, और इसीलिए आप जानते हैं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बड़े शहरों के बीच में बनाया गया, दिल्ली मुंबई के बीच में बात की गई, उधर दूसरे वेस्ट कोस्ट में भी तैयारी हो रही है, इसलिए कि भाई आप एक पॉइंट टू पॉइंट निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा आपने सामान उठाया दिल्ली से, और मुंबई में अगर पहले जमाने में चलती थी गाड़ी, एक मालगाड़ी का तो पता ही नहीं होता था कितने दिन में पहुंचेगी अपने गंतव्य पे, अगर आप प्रतिस्पर्धा के दौर में पहुंचाना चाहें कि 3 दिन में आपने कहा कि आपका सामान पहुंच जाएगा, तो तीसरे दिन पहुंचना चाहिए गंतव्य में, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा करेंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे चीजों को वक्त पे। और वैश्वीकरण की जब बात हुई थी तब यही देखा गया था कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आपके पास ये बहुत जरूरी है कि गुणवत्ता के अलावा आप समय पे अपना कमिटमेंट पूरा करें, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक केंद्र है।
1: श्रोताओं, बिहार में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा के 82.57 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी मिली है। तो प्रसाद जी, बिहार जैसे राज्य के लिए इस परियोजना का आर्थिक और रणनीतिक महत्व आप किस तरह से देखते हैं? क्या इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव आएगा?
0: जी बिल्कुल, इसमें एक तो जो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर और सोनबरसा के बीच में जो आज की तारीख में करीब 2 घंटे लगते हैं वो कम होकर 1 घंटे में सफर पूरा तय करेंगे। इससे ये होगा कि 3 चीजें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो ये है कि लोगों का खर्चा कम होगा, कम समय पे आप सड़क पे रहेंगे तो ईंधन की खपत कम होगी, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर भी जो समस्याएं आती है कि अधिक ईंधन फूकेगा तो हम सब जानते हैं पर्यावरण दूषित होता है, उसके लिए है। और तीसरा यह है कि आसपास जैसे कहते हैं आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, और जो ये कनेक्टिविटी है जैसे अभी रेलवे में हमने बात की थी, ठीक इसी तरह यहाँ एक बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ माता जानकी का टेम्पल है सीतामढ़ी, जिसको सब काफी जिनका श्रद्धा और आस्था का स्थान है, तो उसको कनेक्ट करेगा। तो साथ ही साथ ये जो सड़क जिस परियोजना की आपने बात की है करीब 3,500 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट, इसमें जो पीएम की गतिशक्ति के जो बिंदु बने हुए हैं उसको भी जोड़ता है, क्योंकि एक तरह से ना समग्र विकास की बात हो रही है, क्योंकि पीएम गतिशक्ति अपना एक निर्धारित समय पे चलता है और उसको प्रधानमंत्री खुद समय समय पे उसका देखते हैं कि ताकि कोई भी बाधा हो तो उसको सब मिलके उसको सुलझाएं जल्द से जल्द, तो ये उसी दिशा की ओर कदम है।
1: प्रसाद जी, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक्सप्रेसवे, आर्थिक कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार पर काफी जोर दिया। हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 महीने में हमें ये खबर जरूर मिलती है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार हुआ या फिर एक नया कॉरिडोर हमारे सामने है। लेकिन इनके साथ साथ एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो कि हाईवेज को अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अन्य चीजों को ये कितना फायदा पहुंचाएगा?
0: इसमें दो पहलू है, एक तो आपने यहाँ गति जो हम चाहते हैं कि देखिए आज सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो जो वक्त 8 घंटे लगते थे दिल्ली से अमृतसर कम कर दिया है, जो अभी जो लेटेस्ट हाईवे बना है रास्ते कम किए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ का होता था ये, तो मैं नॉर्थ के बता रहा हूँ, तो और भी जिस तरह क्षेत्र है, क्योंकि एक्सप्रेसवे बनने से होता है कि आप एक तो डेडिकेटेड है तो आप गति ज्यादा दे सकते, जैसे आपने कहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आप जा सकते हैं, शहरों में तो हम जानते हैं कि 40 के 50 से सड़कें रेंगने लग जाती है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गंतव्य अगर एक नेशनल डेस्टिनेशन पहुंचे, दिल्ली से अगर आपको जयपुर पहुंचना है पहले 5 घंटे लगते थे, अगर मान के चलिए वो 3 घंटे में, तो 2 घंटे में आपका काफी काम हो जाता है, कई लोग तो सुबह जाके दिल्ली चंडीगढ़ और सुबह जाके रात को वापस आ जाते हैं, तो इस तरह से गति जब होती है तो आपको कार्य करने की पद्धति बढ़ जाती है, और जब कार्य करने की पद्धति बढ़ती है और आपके पास ज्यादा वक्त होता है अपने काम करने का, तो आर्थिक विकास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
1: प्रसाद जी, एक अंतिम प्रश्न है, बहुत ही कम शब्दों में आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। भारत अब हाई स्पीड रेल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, आधुनिक माल ढुलाई कॉरिडोर और बेहतर हाईवे नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर 2047 को हम एक लक्ष्य मानकर चल रहे हैं तो इन सारी गतिविधियों को आपके विचार में इनका क्या योगदान रहेगा? बहुत कम शब्द।

0: इनका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री में सामान तो बना है लेकिन उसको आप आगे नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे, जिसे कहते हैं, मूलभूत और ढांचागत नीतिगत तैयारी है, जिसके बगैर हम अपने 2047 के लक्ष्य के लिए साधना साथ तो लिया पहुंचना कठिन होगा।
1: केवी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: सुर्खियों में आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

नमस्कार, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, बारिश का सुहाना सा मौसम है, भीगी सी रात। क्या है बारिश? जैसे आसमान ने धीरे से धरती के माथे को चूम लिया हो। बूंदें गिरती हैं तो सिर्फ मिट्टी नहीं महकती, मन भी महक उठता है। सूखी धरती पर हरियाली उतरती है तो जाने क्यों मन भी हरा हो जाता है। बारिश के साथ चाहतें फिर से दिल में उतरती हैं, कुछ पुराने एहसास फिर दिल की खिड़की पर दस्तक देने लगते हैं। तो आज इस भीगी हुई सी रात में, महकती हुई सी रात में, आइए बारिश का यही जश्न मनाएं।

यूं तो रात का स्वर खामोशी का स्वर है, लेकिन क्या सचमुच बारिश की रात चुप होती है? नहीं, बारिश की रात लगातार कुछ कहती है। टप टप गिरती बूंदें जैसे कोई धीमा सा संगीत बजाती हैं। रात बड़े गौर से उन्हें सुनती है। दोनों की बातें, दोनों की सरगोशियाँ गूंजती हैं। दूर कहीं किसी पेड़ की पत्ती भीग कर सरसराती है। हवा उन्हें छू कर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उंगली सितार के तार छेड़ रही हो। और इस बारिश में कितने ही मन अपने अपने गीत सुनते हैं। कोई चेहरा याद करता है, कोई अधूरी सी बात।

श्रोताओं, रिमझिम की समा में हवाओं का मिजाज भी कुछ अलग होता है। भीगी पत्तियों के बीच से गुजरती हवा और पेड़ झूम उठते हैं, जैसे हवा ने कोई पुराना गीत छेड़ दिया हो। कभी शाखों को सहलाती है वो, कभी पत्तों को हौले से हिलाती है, और कभी अचानक इतनी शरारती है कि रात की जुल्फें बिखेर कर भाग जाती है। मौसम भी ना जब खुश होता है तो हर चीज़ को अपने रंग में रंग देता है। पेड़ों में संगीत, बादलों में ताल, बूंदों में लय और मन में जाने कितने अनकहे गीत।

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, जिसमें जश्न जारी है भीगी हुई रात का। दोस्तों, बारिश का मौसम सिर्फ धरती को नहीं भिगोता, यादों को भी भिगो देता है। पुरानी गलियों की याद, किसी खिड़की पर खड़े होकर बारिश देखने की याद, किसी के साथ भीगने की शरारत, किसी के साथ छतरी बांटने की छोटी सी खुशी। कुछ यादें भी बारिश की बूंदों जैसी होती हैं, छोटी सी, लेकिन छूते ही पूरा मन भीग जाता है।

भीगी सी रात में कभी चांद भी बादलों से झांक कर ज़मीन को देख लेता है। वो कभी बादलों में छिप जाता है, कभी अचानक निकलकर पूरी रात पर मुस्कुरा देता है। शायद उसे भी बारिश पसंद है। भीगी हुई छतें, चमकती हुई सड़कें, पेड़ों पर ठहरी हुई बूंदें, चांदनी जब इन सब पर उतरती है तो साधारण सी रात भी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सी नज़र आती है। तब दिल कहता है कि मौसम सिर्फ देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। बारिश भी एक ऐसा ही मौसम है जो दिलों में उतरकर सीधे भीतर तक जगह बना लेता है।

तो श्रोताओं, आज की रात बारिश का जश्न फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में था। उम्मीद है ये भीगी सी रात, ये भीगे से सुर आपको पसंद आए होंगे। अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और

0: सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
1: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए।

0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exists here.
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9.
5: The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees, clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states. Also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost effective infrastructure top priority, says center will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by center and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating U.S. military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India sealed a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.
6: 5 bahut bade faisle liye hain. 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamadi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
7: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
5: The proposed projects will enhance connectivity to approximately 6,448 villages with a population of about 60 lakhs, improve rail access to major tourist destinations, and strengthen the transport of key commodities including coal and iron. Mr. Vaishnav informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard.
6: The project is becoming a major lifeline for the entire Bihar. It starts from Sonbarsa on the Nepal border and passes through Sitamarhi and Muzaffarpur. It will create a complete transport artery which will benefit Bihar for many years. It is an 83-kilometer brownfield project under which the existing road will be upgraded into a 4-lane highway with an investment of
7: 3,591 crore rupees.
5: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the fourth edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor.
8: We need a fixed policy for the different type of tunnels, bridges and road projects, which is a permanent policy for technical and financial qualification is very, very important. Other important thing is we are very much interested in the government about financial audit. But now after
9: 12 years of my experience in this ministry, I'm coming to conclusion that the first

0: चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और उसमें तमाम मुद्दे निकलकर सामने आए और साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
2: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री के है एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग UPI इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह हम बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए। तो अब उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% UPI ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि UPI और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करें, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल। अश्विनी राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
3: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो ऐप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, HR जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरें। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
2: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज

0: का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म में साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में इनमें आइडियाज होंगे और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चे उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगी कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनको उस चीज़ों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये है कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है। और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि ह्यूमन जहाँ बैंकिंग है जहाँ कस्टमर है दोनों ही ह्यूमन बींग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधारम मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीज़ों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे, उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विनी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पर रहता है, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पर नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है, और वो तमाम अलग अलग ऐप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहाँ से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा, तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती है क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए, और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के, ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे ऐप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े, एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ 2 दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था FM का भी था, कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खुले। और जैसे अश्विनी ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेज है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है वही हमारा मुद्दा इसमें। और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा। और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी हमारा रिजॉल्व हो गया, जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसको भी फोकस भी किया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा कि नंबर और टारगेट पे नहीं होना चाहिए कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए हो जाता है कि हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपीए को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
1: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीज़ें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज़्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज़्यादातर लोगों तक वो पहुँचे, वो एक बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचें और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आप जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: हैं जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी, उसको लेके आपका अश्विन जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो NPA है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे तो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं? अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीज़ों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से NPA पे कहें काम।
2: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
0: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफ़ी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन RBI का भी आपने देखा, RBI कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपके पास सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, UPI बढ़ रहा है, बट उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी OTP आ गया, तो अवेयरनेस का काफ़ी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा कि IIBF में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफ़ी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है I4C इंटरनेशनल, अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस लाएंगे जितना लोगों को, अब OTP के ऊपर काफ़ी हुआ तो अब लोगों को OTP समझ गया कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोला कि हर तरह का अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहाँ जाके अपना आधार कार्ड और नंबर लोड कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो इसमें आजकल काफ़ी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा
1: है। तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फ़ोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट S आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रीक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके। उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीज़ें आई है, जो बात वहाँ पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: नरेंद्र जी, दो दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही है। तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे, कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर, और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे 2 दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा, और जैसे अश्विनी सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो अब वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोस्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: तो लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहाँ पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है, बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफ़ी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 20 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो CBDT है या डिजिटल करेंसी या RTGS, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्री जी, 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए, सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं। तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है, 2 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए, और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए, बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात कर रहे हैं या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहाँ पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, और बैंक्स कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली। तो यही है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, बैंकिंग कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1,00,000 रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनाना पड़ेगा यंग पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है। तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन, एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो, या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए कि अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है, तो मॉडर्न बैंकिंग का ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और यही हमारा 2027 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि अगर हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है, और थ्रू डाटा एनालिटिक हम जो क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे, और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विनी जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो, तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण युवा ऋण, और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: प्रस्तुत है नाटक हम सफर। लेखक हैं दिनेश राय, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: अब भाई साहब अगर आपको तकलीफ ना हो तो।
1: हाँ हाँ बैठिए बैठिए, वैसे भी अगले स्टेशन पर उतरना है मुझे।
0: अच्छा अच्छा, धानपुर उतरेंगे आप?
1: हाँ।
0: क्यों भाई, तुम कहाँ जाओगे?
2: गोपालगंज।
0: लेकिन खड़े क्यों हो, यहीं बैठ जाओ यार।
2: जी।
0: क्या नाम बताया आपने?
2: मेरा नाम शेखर है।
0: अब तो हम दो दो हैं, ये भी गोपालगंज जाएंगे।
1: अच्छा वहाँ क्या?
0: अब भाई ऐसा है कि पढ़ाई मढ़ाई वालों के जो हाल देखे अपन ने, तो साहब मौका मिलते ही काम धंधे से लग लिए।
1: अच्छा।
0: अब इनका तो ये बताएंगे।
2: कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा, मेरी भी पोस्टिंग हुई है अभी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हूँ। नाम अनिल वर्मा।
0: मैं विनोद शर्मा। लगता है पढ़ने का बहुत शौक है आपको।
1: जी जी।
0: केस ऑफ द स्लीप वॉकर्स नीड्स।
1: जी हाँ, पेरी मेसन सीरीज का नॉवेल है, वेरी इंटरेस्टिंग।
0: अब भाई स्लीप वॉकर के बारे में है तो जरूर इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मुझे खुद स्लीप वॉकर के बारे में काफी कुछ पढ़ने का मौका मिला है।
1: अच्छा, क्या वाकई स्लीप वॉकिंग जैसी कोई चीज होती है? भाई मेरा तो साबका ऐसे किसी नींद में चलने फिरने वाले से नहीं हुआ आज तक।
0: लेकिन साहब ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं मगर होते जरूर हैं। लीजिए, आपका स्टेशन भी आ गया।
1: अच्छा भाई विनोद बाबू, आपके साथ ये मुलाकात बड़े मजे की रही।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: चलो अच्छे मिल गए तुम, वरना गोपालगंज तक का लंबा सफर मुश्किल हो जाता भाई।
2: जाने को वहां जा तो रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर रहूंगा कहाँ।
0: क्यों, क्या दिक्कत है?
2: दिक्कत ही दिक्कत है विनोद भैया, कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो सस्ती भी हो और हर लिहाज से सुटेबल भी।
0: कहो तो मैं अपने मकान मालिक से बात करूं। अरे हाँ, मेरे रूम से लगा एक छोटा सा हिस्सा है, अब मकान वाले कायदे से दरवाजा मरवाजा लगवा दे और सफाई पुताई करा दे तो रहने लायक तो हो ही जाएगा।
2: हाँ, बिना दरवाजे के कोई कैसे रह सकता है भला।
0: अरे यार तुम भी कहाँ की बातों में लगे हो, ऐसी कौन सी बड़ी दौलत धरी है तुम पढ़ने लिखने वाले छोकरों के पास, हैं? आगे पीछे दरवाजे की भी जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है, बोलो क्या कहते हो?
2: ठीक है भैया, बस कम से कम पे मान जाए तो अच्छा होगा।
0: अरे पटा लूंगा ना, चेयर अप यार।
3: शिखर।
0: क्या बात है शिखर?
2: कुछ नहीं।
0: कुछ तो है, अरे बताओ ना यार क्या बात है।
2: अपने दुखड़े को रोकर आपको क्यों नाहक परेशानी में डालूं?
0: कमाल करते हो यार, भैया भी कहते हो और पराया भी समझते हो।
2: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है।
0: बताओ क्या बात है, बताओ।
2: एक उलझन हो तो बताऊं, अचानक कितनी मुसीबतों में घिर गया हूं मैं। माँ की दिनों दिन बेकाबू होती बीमारी, ब्याज दर ब्याज, कर्ज की रकम, किसी भी दम पुश्तैनी मकान को निकलने को तैयार, भैया की अच्छी भली नौकरी अफसरी साजिश की भेंट चढ़ गई। मैंने चाहा पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, लेकिन भैया ने डांट डपट कर मुझे वापस गोपालगंज रवाना कर दिया। मैं भी उस पार्ट टाइम नौकरी के भरोसे वहां जा रहा हूं।
0: वाकई एक साथ इतनी सारी मुसीबतें, फिर भी भाई हिम्मत मत हारना।
2: और चारा भी क्या है, दिन इधर उधर काम की तलाश में और रात आंखों में कट जाती है। भरपूर नींद कैसी होती है शायद भूल ही चुका हूं।
0: तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह रात रात भर जागना भाई अच्छा नहीं है। ये
2: क्या फर्क पड़ता है भैया?
0: नहीं मेरे भाई, इंसान को नींद के मामले में कतई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
2: वैसे आपको पक्का भरोसा है मकान मालिक तैयार हो जाएगा?
0: अरे 100 बार यार, हम भी उसके काम आते हैं, बल्कि यूं कहो हमारे बिना उसका काम ही नहीं चलता है। अब जाओ लपक के हाथ धोआओ, खाना निकाल रहा हूँ, और गोपालगंज जाने पर तुम मेरे साथ ही चलना, ठीक है?
2: जी भैया।

0: अरे भाई शेखर, अरे आप बात बन गई यार। मैं तो कमरे की बात करने गया था, लेकिन बड़े मियाँ तो कमरे के साथ साथ तुम्हें हर महीने 300 रुपए देने को तैयार हो गए हैं। घंटा डेढ़ घंटा रोज का काम है और इस हिसाब से रकम बुरी नहीं है।
1: लेकिन क्या करना होगा मुझे?
0: ट्यूशन उनकी एक अदद भतीजी है, इंटर कर रही है, थोड़ी अंग्रेजी वंग्रेजी पढ़ा देना उसे, हो गया। समझो कमरे का किराया उसी में एडजस्ट हो जाएगा। कहो कैसी रही है?
1: भैया, आपने तो मेरी मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी।
0: तुम सोचते बहुत हो यार। नाउ फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? हाँ
2: शेखर, अरे ओ शेखर।
1: दीपक दादा।
2: कब आए भाई?
1: नमस्ते दादा,
2: नमस्ते।
1: मुझे आए तो महीना भर हो गया है।
2: अच्छा, तो सुनाओ, हॉस्टल में ही हो ना?
1: मेरा दूसरी जगह बंदोबस्त हो गया है।
2: अरे कहाँ?
1: एक साहब हैं, शायद आप जानते हो, विनोद शर्मा जी। आते वक्त ट्रेन में मुलाकात हो गई थी, उन्होंने ही करा दिया, जहाँ वो खुद रहते हैं, खन्ना साहब के मकान में।
2: खन्ना? अच्छा, वो खन्ना, जानता हूं उसे। तुम्हारे मकान मालिक खन्ना और हमारा एक जमाने में बड़ा साथ रहा है भाई। अरे वो तो बाद में उसने गलत लाइन पकड़ ली तो अपन अलग हो गए।
1: गलत लाइन मतलब?
2: अरे वही जुआ, सट्टा, ड्रग सप्लाई। पता है वो खन्ना खुद को उस हवेली का मालिक बताता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी दरअसल उसकी भतीजी गीता खन्ना की मिल्कियत है। भाई के मरने के बाद उस बेचारी अकेली बेसहारा लड़की का सरपरस्त बन के डटा हुआ है, समझे कि नहीं?
1: अच्छा,
2: यूं तो गीता के साथ विनोद की बढ़ती नजदीकियां खन्ना को पसंद नहीं है, लेकिन खुल के कुछ बोल नहीं पाता है, समझे कि नहीं?
1: जी, अच्छा चलता हूं।
2: हाँ हाँ,
1: नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते।
0: हाँ भाई शेखर, कैसा लग रहा है यहां? कोई दिक्कत परेशानी?
1: नहीं भैया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो।
1: जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूर है कि नींद जरा देर में आती है, लेकिन सोता तो हूं, और एक बार जो आंख लगती है तो बस ऐसी लगती है कि समझिए घोड़े बेचकर सो जाता हूं।
0: अच्छा, अब तुम कहते हो तो ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन वो आवाजें।
1: जी आप किन आवाजों की बात कर रहे हैं? अरे बताइए ना भैया, बताओ ना प्लीज।
0: अब तुम इतना कहते हो तो फिर बताना ही पड़ेगा। दरअसल कभी कभी देर रात गलियारे में किसी के चलने फिरने की आवाज सुनकर मेरी नींद उचट जाती है।
1: जी लेकिन कौन आ सकता है यहाँ?
0: वही तो, मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है?
1: हैरत की बात है, मुझे ऐसा कभी महसूस क्यों नहीं हुआ। भैया भैया, कहीं ऐसा तो नहीं स्लीप वॉकिंग के किस्से पढ़ते पढ़ते आपको कुछ वहम सा हो गया?
0: अरे नहीं नहीं वहम और मुझको सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहरहाल मामला जो भी हो, देर सवेर सामने तो आ ही जाएगा। क्या ठाट, हमारी अच्छी भली नींद खराब करके जनाब मजे से खर्राटे भर रहे हैं। शेखर, ए शेखर, अबे उठो भी यार।
1: कौन है? अरे विनोद भैया, आप कब, क्या बात है
0: यार? कल रात क्या हो गया था तुम्हें? तुम्हें डिक्शनरी ही चाहिए थी तो वैसे ही उठा ले जाते, मुझे जगाने की क्या जरूरत थी?
1: क्या मैं डिक्शनरी? कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं भैया?
0: अरे यार वो रही मेरी डिक्शनरी आपकी मेज पर।
1: अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात को अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकला तो आपके कमरे में कैसे पहुंच गया मैं?
0: फिलहाल कुछ कहने से तो फायदा नहीं है, बेहतर है अभी इसे यहीं खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलता हूं।
1: जी

0: क्या सचमुच मैं रात को उठकर? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डिक्शनरी, वो यहाँ कैसे? कहीं नींद में चलने की बीमारी का? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, होशियार तो रहना ही होगा।
1: सर, सर एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
0: नहीं नहीं।
1: कल रात आप चर्च वाले कब्रिस्तान गए थे?
0: क्या, किसने बताया तुम्हें? किसने बताया?
1: कुछ लोगों ने देखा होगा, विनोद जी बता रहे थे।
0: बकवास करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। पूछता हूँ अभी जाकर उनसे।
1: सर सुनिए तो, सुनिए तो सर। सर
2: भाई शेखर, उठिए, ये लीजिए भाई। रात भर उसमें भटकते रहे आप।
0: हैं, क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मैं तो बिस्तर से उठा ही नहीं, आप क्यों बिला वजह?
2: बिला वजह मतलब रात की बात तुम्हें बिल्कुल याद नहीं?
0: कोई बात हो तब ना।
2: अच्छा, यानी जो मैंने आंखों देखा वो झूठ? तो फिर सामने कुर्सी पर सूखने के लिए फैला वो कंबल जिसे ओढ़कर चांदनी रात का लुत्फ उठा रहे थे आप, अब भी नम क्यों हैं? और वो आपके जूते, उन पर गीली मिट्टी के ताजा निशान क्यों कर हैं, बताइए भाई।
0: मगर
2: अब भाई ये मत कहना कि मैं कमरे से बाहर गया ही नहीं।
0: भैया, क्या मैं जानबूझकर इनकार कर रहा हूं?
2: नहीं, तुम इनकार सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें वो वाकया याद ही नहीं। और ये अपने आप में स्लीप वॉकिंग का एक बहुत बड़ा सिम्टम है।
0: स्लीप वॉकिंग? तो क्या वाकई आपको यकीन है कि मैं नींद में चलता हूँ?
2: हाँ, क्योंकि यही हकीकत है। एक के बाद एक कितने ही वाक्य होते गए हैं, मैं तुम्हें हमेशा चेताता रहा। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेहतर है मेरी बात मानो, वक्त रहते इस बीमारी का इलाज करा लो।
0: मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: अब भाई देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दो तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आते ही किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास चलकर कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई, तब तक अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।
1: सर, सर।
0: हाँ हाँ गीता, बताओ क्या बात है?
1: वो चाचा ने कहलाया है, कैसे बताऊं?
0: क्या कहलाया खन्ना साहब ने?
1: दरअसल आपकी नींद में चलने वाली बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गए हैं और बोले कल को कोई हादसा हो गया तो परेशानी उन पर भी आ सकती है।
0: तो क्या चाहते हो, कमरा खाली कर दूं?
1: सर आज ही।
0: आज ही? उनसे कहो कमरा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन विनोद भैया के लौटने पर, उससे पहले हरगिज नहीं।
1: सर ये जवाब सुनकर तो मुझ पे भड़क उठेंगे वो।
0: डोंट वरी, मैं खुद जाकर खन्ना साहब से बात करता हूं। खन्ना साहब का खून हो गया, खन्ना साहब का खून हो गया। अरे ये देखो खून के निशान,
3: ये निशान तो उस कोठरी की तरफ जाते दिख रहे हैं।
4: चलो उधर, चलो उधर, चलो चलो।
0: अरे अंदर कोई है क्या?
3: हाँ, कोई सो रहा है,
0: सो रहा है कोई।
4: अरे
0: अरे अरे भाई उठो भाई, अरे उठो भाई उठो।
5: अरे उठ जा भैया, खून हो गया यार।
0: उठो,
4: वो तू सोया पड़ा।
0: अरे क्या है, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? कैसा खून, किसका खून?
6: सब हटो, पीछे हटो, कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। निकलो बाहर, बाहर निकलो।
7: चलो भाई बाहर, चलो भाई।
3: देख लो साहब, वहां से लेके जहां तक खून भी खून के निशान है।
6: हाँ सब दिख रहा है हमें। कौन हो तुम?
0: जी मैं शेखर हूँ, खन्ना साहब का किराएदार।
6: तो वो खून लगा कपड़े तुम्हारे हैं और ये कुल्हाड़ी भी?
0: कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये सब क्या है, कपड़े, खून, कुल्हाड़ी, यहाँ कैसे? मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब।
6: हाँ आ जाएगा, जरा थाने चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए हथकड़ी लगाओ इसे।
0: नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया।
7: मुझे छोड़ दो प्लीज।
0: अरे हाँ हाँ, खून इसी ने किया है।
8: अरे आओ, कत्ल और वो भी नींद में, फालतू की बात है।
9: ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, गवाह पेश कीजिए।
0: जज साहब, मुलजिम खन्ना साहब का किरायेदार था। खन्ना साहब ने इन्हें फौरन मकान खाली करने को भी कहा था, लेकिन साहब इन्होंने खूब हिला हवाला किया और दोनों में खूब कहासुनी भी हो गई। साहब इन्होंने खन्ना साहब को देख लेने की धमकी दी और उसी रात खन्ना साहब का कत्ल हो गया।
8: हाँ साहब, ये खून सनी कुलाड़ी और कपड़े मेरे सामने मुलजिम की कोठरी से बरामद हुए हैं। जब्ती नामे पे मेरे दस्तखत है, ये रहे।
1: चाचा का खून होने से पहले शेखर सर का उनसे झगड़ा हुआ था। उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी, ऐसा विनोद जी से ही सुना था मैंने।
9: ऑर्डर ऑर्डर, गवाहों के बयानात और सबूतों के मद्देनजर अदालत मुलजिम शेखर को जगदीप खन्ना का कातिल करार देते हुए 14 बरस कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है।

कहते हैं बा मुशक्कत सजा उस गुनाह की जो जो मैंने किया ही नहीं, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते देते कैद खाने की दीवारों से सर टकराता हूँ, लहूलुहान होता रहा हूँ मैं, लहूलुहान होता रहा हूँ मैं।

सजा की म्याद पूरी हुई, मैं रिहा हो गया, लेकिन लेकिन अब जब खुद मेरी अपनी जिंदगी ही बेमानी होके रह गई, ये रिहाई क्या मायने रखती है मेरे लिए? कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं, फिर भी चलना एक मजबूरी है। फिर क्यों ना वहीं चलूं जहां से बर्बादी का यह लंबा सफर शुरू हुआ था।

0: क्यों भैया, क्या गोपालगंज वाली गाड़ी इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी?
1: हाँ, यहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: आप गोपालगंज जाएंगे? मैं भी इसी गाड़ी से चल रहा हूँ।
0: अच्छा, आप भी वहीं जाएंगे?
1: नहीं नहीं, उससे दो स्टेशन पहले हरिपुर उतरूंगा। आप शायद गोपालगंज में ही रहते होंगे।
0: कभी रहा करता था, मुद्दत हुई वो शहर छूट गया।
1: क्यों, ऐसी क्या बात हुई?
0: लंबी कहानी है, लगता है गाड़ी आ रही है। क्या गाड़ी पकड़ने में मदद करेंगे? नज़र कमज़ोर हो गई, अक्सर धोखा दे जाती है।
1: हाँ हाँ, चिंता मत करो, आराम से बिठा दूंगा। इस डब्बे में थोड़ी जगह है, आओ यहीं बैठते हैं। एक बात कहूं, जाने क्यों मुझे आपकी शक्ल कुछ पहचानी पहचानी सी लग रही है।
0: और मुझे आपकी आवाज।
1: अजीब इत्तेफाक है।
0: इत्तेफाक, पता भी नहीं चलता कब कोई इत्तेफाक जिंदगी की धारा बदल जाता है। उस शख्स से यूं ट्रेन में ही अचानक, एक ऐसा ही तो इत्तेफाक था।
1: लगता है जरूर जिंदगी में किसी भयानक हादसे के शिकार हुए हैं आप।
0: शिकार, जाने भी दीजिए, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, अब आपके आगे उसका रोना क्या रोना।
1: फिर भी भैया, दुख बांटने से दिल का बोझ कुछ कम तो होगा, शायद कोई मसलहत हो।
0: ओह, वो शख्स, ना वो मिलता ना उसके कह पर मैं सिर छिपाने उस मनहूस कोठरी में जाकर ठहरता। पूरे 14 सालों तक यही सवालात जोंक बनकर मेरे वजूद को कतरा कतरा चूसते रहे, खोखला करते रहे मुझे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा थी ये? किस गुनाह?
1: गुनाह? कैसा गुनाह भैया?
0: शायद कभी सुना हो, बरसों पहले गोपालगंज में एक कत्ल हुआ था, और कत्ल भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिसे नींद में चलने की बीमारी थी।
1: हाँ, अब मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। उन दिनों वो मामला काफी चर्चा में रहा था, अपनी तरह का अनोखा मामला जो था। बड़ी तादाद में लोग मामले की कार्रवाई देखने कोर्ट जाया करते थे, अब मैं भी जाता था। हाँ, तभी आपको देखकर लग रहा था कहीं तो देखा है, पर ठीक से याद नहीं कर पाया। तो क्या वो आप ही?
0: हाँ, लोगों के ख्याल और अदालत के फैसले के मुताबिक चाहो तो आप भी मुझे गुनाहगार मान लो, लेकिन सच तो यह है कि वो खून मैंने नहीं किया।
1: बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, और वो आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है।
0: अब बताने और ना बताने से क्या फर्क पड़ने वाला है? बहरहाल, शुरुआत एक अजीब इत्तेफाक से हुई। यही ट्रेन थी और रूट भी यही था। मैं गोपालगंज जा रहा था और वो शख्स भी। सफर के दौरान हमारी पहली मुलाकात थी।
2: क्यों भाई, तुम कहाँ जाओगे?
3: गोपालगंज।
2: लेकिन खड़े क्यों हो? यहीं बैठ जाओ यार।
3: जी।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: मेरा नाम शेखर है।
2: अरे भाई शेखर, अरे आप, बात बन गई यार।
1: भाई रात भर उसमें भटकते रहे हैं आप।
3: हैं? क्या बात कर रहे हैं आप भैया? मैं तो बिस्तर से उठा ही नहीं, आप क्यों बिला वजह?
2: बिला वजह? मतलब रात की बात तुम्हें बिल्कुल याद नहीं?
4: ए, हथकड़ी लगाओ इसे।
3: नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज।

0: तो भैया ये रही मेरी राम कहानी, कैद की वो बेपनाह लंबी म्याद, जैसे मेरा वजूद ही निकल गई पथरीली दीवारों को ताकते ताकते, जाने कब आंखें भी पथरा गई।
1: आपके साथ वाकई बहुत भारी अन्याय हुआ है, जितना अफसोस जाहिर करूं कम है।
0: जो होना था हो चुका, अब तो वक्त के साथ काफी कुछ सहने की आदत हो चुकी है।
1: फिर भी एक बात जानना चाहता हूँ, क्या उस शख्स विनोद के अलावा कभी किसी और ने भी आपको नींद में चलते देखा या कभी देखने की बात कही?
0: नहीं, हर मर्तबा सिर्फ उन्हीं ने देखा और टोका।
1: क्या ये अपने आप में एक अजीब इत्तेफाक नहीं था?
0: हो भी सकता है।
1: और उनकी बात पर कभी शक भी नहीं हुआ?
0: शक उनकी बात पर? उल्टे उनके मुंह से बार बार ये सुनकर खुद मुझे शुभा होने लगा था, क्या वाकई नींद में चलने की बीमारी का शिकार हूँ मैं?
1: मुमकिन है नींद में चलने वाली कहानी उन्होंने झूठ मूठ गढ़ ली हो।
0: नहीं नहीं, भला ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होने वाला था?
1: किसे पता, क्योंकि इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है, क्या सचमुच विनोद नाम का वो शख्स जैसा उसने आपसे कहा था वाकई उस दिन शहर से बाहर चला गया था? क्या ये मुमकिन नहीं, ठीक कत्ल की रात सबकी नजरों से छिपा वो मौकाए वारदात के इर्द गिर्द मौजूद रहा हो?
0: तुम आखिर कहना क्या चाहते हो?
1: जाने भी दो, अब मेरा स्टेशन आ रहा है, तो क्यों ना सफर के साथ ये बात भी यहीं खत्म कर दी जाए।
0: लेकिन तुम इस तरह बगैर जवाब दिए नहीं जा सकते।
1: अच्छा ठीक है, बाकी बात हम खिड़की पर से कर लेते हैं।
0: ठीक है।
1: तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, तुम्हारे उस विनोद ने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा, न उसने कभी तुम्हें नींद में चलते देखा और ना ही वो उस रोज कहीं बाहर गया था। कत्ल की रात वो वहीं मौजूद था।
0: ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो?
1: मुझे अपनी बात कहने दो। क्या तुम्हें मालूम है खन्ना के कत्ल के बाद उसने गीता से शादी कर ली, हवेली को बेचकर दोनों कहीं और जाकर बस गए?
0: क्या वाकई तुम उसके बारे में इतना कुछ जानते हो?
1: मुझसे ज्यादा भला उसे कौन जानेगा। सुनो शेखर, मैंने तुमसे एक झूठ जरूर बोला कि मैं तुम्हारे मुकदमे की कार्रवाई में कभी मौजूद रहा। सच तो यह है कि उन दिनों क्या उसके कई बरसों बाद तक मैं उस तरह फटका भी नहीं।
0: झूठ बोलने की वजह?
1: अब गाड़ी चल पड़ी है तो बता ही दूं, ट्रेन में चढ़ने से पहले तुमने कहा था नजर कमजोर हो गई, अक्सर धोखा दे जाती है। सच तो यह है तुम्हारी नजर हमेशा ही धोखा खाती रही, उसने तुम्हें महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अपने हम सफर को न तुमने तब पहचाना था और ना अब।
0: तो विनोद, ठहर जा फरेबी, कातिल, दगाबाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।

अभी आप सुन रहे थे नाटक हम सफर। लेखक थे दिनेश राय। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: विनोद बालेंद्र सिंह कुशवाहा, अनिल अरविंद बिलगनिया, दीपक स्मित मेहता, गीता परी जोशी, पहले गवाह तनवीर अहमद, दूसरे गवाह मनोज राजानी, इंस्पेक्टर अजय सिंह पाल, जज अनिल मुंशी और शेखर योगेश उमाठे। इस नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढौंडियाल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुनील मुखर्जी का सरोद पर बजाया राग रागेश्री।

राग रजनी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुनील मुखर्जी का सरोद पर बजाया राग रागेश्री। तबले पर संगत की थी असित सेन गुप्ता ने।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। माथव मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
3: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. India's young sensation Ayush Shetty has expressed happiness after securing a second round victory in the men's singles event at the BWF Badminton World Championships in New Delhi. Talking to media, Shetty said it was a comfortable victory and he is happy to move forward in the tournament. The 21-year-old shuttler is the only Indian remaining in the men's singles draw. India's Unnati Hooda today described her match against Canada's Michelle Lee as a good contest and praised her opponent for playing really well. Talking to media, the Indian prodigy said she was happy with the way she played but felt unfortunate that she could not convert her performance into a win. Defence Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his 2-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defence Minister of Armenia, Karin Brutyon, and First Deputy Defence Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Azrian. The Defence Ministry said that the discussions covered the entire gamut of ongoing defence and military technical cooperation, with particular emphasis on capacity building, training, military technical cooperation, and defence research and development. It added that the two sides also exchanged the terms of reference for institutionalizing joint services staff talks between the Indian and Armenian armed forces. In hockey, India registered a comprehensive 5-3 victory over arch-rivals Pakistan in the final Pool D encounter of Men's FIH World Cup at Amstelveen in the Netherlands today to qualify for the second round. The defeat ended Pakistan's campaign in the group stage. India registered a commanding 165-run victory over host Sri Lanka in the first test in Galle today to take a 1-0 lead in the 2-match series. Sri Lanka, chasing a target of 372 runs for victory, were bowled out for 206 during the post-lunch session on the fifth and final day. Indian left-arm spinner Manav Sutar was the architect of India's victory, taking 6 wickets in the second innings to finish with a maiden 10-wicket match haul in only his second test. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभरात्रि। जय हिंद।